0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।

गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर after the news.

ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक एंजॉय कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की। आई सी यू ऑन द अदर साइड। Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, aap sun rahe hain right now. This is Abby This Side. And I hope ki aap enjoy kar rahe hain in gaanon ko. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे। The next song is right now, specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

और लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

92 FM, what a beautiful classic song here. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एवी द साइड. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन्ट डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Do you own a business? Then get your business seen with Sunrise Radio. Absolutely free. Add your business to the Sunrise Radio business directory and showcase your products or services to our listeners and website visitors. Whether you run a restaurant, retail store, professional service, beauty business, trades company, or something completely different, we want to hear from you. There's no charge to list your business. Simply visit sunrise.radio, head to our business directory and add your details today. Sunrise Radio, supporting businesses and connecting communities.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

0: Everybody go boom on your feet, yeah. The ladies in the house wanna feel complete, yeah.
1: Once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो. मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। डीएबी पे ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। अभी बहुत शुक्रिया आपका। Fancy a bit of fun? Visit Sunrise Play and help Raj race back to the studio in Sunrise Studio Rush. Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा हिट ऑफ द आवर।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, आप दोस्तों के लिए पेश किया था। और इसके साथ ही अब चलते हैं जनाब, कमर्शियल का टाइम हो गया है, लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं जनाब, देखते हैं कि हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो क्या बता रही हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। और खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम को सुनने का। तो आप के नाम गीत करते हैं कमर्शियल के बाद, और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। साइमा जी, आपके नाम और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। इस वक्त सुन रहे हैं जनाब कामरान भाई, आप के नाम भी शुक्रिया आपका, और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत, तो उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। प्यारा सा गीत है कुमार सानू और आशा भोसले की प्यारी सी आवाज़ों में। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और एंजॉय करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कमार सानू और जनाब आशा भोसले की प्यारी सी आवाज़ों में। और इस यू गाना शुरू हुआ, अयूब चौहान साहब का फ़ोन आ गया। जनाब अयूब चौहान साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं और कोई पाकिस्तानी गीत सुनना चाहते हैं तो आप के लिए गीत कमर्शल के बाद पेश करते हैं। जनाब आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम अयूब चौहान साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। उसके बाद हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका। आप भी अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं। और तारिक जुल्फी साहब, आपने भी फ़ोन किया, आप भी जनाब सुनना चाहते हैं हीरा खान साहब के लिए और मलक इसहाक साहब के लिए, उनके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम। खान साहब, दोबारा आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। आप प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं और संडे के दिन भी काम कर रहे हैं और साथ में सनराइज को भी सुन रहे हैं, तो जनाब आपके नाम भी गीत होगा और मुना जी आपके नाम भी होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन अयूब चौहान साहब, आपको ये गीत पसंद आया होगा, शुक्रिया। और अब हमें फ़ोन किया जनाब नदीम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा जनाब तारिजुल्फी साहब, आपसे गपशप हुई, अच्छा लगा। और जनाब आज जो तीन शहजादे काम करते हैं बाबर शाह पे, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, आज सिकंदर अली की जो है वो सालगिरह है जनाब। तो सिकंदर अली, हैप्पी बर्थडे टू यू जनाब, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो।

हैप्पी बर्थडे सिकंदर अली, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, स्पेशली आपको बड़े भाई बशारत अली और छोटे भाई जनाब आरिफ अली, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आप को ढेर सारी दुआओं के साथ और हमारी जानब से सनराइज का जितना स्टाफ है आरिफ अली, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका फेवरेट गीत आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो चलते हैं सुनते हैं आपका फेवरेट गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। एक बार फिर आरिफ अली, आपको सालिगरा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, लंबी उम्र दे जनाब, सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे। बहुत अच्छा लगा आज आपको बर्थडे की मुबारकबाद दे के। तो जनाब आप चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46 से, यानी कि 46 पास्ट 11। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद नसरीन साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आप अपनी बेटी आसमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं, पुराने गीत की बारी है तो आप कोशिश करेंगे कोई और गीत आपके लिए प्ले करें। फिलहाल इस गीत से दिल बहलाइएगा। नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपने भाई से बात करके। ये पुराना गीत, सदाबहार गीत आपके नाम भी करेंगे। तारिक जुल्फी साहब आपके नाम भी करेंगे, खान भाई आपके नाम भी करेंगे, और हीरा खान साहब आपके, और अयूब चौहान साहब आपके। तो और इसके साथ ही तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली आपके नाम भी, और अमरीन साहब आपके नाम भी।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Sunrise Radio, Sunrise.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना और चलते हैं अब अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है और मस्ती भरा गीत है, खबरों तक ले जाएगा मैं। चौधरी मुजफ्फर साहब फोन करने का शुक्रिया आपके नाम। नदीम मंसूर साहब, नसरीन साहब आपकी जन्म से आसमा के लिए, और जनाब साइमा जी आपके नाम, और बिशारत अली इस्कंदर अली, आरिफ अली आपके नाम, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। इंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। दोस्तों अब प्रोग्राम के ये दो जो हिस्से हैं आखिरी हिस्से यानी कि अब से लेकर दो बजे तक आप कोई डेडिकेशन नहीं होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होंगी जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। The Sunrise Radio Listener's Choice Awards 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues and artists you love. Voting will be exclusive to Listener's Club members, so join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं दूसरे हिस्से को हिट ऑफ द आवर के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि आपसे लेकर दो बजे तक लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो ये सिलसिला हिट ऑफ द आवर के बाद ही चलेगा और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274 306666। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब अयूब चौहान साहब ओल्डम से और एम खान साहब ब्रेडफोर्ड से। तो चलते हैं जनाब अब सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद इन दोस्तों से मिलते हैं और इनकी जबानी इनसे कुछ सुनते हैं। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: ये दोस्तों अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, बहुत ही प्यारा गीत था प्यारे दोस्तों के लिए। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12 बजकर तकरीबन 14 मिनट्स हुआ चाहते हैं, यानी कि 14 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं कमर्शियल की जाने में। कमर्शियल के बाद जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब अयूब चौहान साहब और अहम खान साहब और दीगर दोस्तों से मिलते हैं। तो चलते हैं, पहले कमर्शियल सुन लेते हैं।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: तो साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसे कहा था कि लाइव कॉल का सिलसिला है जनाब, अब लाइव कॉल्स में आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयूब चौहान साहब ओल्डम से और ब्रेडफोर्ड से एम खान साहब। तो चलते हैं ओल्डम जहाँ अयूब चौहान साहब मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं। अयूब चौहान साहब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं नया फ़ोन तो नहीं है पर दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ और एक नई जगह पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोच पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना?
0: आपकी आवाज़ हमेशा ठीक होती है जनाब। फ़ोन तो कोई भी हो, आपकी आवाज़ तो फ़ोन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सही तरह हम तक ना पहुँचाए। ये नई जगह का मतलब मैं समझा नहीं।
1: ये नई जगह है, ये इसलिए है ना कि मैं जहाँ पर रहता हूँ ये वो जगह, आज कार में अकेला हूँ ना, आपकी भाभी तो दो दिन के लिए छुट्टियां बस चली गई है।
0: तो इसमें बतीसी बतीसी निकालेगी क्या जरूरत है?
1: नहीं, खाली बस इधर बैठा हुआ।
0: नहीं, दो दिन के लिए गई है ना, तो बतीसी निकालने की क्या बात है? बंदे तो थोड़े अपसेट हो जाते हैं कि अब मिसेज नहीं है तो अब जनाब घर का कोई निज़ाम ठीक नहीं चल रहा चलेगा।
1: निज़ाम तो सारा ठीक है, लेकिन क्या कि आदमी थोड़ा सा उदास हो जाए। मैं उनमें लोगों में नहीं हूँ जो कहते कभी तो जावे बेगम।
0: अच्छा, आप उनमें कभी थे कभी तो जावे बेगम
1: पेके के पता नहीं कुछ हुआ ना।
0: हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी तो पेके कभी तो पेके जावे बेगम है।
1: वो मेरे एक दोस्त सुनाते होते हैं ना शायरी और पंजाबी की बड़ी जबरदस्त, मैं उन लोगों में से थे नहीं हूँ। बहरहाल चलो।
0: नहीं, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, आपने कहा नई जगह हूँ, घारी में बैठे हुए हैं तो नई जगह क्यों बोला? हाँ, ये बोल सकते थे आज आजाद हूँ, आज आजाद पंछी हूँ, क्योंकि तुम्हारी भाभी जो है वो दो दिन के लिए चली गई हैं तो मैं बस लुडियां भांगड़े डाल रहा हूँ।
1: नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो लुडियां भांगड़े डाल।
0: नहीं, जो बतीसी निकाली थी ना जब कहा था कि तुम्हारी भाभी दो दिन के लिए चली गई है, वो खुशी जो आप जाहिर कर रहे थे, जो आपसे फूट फूट कर बाहर आ रही थी खुशी आपकी, तो वो हम तक पहुंच गई ना, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं?
1: मैं आप क्या कर सकता हूँ कि आप बैठे तो ठीक जगह पर हैं लेकिन आपकी सोच हमेशा ही गलत होती है।
0: पता नहीं, मैंने तो अंदाजा किया आप इतने खुशी से हंस के बोला कि जनाब आपकी भाभी दो दिन के लिए चली गई है।
1: बस आप सोचते ही कुछ ऐसा ही है ना कि
0: मैंने कोई सोचा नहीं, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है भाई, मैंने तो कुछ नहीं अपनी तरफ से कहा।
1: चलो जो भी कहे हैं, आप भी तो बातें जलेबी की तरह ही करते हैं ना, अब मैं क्या करूँ इसके अलावा?
0: पता नहीं, आप हालात ही ऐसे पैदा करते हैं तो मैं क्या करूँ।
1: चलो ठीक है, आप खुश रहें बस।
0: मैं हमेशा खुश होता हूँ जनाब, आपकी आवाज़ सुन के जब कानों में पड़ती है तो खुशी हो जाता हूँ मैं।
1: चलो शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। तो मैं इशार सुना देता हूँ।
0: जी जरूर।
1: इश्क की जोत जगाने में बड़ी देर लगी,
0: हो
1: साए से धूप बनाने में बड़ी देर लगी,
0: वाह
1: मैं हूँ इस शहर में ताखीर से आया हुआ शख्स, मुझको एक और जमाने में बड़ी देर लगी।
0: वाह वाह, क्या बात है यूसुफ साहब।
1: ये जो मुझ पर किसी अपने का गुमान होता है, मुझको ऐसा नजर आने में बड़ी देर लगी।
0: होए होए होए, क्या बात है।
1: एक सदा आई रुके से कि तुम कैसे हो, फिर मुझे लौट के जाने में बड़ी देर लगी।
0: वाह क्या बात है।
1: बोलता हूँ तो मेरे और जल जाते हैं,
0: जल जाते हैं। जी
1: जी, उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी।
0: होए होए होए, क्या बात।
1: मेरी अरसी में कोई साहे न था कारे सखन, एक दो शेर गुमाने कमाने में बड़ी देर लगी।
0: ओए होए होए क्या बात है, क्या बात आज बड़े
1: सरे खाक कोई पेड़ नहीं था ताबश,
0: ओए होए
1: इसलिए पहुंच जमाने में बड़ी देर लगी।
0: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बड़ी देर लगी, कोई बात नहीं, दो दिन बाद ठिकाने आ जाएंगे फिर।
1: दो लतीफे, दो तीन लतीफे हैं
0: जी जी।
1: सबसे पहले चौधरी फरियाद साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को,
0: ओ माजर चाहता हूँ, चौधरी मुजफ्फर साहब ने स्पेशल मुझे कहा था कि अजीब चौहान साहब को मेरा हाथ बांध के सलाम देना।
1: शुक्रिया उनके प्यार का, मोहब्बत का, वो ऐसे अच्छे इंसान है कि वो सबके लिए मोहब्बतें बांटते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं।
1: तो सारे आपकी तरह तो नहीं है ना।
0: चलिए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं, मैं मजे की बात तो आ रही है मुझे आपको कहने के लिए कुछ, लेकिन क्या है कि एम खान साहब और दूसरे दोस्तों का एहसास है इसलिए मैं खामोशी रहूं तो बेहतर है।
1: नहीं आप उनको आधा घंटा भी इंतजार करें।
0: नहीं मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, आप बोलें, आप लतीफे
1: सुनाएं। आधा घंटा भी आप उनको इंतजार कराए ना तो कोई मायने नहीं करेगा। एक जमाना था मैं भी 25-30 साल पहले लाइन पर लग जाता था तो उस वक्त मुझे भी पौना पौना घंटा इंतजार करना पड़ता था।
0: अच्छा
1: अब तो हर चीज चेंज हो गई है ना। तो अच्छा लतीफा सुनाता हूँ मैं।
0: जी जी सुनाए।
1: एक नई नुवाली दुल्हन ने उठाकर अपने शोर से पूछा,
0: क्या उठाकर?
1: बोची को हटाकर अगले पूरे महीने में आपको अपने हाथ से खाना पकाकर खिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी बीमे पॉलिसी की सारी रकम, शोर ने जवाब दिया।
0: अच्छा अच्छा
1: अच्छा एक और है
0: जी।
1: एक खातून ने रिपोर्ट दायर करने पहुंची, इंस्पेक्टर साहब एक साल काबल मेरे शोर बाजार में आलू खरीदने गए थे लेकिन आज तक नहीं लौटे, बताएं मैं अब क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब संजीदगी से बोले, आप कोई दूसरी सब्जी पका लें।
0: अच्छा ठीक वाह वाह क्या बात है।
1: डॉक्टर ये है, डॉक्टर आप शोर को आराम की सख्त जरूरत है, ये नींद की गोलियां दे दी जाए। बीवी ये मैं इनके इस किस वक्त दूं? डॉक्टर ये इनके लिए नहीं आपके लिए है।
0: क्या बात है।
1: तो ठीक है जी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी
0: इंशाल्लाह।
1: तो पिछले हफ्ते आपने बहुत मिस किया, मेरे आंखों में आंसू आ गए।
0: आंसू बहे तो नहीं ना? आंसू बहे तो नहीं ना?
1: नहीं बहे थे, फिर मैं अकेला बह के गाता रहा आंसू, वो गाना है ना, वक्त दे नहीं आंखों ते नहीं,
0: रहने दे
1: वक्त दे नहीं आंखों ते पता नहीं कह रावी दे चनाब। हाँ
0: लेकिन शुक्र है वो वगे नहीं।
1: तो बगे से आप तक पहुंच जाते
0: ना? हाँ फिर तो आना ही पड़ता ना।
1: ठीक है ठीक है जी, खुदा हाफिज़ जी।
0: ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ये थे जनाब अजीब चौहान साहब औरदम से, माशाल्लाह क्या बात है, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम खान साहब और अब जुड़ गए हैं जावेद मीर भाई भी, तो चलते हैं जनाब तालियां की गूंज में। अब खुश आमदीद वेलकम जी एम कहेंगे एम खान साहब को, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातू। मेरी तरफ से आपका साहब, जितने सुनने वालियाँ हैं सुनने वाले हैं सब को अल्लाह सख्ती रखे। अगर इजाजत हो एक आलात आगरा के लिए मैं अपनी जुबान का एक लतीफ़ा है, अगर इजाजत हो तो सुना दूँ।
0: हाँ कोई बात नहीं आप सुनाएं लतीफ़ा, लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो आप सुनाइए।
2: वो हमारे बलादरी के आदमी कश्मीर से रजौरी से चले ना जिस वक्त खुरटा और चिड़ोई काला डब से आगे वो जो नका पी पता है क्या बोलते हैं उसके दरमियान के ये वाक्य आया। तो जिस वक्त मुड़कर वापस गए तो लोगों ने, खानदान वालों ने, गांव वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया कि हजरत साहब वापस आ गए हैं। आप कोई सफर की कहने लगे, कोई सफर की बात सुनाए जिससे इस इलाके में आपकी बहादुरी और शोहरत का इजाफा हो जाए।
0: जी
2: तो उन्होंने हमारी गोजी, मेरी गोजी जुबान में कहा, तीन जनों की तहाड़ पे हाय हम 60 जना अकेला, हाय हम 60 जना अकेला, अगर हम घोगा करें एक ही लूटे एक ही कूटे, हाय हम अगर हम दोबारा घोगा करें
0: अच्छा
2: चीनी लूटे चीनी कूटे
0: अच्छा,
2: हाय हम 60 जना अकेला
0: क्या बात है खान साहब।
2: ने भी उस उन लोगों के बारे में इशार फरमाया, वो अपने गांव में पहुंचे थे, अलामा इकबाल की रूह कहीं वो उनकी मीटिंग देख रही थी।
0: अच्छा
2: अलामा इकबाल ने कहा कि इबलीस के तावीज से शायद कुछ रोज समझ जाए। आगे अलामा इकबाल फरमाते हैं, कौम उमिलत को बेदार करने के लिए गाफिल सदा मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताहिर बोस्तानों में, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में।
0: वाह बहुत खूब,
2: जरा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, डरा क्या है भला ऐदे कौन की दास्तानों में।
0: वाह वाह बहुत खूब,
2: ये खामोशी कहाँ तक,
0: क्या बात
2: है, फरियाद पैदा कर।
0: वाह वाह वाह बहुत खूब,
2: जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में।
0: वाह बहुत खूब,
2: ना समझोगे तो मिट जाओगे, इस आलम इस्लाम के रहने वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी
0: दास्तानों
2: में।
0: वाह वाह,
2: यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है,
0: वाह
2: जो है राहे अमल में गामजन।
0: वाह बहुत खूब,
2: महबूब फितरत है।
0: वाह
2: आगे अलामा मियां साहब ने भी कुछ मिली जुली समझाने की कोशिश की है, आपका निराला शान है। वो आपके जमाने मुबारक में किसी ने अलामा इकबाल से पूछा कि इकबाल तूने पूरी दुनिया के लिए कुछ न कुछ नुकता चीन किया, तो मियां साहब के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, ये क्या बात है। तो आपने फरमाया, मियां साहब एक ऐसा हीरा है जिस हीरे की पूरी कायनात को रोशनी जाती है, मियां साहब इरशाद फरमाते हैं साफ मनवर कर दा, कागज साफ मनवर कर दा, जैमे चेहरा दिल भर दा, लुकते वांगनी बंदी मशकी, अरफ आगाज आगाज उतरदा, अरफों बिच सफेदी रोशन, वो जैमें फल अंदर पता, शाखा वांगर सतरां सिद्धियां, वो चोटी थी लग लथा लथा, हर हर सतर मुबारक हो पुदी आई लहर रवानी लफ्जां दे सिप विचों लभन दुर्रे यतीम मुहानी कड कड़दा है पे विच गनेरे जुल्फ जमे महबूबी मरकज नैना मजका वांगर कौन गने सब खूबी कौन गने सब खूबी। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपका जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शमूलियत की, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब एम खान साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए। और जनाब जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब जावेद मीर भाई भी। और अब क्योंकि वक्त हो चुका है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद आपसे मिलते हैं।

0: साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, लाइव कॉल्स का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई और साथ में ही जुड़ गए नदीम मंसूर साहब भी। तो चलते हैं जनाब, तालियों की गूंज में जावेद मीर भाई की जानिब चलते हैं। जावेद मीर भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: कैसे हैं मेरी जान, ठीक हैं आप?
1: बस ठीक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह हमेशा आपको ठीक रखे सर।
1: दुआ,
0: हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हमेशा आपको सेहत कामला दे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, किसी का मोहताज ना करे।
1: शुक्रिया। तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को जो आए हैं उन्हें भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आने वालों को भी।
0: जी जी।
1: जिनमें मेरे दोस्त हैं आमिर शहजाद साहब, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, तौकीर शाह, तारिक भट्ट, आसिफ रियासत, अमजद अकीम भट्टी हैं, महबूब इलाही हैं, कामरान शहजाद, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम हैं, परवेज हैं, ताहिर मुगल, सफीउल्लाह, खालिद भट्टी हैं, शरफुद्दीन, तारिक दुल्फी हैं, छोटे पीर हैं, शकील साहब हैं, चौधरी महमूद हैं, चौधरी फरियाद और अमीदा साहिबा हैं, सादिया बहन हैं, गजाला साहिबा हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, अतीका साहिबा हैं और मेहरबान साहब हैं, अंसर महबूब चवानपुरी हैं, चौधरी तारिक हैं, हाजी अयूब शकील, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। चन छड़े अते निके निके लो, चन चढ़े आते निके निके लो, ओ चन

निकी निकी लोग माया निका निका हसदाए, सोना निका निका हसदाए, ओ माया निका निका हसदाए, सोना निका निका हसदाए।

चन चढ़े आते निके निके लो, चन चढ़े आते निके निके लो, ओ चन चढ़े आते निके निके लो।

काले रंग दी परांदी ओए काले रंग दी परांदी अस किते तक माया जिंद मुकदी जांदी अस किते तक माया जिंद मुकदी जांदी

ओ चन चढ़े आते निकी निकी लो, चन चढ़े आते निकी निकी लो, ओ फुलावे गुलाब दया तेरी गली गली खुशबू।

0: वाह वाह जी वाह, क्या बात है जावेद मीर भाई, मजा ही आ गया। क्या माये थे, ओए होए होए होए होए, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इतना प्यारा माया सुनाने का, अपने प्यारे अंदाज में, अपनी प्यारी आवाज में। जावेद मीर भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या माये थे जनाब, ऐसी चीजें सुनने को मिलती नहीं है, लेकिन जब मिले तो सुकून आ जाता है जनाब। अब ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब जावेद मीर भाई के लिए, और ढेर सारी तालियों की गूंज में हम खुश आमदीद वेलकम जी एनू कहेंगे जनाब नदीम मंसूर साहब को। एक ऐसी आवाज़ जो कानों में ऐसे रस घुलती है कि फिर कई कई दिन जनाब वो रस घुलता रहता है। जनाब नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं जनाब?
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: दुआ चाहिए भाइयों की, अल्लाह का बहुत करम है, आप दोस्तों की दुआओं से अल्लाह का हमेशा करम रहता है जनाब,
1: माशाल्लाह।
0: तो आप क्या लेकर आए हैं? सुना ये माया आज सुनाया जो आपने जावेद मीर भाई ने।
1: अच्छा, जबरदस्त
0: बहुत प्यारा माया था, क्या बात है,
1: क्या बात है।
0: जी जी।
1: अच्छा, मैं आज माया लेके आया हूँ जो लिखे हुए हैं नहीद साहब आ गए।
0: अच्छा, नहीद हमारी जो प्रेजेंटर हैं।
1: जी प्रेजेंटर हैं, ये उनके लिखे हुए हैं।
0: आए हाय हाय हाय, वे तो मजा ही आ जाएगा जनाब, एक आपकी सुरीली आवाज, ऊपर से नहीद चट्टा का लिखा हुआ कलाम, क्या बात।
1: जी तो वही, ये मैं कोशिश करता हूँ।
0: जी जरूर।
1: पानी पाक समंदर आंदे

0: वाह क्या नदीम भाई क्या बात है क्या नहीं दम मुझे नहीं पता था हमारी ये प्रेजेंटर इतनी काबिल है जनाब इतने प्यारे माये भी लिखती है क्या बात है और आपने उन्होंने जो मेहनत करके लिखा और आपने जिस अपनी प्यारी सुरीली आवाज में सुनाया जनाब हाय हाय हाय क्या बात है नदीम मंसूर साहब आप कितने सुरीले हैं ज़ाहिर तर्ज भी आपने खुद ही बनाई होगी उन्होंने लिखा ही था कौन सा गाया हुआ था कि आपने कॉपी किया तो एनीवे बहुत अच्छी तर्ज रखी आपने बहुत मज़ा आया बड़ा लुत्फ आया क्या बात है शायरी की और क्या बात है आपकी गायकी की
1: अल्लाह आपको ये, हाँ क्योंकि ये तर्ज जो ऐसी है बहुत से मायों में ये बहुत
0: पुरानी तरह से यार माई अभी पुराने टाइप के है ना उस वक्त इस तरह के बहुत जबरदस्त क्या बात है ओए होए होए होए होए होए यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कसम से और मुझे आपका तो कोई शक नहीं है मुझे ये तो किसी को भी इस बारे में नहीं है कि आप की आवाज में कोई कसर है या गाने में कोई कसर है बहुत प्यारी आवाज अल्लाह ने आपको दी है और गाते भी बहुत प्यारा है आप लेकिन नहीं नहीं साहबा का लिखा हुआ ये सैटरडे
1: क्या
0: बात है सैटरडे को प्रोग्राम करती हैं उसमें शायरी तो करती नहीं और टॉपिक मुख्तलिफ रखे होते हैं उन्होंने लेकिन बहुत अच्छा लिखा क्या बात है बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी आपकी अगले आवर में कोशिश कीजिएगा ठीक है मेरी जान ओके सर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ढेर सारी तालियां जनाब नदीम मंसूर साहब के लिए ये बहुत ही प्यारे माये इन्होंने सुनाए हमारी प्रेजेंटर है जनाब नहीद साहबा उनके लिखे हुए और इन्होंने आए क्या अंदाज में गाए बड़ा लुत्फ आया यकीनन आप सभी दोस्तों ने इंजॉय किया होगा और दोस्तों अब क्या है कि वक्त हमें बता रहा है कमर्शियल का टाइम हो गया है और छोटा सा गाना भी चलाना पड़ेगा क्योंकि ये स्पॉन्सरशुदा है तो चलते हैं पहले टाइम चेक कर लेते हैं
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:48 से यानी कि 12:48 तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा की सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। चौधरी फरियाद साहब, शुक्रिया आप आए, लेकिन क्या है कि टाइम बड़े नाजुक मोड पे है। हमने कहा आप अगले आवर में आइएगा, अभी गाना वो सुनने दें सभी को। और शहजादे तीन बड़ा मुझे तंग करते हैं। आज आरिफ अली की बर्थडे थी और हमने बड़े गाने बजाए उनके लिए और वो सुना ही नहीं उन्होंने, उस वक्त बिजी हो गए काम में। चलिए कोई बात नहीं, आरिफ अली एक बार फिर आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे। तो एक बार फिर आरिफ अली, हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे नहीं तीसरे हिस्से में आ गए हैं, यानी कि आखिरी आवर में आ गए हैं और उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी ये आवर भी आपके लिए प्यारा और म्यारी आवर हो। तो दोस्तों अब तीसरे आवर को हिट ऑफ द आवर के साथ ही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने सोनू निगम की प्यारी सुरीली आवाज में प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। और इसके साथ ही दोस्तों कमर्शियल का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01। और हमारे साथ जुड़े हुए नदीम मंसूर साहब और अजीज भाई गुजरात से बड़े अरसे के बाद। तो चलते हैं जनाब, कमर्शियल सुनते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once in a lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: 24 hours a day, Sunrise Radio. जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो आज तो कमाल ही होगी जनाब, आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जनाब जो पहले रेगुलरली हमारे प्रोग्राम में आती थी और इतनी रौनक होती थी उनके आने से, फिर कुछ हिस्सा गायब रहे और आज बड़े अरसे बाद उनकी प्यारी सुरीली आवाज़ सुनी तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तो वो शख्सियत है, लेकिन क्या है कि फिर मानना पड़ा क्योंकि वही थे। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम, जी अनु सत बिस्मिल्ला कहेंगे जनाब अजीज भाई को गुजरात से। अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: जग से प्यार करे ना कोई,

0: सुन ते मगर ले जा ले जा
1: मेरे पुरानू ते एंड ते जाके होर ही कुछ निकलिया जनाब
0: अमर भाई पता क्या बड़े अरसे बाद अच्छा कुछ ना लोग समझते हैं कि जो बंदा जुदा हो गया ना हमसे वो शायद दुनिया से चला गया
1: नहीं अल्लाह ना करे
0: इस तरह कता तल्लक किया है लोगों ने मैं हैरान हूँ अमर भाई आपका तो मैं आपको पता है बहुत बड़ा फैन हूँ इसी वजह से कि आपने जिंदगी में कभी भी इग्नोर नहीं किया किसी भी इंसान को
1: नहीं मैं इग्नोर नहीं करता जो एक बार दिल में आ जाए ना उन्हें मैं कभी इग्नोर नहीं करता
0: क्या बात है माशाल्लाह आप हैं जहांगीर भाई हैं ड्यूजबरी से अंकल सफीला साहब हैं यार इनको मैं सलूट करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे आपको सलामत रखे
1: आमीन
0: आप लोगों ने कभी भी मुझे तनहा नहीं होने दिया
1: नहीं जी होने देंगे ही नहीं
0: कुछ क्या बात है बिल्कुल ऐसे ही है तो मसरूफियत की वजह से अमर भाई आपको पता है जब से आप लोगों ने मुझे बिजनेस में डाले ना तो बिजनेस बंदा शुरू कर देना तो फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल है
1: सही लेकिन अच्छी बात है अल्लाह तबारक ताला ने आपके आपने हिम्मत करके कारोबार शुरू किया अल्लाह ने आपको बरकत दी उसमें और अल्लाह ने चार चांद लगा दिए आपकी बिजनेस को और बहुत बरकत दी तो हमेशा ये बरकत कायम रहे सर
0: और यकीन करें कि आप लोग मेरे दिल में हर वक्त बसते हो कल कुदरती मैं ना अपने मार्ट पे बैठा हुआ था
1: अच्छा
0: तो मैडम नहीद साहब उसको मेरा ख्याल है नए आए हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे
1: नहीं उन्होंने काफी अरसा हो गया है आपने उन्हें बड़े अरसे बाद अच्छा। सुना इसलिए आप सोच रहे हैं नए
0: तो उन्होंने बड़ा अच्छा कल एक टॉपिक रखा था उसके बाद कर रहे थे तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं ना शो में जाऊं और मैं बात करूं
1: सही
0: और फिर मैं उनके शो में गया हूं और मैं सैल्यूट करता हूं उनको उन्होंने मेरी हर बात को बहुत अच्छे तरीके से सराहा है बल्कि कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका वो उन्होंने की हैं एक्सप्लेन और उनको बहुत बहुत सलाम और दुआएं मेरी जानिब से
1: जी
0: तमाम सुनने वालों को सलाम और दुआएं और ये जो मैंने एक छोटा सा शोशा छोड़ा ना इसको मैं याद करके नेक्स्ट आपको मुकम्मल सुनूंगा इंशाल्लाह
1: ठीक है इंशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया
0: जी
1: बहुत मेहरबानी सर आप आए
0: बहुत शुक्रिया
1: अल्लाह हाफिज़ ये थे अजीज भाई और पाकिस्तान गुजरात से रेगुलर कॉलर होते थे फिर इन्होंने एक स्टोर खोला फिर बिजी हो गए फिर उसके बाद गायब हो गए आज बड़े अरसे बाद सालों बाद इनकी आवाज़ सुनी तो बहुत अच्छा लगा तो अब जनाब एक बार फिर तालियां हो जाएं हमारे जनाब नदीम मंसूर साहब के लिए पिछले आवर में उन्होंने क्या माया सुनाया नईद हमारी जो प्रेजेंटर उनका लिखा हुआ कलाम सुनाया मज़ा ही आ गया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वंस अगेन सर
2: जी
1: सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जो आपने अजीज भाई को वक्त दिया
2: कोई बात नहीं
1: जी सर
2: चलो कुछ गजल है एक
1: हाँ
2: तो दिए दिल के जला कर देख लो तुम
1: आए आए आए आए
2: मोहब्बत को निभा कर देख लो तुम
1: वाह क्या बात है
2: तो ये आपकी नजर सबकी नजर है
1: थैंक यू सर
2: दिए दिल के जला कर देख लो तुम दिए दिल के

मुस्कुरा कर देख लो तुम, दिए दिल के जला कर देख लो तुम।

तो क्या घबराना दिल को, हो अंधेरा तो क्या घबराना।

दर खुद ही रोशन हो ही जाए, मुकद्दर खुद ही रोशन हो ही जाए, कभी

0: वाह जी वाह, क्या बात है नदीम भाई। ये आपने कलाम लिखा हुआ है या किसी और का पढ़ा आपने?
1: नहीं नहीं अपना ही है।
0: इसलिए मैंने बीच में नदीम नाम आया ना, तो आप बताते क्यों नहीं हो ये आपका लिखा हुआ कलाम है, इतना प्यारा कलाम लिखा।
1: दिल की बातें कह देता हूँ।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, क्या बात है। हाँ, क्या दिल की बातें आपने कही के ओए होए होए होए, हर हर बोल पे दम निकले दम निकल जाता है जनाब। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल कलाम आपने लिखा और ब्यूटीफुल गाया। ऐसे पता मैं पहले ढूंढना शुरू किया और फिर जोर देना शुरू किया दिमाग पे कि यार ये कोई गजल सुनी नहीं, ये गजल नुमा गीत है सुनी नहीं कोई कभी, तो फिर ढूंढना शुरू किया इधर के शायद मेरे इल्म में ना हो, फिर देखा नहीं नहीं नहीं नहीं ये कोई गजल ना है ना कोई गीत है, ये नदीम मंजूर भाई ने मंसूर भाई ने खुद ही लिखा होगा और आपने उतने में अपना नाम बीच में ले लिया, तो फिर मैं श्योर हो गया कि आपने ही लिखा है, आपने इसे खुद तर्ज बनाई और खुद ही गाया। क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही
1: जहन में बातें चलती रहती हैं, बस इशारा आते रहते
0: हैं। जो बातें ऐसी बातें ऐसी बातें चलता रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे कलाम सुनने को मिलते नहीं है। बहुत अच्छा कलाम था, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात, क्या बात है, अपना लिखा हुआ कलाम नदीम मंसूर साहब ने अपने प्यारे सुरीली आवाज में इसको गाया, बहुत अच्छा लगा। अब जनाब चौधरी फरियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: जी जी वालेकुम सलाम।
0: सजनों बड़ी लाइन छोड़ी, फिर मेरे नाल हाथ हो गया, हाथे हो गया कि हाथे होया कि क्या बताएं जनाब, जो है ना वो पाकिस्तान की कॉल लगी तो मैंने देखा कि जनाब वो आपकी होगी, तो देखा अजीज भाई है गुजरात से।
2: अच्छा, अच्छा।
0: जी अभी जावेद मीर भाई की कॉल लगी, मैंने लेने की होल्ड करने की कोशिश की, वो कट गई और अब तो उस पर कब्जा हो गया रुखसार अहमद साहब का। तो जी भाई जान,
2: अच्छा
0: सुनाइए।
2: जी बिस्मिल्लाह, ये सब तो पहले सलाम दुआ करा।
0: जी जी सुनो
2: सारे अतिका बाजी ने, गदाला बाजी ने, नशीन जी ने और सीमा जी, इन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जी जी।
2: और परवेज भाई ने, महबूब लाई साहब ने, मुदसर साहब ने, अजी सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने, आज इन्होंने मुलाकात भी हो गई है।
0: अच्छा हो गई है।
2: जी
0: वाह जी वाह, तुसी उधर गए या वो इधर आए या रस्ते किते मिले हो?
2: अरे रस्ते ही, रस्ते ही एक पिंड पहुंच गई है किसी उत्थे मुलाकात।
0: ओहो अच्छा अच्छा, सही है सही।
2: जी सही। अपने शकील भाई ने, हीरा भाई ने और वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कयूम भाई ने, हमीद राणा साहब ने, जनाब तारक बट साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसिफ यासिर साहब ने, जनाब डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने, चौधरी रफ्तार साहब ने, एम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, राजा वकास साहब ने, राजा दुलकर नैन साहब ने और राजा शोएब साहब ने और सिकंदर अली, बिशारत अली, आरफ अली, सबा की मेरा बहुत बहुत सलाम। तो मेरे तो पीछे चौधरी रफ्तार साहब ने, उन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा
0: जी।
2: लिख लेने के हर दम लबा तेरे अर्जी,
0: सुभान अल्लाह,
2: हर दम लबा तेरे अर्जी, मेरे दोस्तों मालिक खता बख्शे,
0: वाह सुभान अल्लाह,
2: ओ गुनगार बदकार से असरकार बंदा, लायक अपनी सिफत खुदा बख्शे,
0: वाह,
2: पाली जान न चीज दी है बेशक कर कबूल, साडी राज दा बख्शे, बख्श देवे बादल खुदा सच्चा,
0: वाह सुभान अल्लाह,
2: बख्श देवे बादल, बख्श देवे बादल खुदा सच्चा, सदके पाखा दे रोजे जजा बख्शे,
0: वाह वाह सुभान अल्लाह।
2: बिस्मिल्लाह करा फिर आखने ने के आसके कीते कबूल उसने, जिंदगी विच जो उस खफतान बख्शे, मेरी जान मस्कीन लाचार ताई सुनन वाले मैनू कुरान बख्शे,
0: वाह सुभान अल्लाह,
2: बख्शे हर जोर उस कलम नु मेहरबानो, करा महफला विच बयान बख्शे, बख्शे इज्जत बहु उस शफाक बादल, वज के उसने दान बख्शे,
0: सुभान अल्लाह, वाह
2: माशा। मजाल ने रंग
0: जी
2: लिखने ने के सब कुछ वारिया उस यार उतो,
0: वाह वाह वाह,
2: सब कुछ वारिया उस यार उतो, तरस उसनों मासा ना यार आया,
0: वाह,
2: वफादारियां सारियां रद होइयां, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਧਾਈਆਂ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਪਲਟ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
2: ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ
0: ਵਾਹ
2: ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਗਮ ਵੰਡਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮਖਾਰ ਆਇਆ ਆਸ ਜਿਸ ਤੇ ਸਦਾ ਕਬੀਰ ਰੱਖੀ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਦਿਲਦਾਰ ਆਇਆ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
2: ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਇਤਬਾਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਬੇਕਾਰ ਆਇਆ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਦੇਣ ਗੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਆਇਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ
2: ਗਈ ਟੁੱਟ ਵਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸਾਰੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
2: ਗਈ ਟੁੱਟ ਵਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ
0: ਹੋਏ ਹੋਏ
2: ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਦਿਲਦਾਰ ਆਇਆ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
2: ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਸਦਾ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਟਾਲ ਦਿੱਤਾ
0: ਵਾਹ
2: ਸਦਾ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਜਰਾਨ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਵਸਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ
0: ਵਾਹ
2: ਉਸਦੇ ਵਸਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ
0: ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ
2: ਦੇਖ ਕੈਦ ਕਾ ਛੁੜਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨਵਾਨ ਆਇਆ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਬੀਰ ਛੋੜੀ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
2: ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬੇਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦਰਦਾਨ ਆਇਆ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ
2: ਉਸ ਵਫਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਤੋੜੇ ਉਸ ਵਫਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਤੋੜੇ ਝੂਠਾ ਆ ਰਹੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਦਾ ਕਬੀਰ ਰੱਖੇ
0: ਵਾਹ
2: ਮਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਾ ਕਬੀਰ ਰੱਖੇ ਬੇ ਵਫਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਆਇਆ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
2: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਗਮ ਵਾਲੀ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
2: ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਗਮ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਯਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਮਗੀਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਪਨਾਹ ਨਾ ਯਾਰ ਲੱਭੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਆਇਆ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
2: ਧੋਖੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਉਸਤੋਂ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਆਇਆ ਜਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰੇ ਆਪਣੀ
0: ਵਾਹ
2: ਜਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਉਸੀਨ ਆਇਆ
0: ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
2: ਅਮਰ ਭਾਈ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ یہ تھے میرے پیارے دوست جناب چودھری فیاض صاحب پاکستان کشمیر جڑوئی سے ڈیڑھ سال تعلیم ان کے لیے اور دوستوں وقت ہو چکا ہے کمرشل کا کمرشل کے بعد چودھری رخسار سے ملتے ہیں
3: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है हम यॉर्कशायर मैनचेस्टर ईस्ट लैंकशायर मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
6: Sunrise Radio, Sunrise.
0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों चलते हैं अब तालियों की गूंज में मैनचेस्टर जहां जनाब चौधरी रुखसार अहमद साहब इस लाइन पे मौजूद हैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
7: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور کیا کر رہے تھے اور بڑی دیر بعد آئے ہیں کیوں دیر بعد آئے ہیں خیریت کے ساتھ ہیں
7: सर मैं यकीन करके जॉब पे हूँ तो अभी जो ना ब्रेक मेरी खत्म हो गई है, आस पास वार तो खत्म हो गई थी तो, लेकिन मैं वेट कर रहा था तो मैंने बोला चलो आपसे बात करने का शर्फ हासिल हो गया, मेरे लिए यही काफी है। और माशाल्लाह आपके तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा चाहत भरा उल्फत भरा बहुत बहुत सलाम। और माशाल्लाह एक मोहतरम की मेरे आपने हैप्पी बर्थडे बताया जनाब, मोहतरम अरफ साहब है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और उनको आज का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
0: आरफ आरफ अली को
7: जी मैंने आरफ ही बोला
0: आरफ अली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी बर्थडे उनको जनाब
7: जी। वो वही आरफ जो वो खुद ही आरफ हो क्या हाल है जी
0: सही है
7: माशाल्लाह।
0: ये तीनों भाई जो है ना बड़े, मैं इन्हें इसीलिए कहता होता हूँ शहजादे, यही शहजादे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं। तो आज जनाब आरफ अली की आज सालगिरह थी, लेकिन वो धूमधाम नहीं हो सकी क्योंकि जो 11 और 12 के दरमियान टाइम होता है वो होता है डेडिकेशन का, उसके बाद होता नहीं है। तो फिर वो बेचारा सोच रहा था छोटा सा मुंह बना के कि आज भाई ने मेरे लिए कोई गाना नहीं लगाया क्योंकि उस वक्त वो बिजी था, घर सुना नहीं उसने। तो एनीवे अब खुश हो गया होगा, उसको आपने भी हैप्पी बर्थडे बोल दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने बोला था इसलिए आपने सुना और आपने भी उसको मुबारकबाद दी।
7: जी मैं सुन रहा था जॉब पे था, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपका शुरू से ही प्रोग्राम थोड़ा जब अयूब चौहान साहब आए थे तो उनके साथ माशाल्लाह आपकी क्या खूबसूरत तो वो कहते हैं ना कि गिट मिट हुई है क्या,
0: तो हमारी तो होती रहती है ना, हम दोनों दोस्तों की होती रहती है
7: जी।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी
7: जी। अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे और जो माशाल्लाह आ चुके हैं जो आने वाले हैं सभी।
0: अभी जावेद मीर भाई की लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्हें मिस कर दिया अब, लेकिन बड़ा मजा आता वो आते तो कोई गाना सुनाते, पिछले आवर में बड़ा प्यारा माया सुनाया उन्होंने। एनीवे बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
7: थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब चौधरी रुखसार अहमद साहब को मानचेस्टर में। आज उन्होंने कोई शायरी नहीं की, कुछ नहीं की, सिर्फ वो जनाब आरफ अली को सालगिरह की मुबारकबाद देने आए और प्रोग्राम में शमूलियत की, उनका शुक्रिया। और अब क्या है कि हमारे जावेद मीर भाई की उस वक्त लाइन मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट नहीं हुई, उनकी तरफ से हुई थी, मैंने तो होल्ड पे लगाने की कोशिश की थी, उनसे गाना सुन लेते तो अच्छा होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। और फिर मज़े की बात यह है कि आज मेरे प्रोग्राम के बाद जनाब काशिफ आ रहे हैं, जनाब हल्ला गुल्ला होगा तो फिर उसके प्रोग्राम में होगा जनाब, क्या बात है काशिफ की। और जनाब ज़रूर उनका प्रोग्राम सुनिएगा, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है जनाब, कुछ देर के लिए बंदा अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ें भूल जाता है और उनकी बातें ही ऐसी होती हैं, जहन पूरा उनकी बातों में चला जाता है। और कभी बहुत साथ देते हैं, कभी थोड़ा रुलाते नहीं हैं, रुलाते नहीं, थोड़ा परेशान कर देते हैं और साथे ज़्यादा हैं। तो जनाब ज़रूर उनका प्रोग्राम सुनिएगा। और अब जैसा कि आपको पता है कि वक्त बड़े नाजुक मोड़ पे है और अब कोई गीत नहीं होगा, कुछ हम आप कोई कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि चंद सेकंडों के बाद ज़ोहर की अज़ान का जो है वो वक्त हो चुका है। और ग़ज़ाला जबीन साहब आप फ़ोन कर रही हैं, फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि आप जनाब क्योंकि अब कमर्शियल आने वाली है और कमर्शियल के बाद जनाब नहीं अजान आने वाली है, अजान के बाद फिर कमर्शियल है, कमर्शियल के बाद फिर आप से ही बात होगी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
8: یہ اذان بریڈ فورڈ اور گردنوا کے علاقوں کے وقت کے مطابق پیش کی جا رہی ہے، آپ اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق نماز ادا کیجیے۔ اللہ

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही अब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। तो चलेंगे पहले टाइम चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:42, यानी कि 1:42। तो जनाब, जैसा कि अजान से पहले जाने से मैंने कहा था, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गजाला जबीन बहना। तो चलते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उस पे चलते हैं, उसके बाद फौरन जनाब मिलते हैं गजाला जबीन बहना से।
3: 24 hours a day, Sunrise Radio। क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0434 पर कॉल करें।
2: बी पार्ट ऑफ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एट द रेशियल इक्विटी नेटवर्क डिनर, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा रोचल से, तो चलते हैं तालियों की गूंज में, उन्हें खुश आमदीद वेलकम जी इन कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। गजाला जबीन बहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
1: अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ।
0: अल्लाह हमेशा ठीक ठाक रखे आपको।
1: आमीन आमीन, अल्लाह सबको ठीक ठाक रखे।
0: आप कह रही थी कि आप के मेहमान आने वाले हैं, तो हम बेहतर है सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, ये ना हो कि हम बातें करते रहें और मेहमान आ जाएं आपसे कुछ सुने ही नहीं।
1: बिल्कुल, वो आने वाले थे तभी अभी आए नहीं, तभी मैंने होल्ड रखा, मैंने कहा था मैं बंद कर दूंगी।
0: सही है,
1: मैंने कहा एक तो आपके मैं प्रोग्राम भी रेडियो पे सुनती हूँ।
0: जी जी,
1: 3 घंटे प्रोग्राम सुनना फिर गर्म हो जाता है, वो कहता अब कोई एक्ट नहीं।
0: सही है, सही सही।
1: आज मैंने दूसरे रेडियो पे जब फोन पे रेडियो सुना,
0: अच्छा
1: तो इस पे मैंने कहा मैं भाई को फोन कर लू, है टाइम।
0: सही, ठीक है। तो आपने दो मोबाइल ले लिए, एक पे रेडियो सुन रही है और दूसरे को फोन इस्तेमाल कर रही है?
1: नहीं, पहले भी थे, दो नहीं तीन है, तीसरा कभी इमरजेंसियों में करने पड़ जाते हैं ना।
0: हाँ सही है, ये तो आपने वो बात की ना, किसी ने कहा कि जो है मेरे पास तीन एनके हैं, उसने बोला तीन किस लिए? बोलता है कि एक तो दूर की नजर के लिए, दूसरी यानी कि नजदीक की नजर के लिए, तो उसने बोला फिर तीसरी का क्या मतलब हुआ? वो बोलता है दोनों कहीं गुम हो जाएं तो उससे देखूंगा ढूंढूंगा कि किधर हैं वो।
1: नहीं, मेरी जो गुम होने का नहीं होता, एक कुछ तंग करने लग गया था, फिर बच्चों ने दूसरा दे के दिया।
0: अच्छा,
1: तो वो फिर जो है ना वो तीसरा खुडे लाइन लगाया हुआ है कि कभी उसकी भी ना जरूरत पड़ जाए।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
1: क्योंकि बैटरी वैटरी खत्म हो जाती है ना, तो फिर जो होता है वो कहता है कि चलो ये दूसरे ही कर लो, दूसरे ही कर लो, क्योंकि बच्चों के फोन आते रहते हैं।
0: सही है,
1: इसी वजह से तो मुझे रहने देते। मैं कहती हूँ मैंने इतने इतने फोन इसीलिए रखे हुए हैं कि मैं जरा जो है ना आपको अपनी एक्टिव जो है ना सूरत हाल बताती रहूँ।
0: सही है, ठीक है ठीक है।
1: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी तो गुजारनी गुजारनी है ना।
0: सही, अच्छी तरह गुजरे तो अच्छा है।
1: इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम, लाला फरियाल साहब है, दादा मीर भाई साहब है सबको, और ये अभी आए थे रुखसार साहब।
0: जी जी,
1: अभी उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, उन्हें कहा बादशाह सलामत इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोलते।
0: हाँ, लेकिन मैंने जल्दी में बोल के आगे से कहा मैं बादशाह सलामत नहीं हूँ ना।
1: नहीं नहीं, वो बादशाह सलामत,
0: वो तो बादशाह सलामत है ही है ना, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर भी बड़ी बहुत बड़ी बात है, आते हैं टाइम निकाल के आते हैं। टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बंदा जब काम पे हो।
1: हाँ ठीक है, मैं मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ लूँ क्योंकि डोर पे कोई आ जाए।
0: वो ही पहले ही मैंने कहा था बातें रोक लेते हैं, लेकिन बहन भाई फिर बातें करते रहे।
1: वो पता क्या, अब इतने दिनों के बाद मिलेंगे तो कोई तो कोई बात तो
0: वो तो हो जाता है ना, बातें तो फिर रुकती नहीं है ना।
1: चले, शायद साहब गए, उनका थोड़ा छोटा सा कलाम है मैं आपको सुना दूँ। कभी जो पढ़ते थे उदास कहानियाँ,
0: हाय हाय हाय क्या बात है बहना।
1: कभी जो पढ़ते थे उदास कहानियाँ, आज वही अपनी जिंदगी का उन्वान लगती हैं।
0: हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूब,
1: थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। जो जख्म दूसरों के पढ़ के रो दिया करते थे, वही सत्रे अब अपनी पहचान लगती हैं।
0: वाह वाह, क्या बात,
1: थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। जो जख्म दूसरों के पढ़कर रो दिया करते थे, वही खतरे अब अपनी पहचान लगती हैं।
0: क्या बात,
1: हमें तो उम्र ने इतना बदल के रख दिया, हमें तो उम्र ने इतना ही बदल के रख दिया, खुशी की बात भी अब एक गुमान लगती
0: है। ओ हो, क्या बात है बहना, बहुत खूब बहुत खूब,
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुशी की बात भी अब गुमान लगती है, हमें खबर ही ना थी कि दर्द भी विरासत में है।
0: वाह क्या बात है,
1: हमें खबर भी ना थी कि दर्द भी विरासत में है, अब अपनी सांसें भी इम्तिहान लगती
0: हैं। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने भाई,
1: अब अपनी सांसें भी इम्तिहान लगती हैं, कभी जो पढ़ते थे उदास कहानियां, आज वही अपनी जिंदगी का उन्वान
0: लगते हैं। वाह वाह वाह क्या
1: बात, बहुत शुक्रिया, मेहमान भी आ गए।
0: शुक्रिया बहना, आपके उधर में उधर आपके मेहमान आ गए हैं, आज पता नहीं किधर से चंद चढ़ आया, आज हमारा शहजादा भी जल्दी आ गया, आज 10 to पहले चले। क्या बात है काशिप है, खैर हो अल्लाह हाफिज बहना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी तालियां गजाला जबीन बहना के लिए, क्या शायरी उन्होंने की, क्या हाय सर, बहुत प्यारी शायरी, बहुत प्यारी शायरी, बहुत दुखी थी लेकिन बड़ी प्यारी शायरी, बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने सुनाई, उनका अंदाज भी बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा अंदाज है, इन्होंने ये गज़ल सुनाई। और आज क्या बात है यार, आज इतने जल्दी क्यों आ गए,
2: इसलिए कि मैंने बताया ना कि लगन तड़प उदासी,
0: अच्छा, पिछले हफ्ते मुलाकात नहीं हुई इसलिए,
2: बस आपकी गाड़ी जब देखता हूँ ना तो ऐसे
0: सुकून आ जाता है कि आए हुए, क्या बात, मैंने कहा

0: बहुत टाइम है
1: अभी तो 9 मिनट देते हैं भाई।
0: अच्छा जी।
1: हाँ तो गाना सुनाना है क्या?
0: मैं शायरी अभी सामने तक की है।
1: नहीं पिछले हफ्ते आपने कहा था जनाब।
2: अच्छा
1: भूल जाते हैं
2: दिल, अभी बात हो रही थी दिल।
1: आप ऐसा करना कोई मना बादाम ले जाना इनके घर में, आप ले जाना।
2: ये पागले होते हैं जब भी रोड पे नजर आते हैं तो पकड़ना बड़ा मुश्किल
1: है।
2: इनको पकड़ने के लिए मुझे पहले बादाम खाने पड़ेंगे।
1: अच्छा काशिम है, काशिम जल्दी आ गया आज माशाल्लाह।
0: जी जी मुलाकात होती है कभी कभार इनकी,
2: वाकई मुलाकात
1: होता है ना, आंखों आंखों में ही होती है क्योंकि मिल पकड़ में तो आते नहीं,
2: पकड़ में नहीं आ सकते।
1: अच्छा अच्छा जी जी
0: बड़ी मोहब्बत है बड़ा।
1: जी सर
0: प्यार इनका भी बहुत प्यार से मिलते
1: जी, बड़े प्यार, इसलिए तो मेरा मैं कहता हूँ ना शहजादा है लाडला मेरा।
0: जी जी
1: जी
0: तो जी भाई काशिफ के नाम भी करेंगे सभी के नाम, और अभी गजाला जी टीका जी के नाम, और चौधरी रक्सार चौधरी फरियाद, और भाई जवेद मीर साहब, तारक जुल्फी चौधरी मुजफ्फर है, भाई सफीउल्लाह सभी के नाम और आप सभी के नाम।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: शायर लिखता है गुलाब आंखे शराब आंखे यही तो है लाजवाब आंखे।
1: वाह क्या बात है महबूब भाई
0: जी, थैंक यू। गुलाब आंखे शराब आंखे यही तो है लाजवाब आंखे, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखे अजाब आंखे।
1: वाह क्या कहने,
0: इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखें अजाब आंखें, कभी नजरों में बला की खोश शोखी कभी सरापा हिजाब आंखें।
1: हाय हाय हाय क्या बात,
0: कभी नजरों में बला की शोखी कभी सरापा हिजाब आंखें।
1: वाह,
0: कभी छुपाती है राज दिल के,
1: होय होय,
0: कभी छुपाती है राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें।
1: हाय हाय क्या बात,
0: कभी छुपाती हैं राज दिल की के कभी हैं दिल की किताब आंखें।
1: वाह,
0: किसी ने देखी तो दिल जैसी किसी ने पाई शराब आंखें।
1: वाह वाह क्या बात है,
0: थैंक यू। किसी ने देखी तो झील जैसी किसी ने पाई शराब आंखें, वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले हजूर आंखें जनाब आंखें।
1: क्या बात है क्या बात है,
0: वो आए तो लोग मुझसे बोले हजूर आंखे जनाब आंखे हैं। अजब था गुफ्तगू का आलम, अजब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई जवाब आंखे।
1: वाह वाह वाह क्या बात है बहुत खूब,
0: सवाल कोई जवाब आंखे, हजारों इन पे कातल हुए हैं,
1: होय होय,
0: हजारों इन पे कतल हुए हैं, खुदा के बंदे संभाल आंखे।
1: वाह क्या बात है क्या बात, ओ क्या बात,
0: हजार इन पे कतल हुए हैं, खुदा के बंदे संभाल आंखे, गुलाब आंखे शराब आंखे यही तो है लाजवाब आंखे।
1: हाय हाय सदके जाऊं,
0: गुलाब आंखे शराब आंखे यही तो है लाजवाब आंखे, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखे अजाब आंखें।
1: वाह क्या बात,
0: सवाब आंखें अजाब आंखें
1: क्या बात है
2: महबूब भाई, ये जो आंखों के बारे में आपने इतने राज आज खोले हैं, हम तो चाहते हैं आपकी आंखों में देखें, पर आपने काले चश्मे कभी उतारे नहीं।
1: वो इसीलिए काले चश्मे पहने हुए हैं कि कोई कत्ल ना हो जाए।
2: ये आप दूसरों की आंखों में
1: हाँ सही है, लेकिन अपनी बचा के रखी हुई, लेकिन मुझे आज ये गाना ना गाने का मलाल नहीं है क्योंकि इन्होंने जो शायरी की है ना, हाय हाय क्या बात क्या बात,
2: अपनी आंखों में नहीं दूसरों की,
1: दूसरों की।
0: मैं आपको भाई राज की बात बताऊं, मैं रेफ्रिजरेशन का मैकेनिक था, कंप्रेसर वेल्डर इलेक्ट्रिक वेल्डर भी था। अच्छा। उसकी वजह से मेरी आंखों पर असर है तो मुझे रोशनी तंग करती है, मैं इसलिए ब्लैक पहनता हूँ।
1: चलिए
0: वरना मुझे छींकें आती है, अगर मैं गहरी अनकना पहनू तो छींकें आती नजर की वजह से।
1: बहुत अच्छी
0: वो राज मैंने आपको बता दिया,
1: राज बता दिया, राज खोल दी।
2: ये मेरी आंखों में देख रहे हैं, मैं इनकी आंखों में कैसे देखूं, काली सियाह आंखें जनाब।
1: तो आप भी काली चला लो ना, जब इनसे मिलो काली चला लो, नहीं तो मेरी ले जाना। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां आपने प्यारे महबूब भाई के लिए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी प्यारी शख्सियत और बड़ी प्यारी शायरी की आज, ढेर सारी तालियां उनके लिए। और आपको पता लग गया काशिफ आ गया है, तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा, आप तैयार हो जाइए।

क्योंकि बंदा आ गया है जनाब, आपको अब एक मिनट के लिए भी टिकने नहीं देगा, बिजी रखेगा तो ना कुछ टिकेगा ना। सही है सही, वही मैं कह रहा था ना आगे कि ये जब ये आता है तो फिर बंदा अपनी परेशानी यानी सब भूल जाता है कि ऐसी बातें होती हैं, उन बातों में लग जाता है। तो दोस्तों मुझे अमर शराद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा दी तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

सब घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में। हमारी तरह कलम कल्ले बैठे हैं या बैठे हैं अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, अनु वेलकम, खुश आमदी। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी हाँ जी, मैं हूं आपका अपना काशिफ, हाजिर आपके लिए हमेशा की तरह सनराइज रेडियो के स्टूडियो में। जी जनाब, आपका अपना सनराइज रेडियो जिसे आप सुनते हैं 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पे क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, और दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं sunriseradio.fm के जरिए।

मजीद बात को आगे बढ़ाएं और फिर बातें हमारे इख्तियार से बाहर हो जाती हैं जब हमारी बातें आपकी बातें इन तीन घंटों के इस महफिल में प्यारी सी, क्योंकि आप सुनने वाले बड़े प्यारे हैं, जिसकी वजह से ना हम यहां के रहे ना वहां के। पहुंच आते हैं जनाब खींचे खींचे, दौड़े दौड़े, भागे भागे स्टूडियो में हर वीक में एक बार। दिल करता है मिलने को बार बार, डर लगता है बार बार मिलने से।

जी जनाब, डर लगता है बार बार मिलने से। क्यों? बताता हूं ना, अभी तो आए हैं हजूर। दिमाग तो भरा पड़ा है बातों से और कुछ भरा है फतूर। सुनाएंगे आपको सब कुछ, प्यार किया है आपसे, जुर्म समझे या समझे हमारी गलती या दिल का कसूर, बताएंगे आपको सब कुछ। और कुछ हो ना हो, आपका दिमाग लट्टू बना के घुमाएंगे, बताएंगे सब कुछ, बताएंगे। हवा में बिखरती हुई ये आवाज आपका पीछा करेगी, भागेंगे जहां तक वहां तक हम आपको भगाएंगे। प्यार सच्चा हुआ अगर काशिफ का, तो जाएं जितनी दूर जा सकते हैं, आखिर बचकर कहां जाएंगे, बताएंगे आपको सब कुछ, बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, हमसे पहले यहां पे हाय हाय बल्कि हाय आमिर भाई, जबरदस्त बल्कि जेर जबर दोनों लगाते हैं और जबरदस्त। और उनके साथ जो शामिल रहे उस महफिल में, उनके लिए भी कमाल दवाल। और जनाब दमाल से भी ऊपर, जान का बवाल, मजा आ गया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महफिल सजाते हैं जनाब आप सब मिलके उनके संग, तो उनका शुक्रिया, आपका आपका भी शुक्रिया जनाब। आप होते हैं तो रंग लगते हैं, अब रंग लगाएं, नहीं कहीं और नहीं जनाब, खुद को नहीं, किसी की बात तो सुना करें। पहले ही दौड़ लगा देते हैं। किसी ने कहा आपको कुत्ता कान ले गया आपके, तुसी कुत्ते पीछे दौड़ ला दी। हाय साधियो, अपने कन्ना नूं ते हाथ ला के वेख लेंदे, लोकां दा ते काम है तमाशे लाना, शुगल लाना, लोकां दीआं गल्लां विच ना आया करो, सिर्फ मेरीआं गल्लां च आया करो, ठीक है। और जनाब बात कह रहा था मैं आपसे कि आपने कोई जादू किया है, कोई काला जादू तो नहीं सीखा आपने, कोई तवीज धागा तो नहीं आता आपको करना, कोई जादू टोना, कुछ तो किया आपने मुझ पे। कि मुझे वहम हो गया शायद कि कहीं मुझे आपसे बस ना मिले आप मुझसे ज्यादा। मुझे डर लगता है, पता है क्या, किस चीज का डर लगता है आपसे मिलने के बाद हर बार, आज बता दूं, बता दूं, चले सुने फिर इस गाने में बताता हूं आपको कि मुझे क्या डर लगता है हर बार आपसे मिलने के बाद, और हर बार पहले से ज्यादा डर लगता है।

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 2:21।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जनाब, वेलकम बैक कहते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आपको बताएं हुआ क्या है हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। हमें कॉल आई और उन्होंने किया शिकवा, उन्होंने किया गिला, उन्होंने कहा काशिफ आप फोन नहीं उठाते हैं और आपके साथ आपकी फ्रेंड्स हैं जनाब, आपने उनका नाम बताना मुनासिब नहीं समझा, तो हमने भी नहीं पूछा। फिर तो बहरहाल आपने कहा वो हंस रही हैं आपकी और मेरी बातें सुन के। चलें ठीक है जनाब, कोई तो हमारी बातें सुन के हंसता है, ये अच्छा लगा। वैसे आपको हमारी बातें कभी समझ नहीं आई, लेकिन आपकी फ्रेंड्स को हमारी बातें और हमारे लहजे की सादगी और मासूमियत देखे समझ आ गई और वो हंसने लग पड़ी हमारी सादगी पे। आपको इतने सालों में समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है और दिमाग तेज़ करने के लिए बादाम चाहिए होते हैं और बादाम है महंगे, और मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। अच्छा जनाब, एक गाना उन्होंने कहा है। अच्छा सायरा, आपने कहा था गाना दिल वाले मूवी में से लगा दें, ठीक है जी। दिल वाले मूवी मैंने पूछा जी केड़ी, नई या पुरानी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नई वाली नहीं, पुराने वाली जो है ना वो उसमें से गाना लगा दें, ठीक है जी। उसमें से गाना लगा देते हैं आपके लिए, ये लें फिर। मुझे तो उसका यही गाना अच्छा लगता है, ये वाला आया आया आया, क्या बताऊं, बल्कि रहने देता हूं, नहीं बताता हूं। अच्छा जनाब, आज उन्होंने किन्नू ने बोला, सोनिया ने। अच्छा पहली दो कॉलें आई, दोनों में शिकवा था। सायरा ने कहा आप फोन नहीं उठाते हैं, हम आपको कॉल करते रहते हैं, बस यही आपकी एक खामी है, बाकी सब खूबियां हैं आप में। चले जनाब, वैसे पूरी सारी खूबियां तो फिर रब की जात में है ना, इंसान में तो कोई ना कोई फॉल्ट होगा, नोबडी इज परफेक्ट है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे आती है। अच्छा जी, तो सहरा ये गाना आपके लिए, ठीक है ना। और इस जन्म में फोन नहीं उठाया तो अगले जन्म में, नहीं तो उससे अगले जन्म में, सातों जन्म में, किसी ना किसी जन्म में तो फोन उठाएंगे ना। बहरहाल आप दिल से मिलाया करें, दिल से मिलाई हुई कॉल्स कभी मिस नहीं होती हैं। आप भी खाना पूरी करती हैं ना, है ना। अभी मेरी बड़ी सख्ती आएगी। बहरहाल सारा हंस रही है, उनका हासा मुझे उनके जहाँ भी वो थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, वहाँ से यहाँ स्टूडियो में हादसे की आवाज़ आ रही है। हंसती रहे इसी तरह, मुझे करें आप और आपकी फ्रेंड्स। और जनाब सोनिया की बात करते करते फिर दोबारा मैं क्यों पटरी से उतर गया। अच्छा तो जनाब, अगर आपका दिल करे कॉल करने को, होता है ना दिल, मतलब कभी कभी दिल करता है नादानियां, दिल की उसमें से कोई एक नादानी अगर आपका दिल करना चाहे, मुझसे बात करना चाहे, या मुझसे नहीं सबको अपनी पसंद का गाना सुनवाना चाहे, तो मेरा तो बीच में ऐवें बहाना है ना, तो आप कॉल कर लीजिएगा 01274306666। क्या अंग्रेजी नहीं आती आपको मेरी तरह, चले उर्दू में बताते हैं। 01274306666 जी जनाब, 01274306666। तो जनाब सोनिया ने कहा उन्होंने पकाया है चूजा और पालक, तो मेरे दिमाग में एवं फटाफट बात आई, मैंने कहा सोनिया आपने चूजा और पालक बनाया है, तो अगर चूजा सारी पालक खा गया बिचू तो आप बहुत तो आप बहुत हंसी कहती है, कोई बात नहीं चूजा तो रहेगा ना, बाकी हम चूजा खा लेंगे, चूजा पालक खाएगा हम चूजे को खाएंगे। वाह कर लो गल्ला, तुसी वादो जी।
आपके पास हर बात का जवाब। आपने गिला शिकवा आपने भी किया, आपने कहा जी मेरा गाना नहीं लगाते हैं आप, सबके गाने लगाते हैं, ऐसे ही कहा ना आपने, ऐसे ही बात करती है ना। आज मैंने आपकी कॉपी करनी है, जो जो जिस जिस अंदाज में बात करेगा वैसे वैसे मैंने बात करनी है। आज मैंने ये चैलेंज लिया हुआ है। तो आपने कहा सबके गाने लगाते हैं, मेरा गाना नहीं लगाते हैं, आपको मेरे से दुश्मनी क्या है? हाय हाय, वो किसी सियाने आख्या सी कि काशिफ तू कद है अपना पट दा मास भी ला के दे देवे ना, ते इन्हां नूं खवा देवे, ते पता की कहणगे, नहीं नहीं ऐ ऐ सजे पट दा नहीं खब्बे पट दा मास खाना सी असां तुझे ना पता नहीं कहां कहां से बातें आती हैं मुझे। तो जनाब खुश आप टिल लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ना जी ना, जे इंसान खुश हो गया तो फिर तो गल्ला ही मुक गईयां, सारे रोले दुनिया च मुक जाणगे, बीमारियां मुक जाणगियां, सही आपे मुक जाणगे। बंदा खुश नहीं होंदा जी बंदे तू, ते उत्तू बंदा होवे मेरे जिहा सादा, फिर हो गए खुश सारे मेरे तो। एनीवेज ते मैनीवेज गाना सुनने आ, ते गाने तो बाद वापस आयो, जायो ना किते, मैनू कल्या डर लगता जी।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
3: Sunrise Music. Hey, yo. Preet, Apache Indian, Robbie Ball, Gobsy.
4: Jee jana.
3: I bet you never knew.
4: The girl. Jee jana.
3: Yo. Watch when she walk by.
4: Hai tu si te bade magroor ho.
3: Yo. Shocking.
4: Adi Sony ji koi sanu kare na sanu.
3: Hey, yo.
4: ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ
3: ਯਾਨ ਰੋਬੀ ਬਾਲ ਗੋਬਜ਼ੀ
4: ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ
3: ਛੂਲੇ ਬਾਨੂ
4: ਐਡੀ ਸੋਣੀ ਜੀ
3: ਇਨਫਿਟਰੋ ਯੋ
4: ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ
3: ਵਾਚ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਕ ਬਾਈ
4: ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ
3: ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਈਨ
4: ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ
3: ਐ ਯੋ
4: ਹੋਰ ਦੱਸੋ
3: ਅਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਬੀ ਬਾਲ ਗੋਬਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੂ
4: ਬੜੇ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਡਾ ਗਰੂਰ
3: ਇਨਫਿਟਰੋ ਯੋ
4: ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
3: ਵਾਚ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਕ ਬਾਈ
4: चार दिन की खेडे उसन यारियां जड़ियां ने ना यारियां सचियां होन ते सदा रहंदियां ने ते जड़ा हुसन ते तुसी गुरूर कर दे हो ना ते जड़ियां दावां ते गुरूर कर दे हो
3: Preet, Apache.
4: की कवां
3: Drop it in us
4: तुसी आपे सुनो

जी जनाब, गाना मुक गया, गाना शुरू हो गया और मुझे बताना था आपको कि हमारे साथ कॉलर आई। उन्होंने कहा, काशिफ जी तुसनी गल में सुनी है। यार कमाल है, कभी कभी समझ नहीं आती कि हुण मैं की करा। गल ते कर बैठा की सियापा अपने गल पा बैठा। तो जनाब आपने कहा, काशिफ जी तुसा आख्या कि जी तुसा पत्ते ना गोश भी लाई के दियो ते लोक आने नी, दुई लत्ता ना गोश्त आख्या सी। अरे काशिफ जी, एक किस तुसा की इस तरह परेशान कीता। मैं तुसा पहले बाओ, तुसा की माड़ी ये गल किया दिले की लगी। फिर उन्हें आख्या, बिल्कुल एक दर्द दिल रखने वाला बंदा जेड़ा होना ना, वो दुए बंदे ने दिले ना दर्द समझना। मी चंगा लगा, पर एक गल तुसा नी मिकी जरा चंगी नहीं लगी। मिकी तुसा नी एक गल, सारियां गल्ला बड़ियां चंगियां तुसा कीतियां, माड़ी तारीफ भी कीती, तारीफ ने काबिल अल्लाह नी जात है, लेकिन तुसा जेड़ा आख्या ना, एक गल मिकी जहर लगी। सच्ची बाणा पिया, केड़ी गल्ला कि काशिफ जी मैं किया बां, कि मैं कुण बोलनी हां। तुसा आख्या भी मैं तुसा की पछाने कोई नहीं, मैं किस तरह तुसा की नहीं पछाने। तुसा आख्या काशिफ जी हूं पछाने को नहीं, तो मैं भी ना बाणी कि मैं कुण बोलनी हां। ये तकिया ही ना, ये गल मिकी बड़ी जहर लगी नी। जहर हाले तुरी चखिया नहीं, पर मी पता इतना ही कौड़ा उसी जहर जरा तुसा टेस्ट कराया ना। बदल आपू किचन च लगे हो कम करन, ते हांडी रोटी करने पे मी अंदाजा होई गया सी। तुसा कॉल कीती ना मिकी, फोन चू खुशबू आई। जिस तरह मिकी दिसने पे हो ना तुसा, कि तुसा हसने पे हो हुण किचन च कम करने करने नाल है, मुस करने पे हो, इस तरह मिकी खुशबू भी आई। आंडी आंडी रोटी करने पे हो, तै ये झूठे मूँह भी सुला नहीं मारी ने कि काशिफ कुछ खासो। तुसें पता सी काशिफ ना तो करना ही कोई ना।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पे क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। दुनिया भर में सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को, सुन रहे हैं ना? क्या ख्याल है, सच में बताएं क्या ख्याल है आपका जनाब। ढेर सारी कॉल्स अभी तक हमारे पास पहुंची हैं और कुछ दोस्त आए हैं साथ में। उन्होंने आते साथ मुझे जब, अच्छा पता कब लगता है कि कॉल्स की वजह से जो हमारी दोनों लाइंस हैं वो जैम पैक होती हैं, वो पता आप बताते हैं जब आप आते हैं। मैं तो यहाँ पे कॉल्स लेता जाता हूँ, लेकिन जब आप आते हैं दो तीन चार बार आप गिला करते हैं कि भाई साहब हम तो पूरा घंटा कॉल मिलाते रहे या काफ़ी देर हो गई, तो लाइंस बिजी हैं। वो जो आपकी शिकवा, आपकी उकताहट, आपका गुस्सा प्यार वाला है, तो उससे पता लगता है कि भाई साहब आपको लाइन नहीं मिली। तो जनाब अभी भी अगर आप कोशिश करेंगे तो हमारी दोनों की दोनों लाइंस अगर आपको बिजी मिले तो गुस्सा ना कीजिएगा। पता क्यों बता दूं, सब कुछ बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं आज जनाब, आप गुस्से में और ज्यादा प्यारे लगते हैं मुझे। और किसी को लगे ना लगे, मुझे और प्यारे लगते हैं। जितना गुस्सा उतने प्यारे। दिल में मैं फिर बता क्या कहता हूं, कानों से बात सुन रहा होता हूं, मुंह से बात कर रहा होता हूं, लेकिन दिल में आपसे बात करते हुए मैं कहता हूं, नजर ना लगे या ला इनको किसी की, नजर ना लगे। इस प्यार से गुस्सा कौन करता है? अगर इतने प्यार से आप गुस्सा करेंगे

तो जनाब अगर इतने प्यार से गुस्सा करेंगे तो फिर मेरा दिल करेगा कि आप गुस्से में ही रहें हर वक्त। इतना क्यूट गुस्सा कैसे कर लेते हैं आप, ये तो बताएं। कहां से सीखा आपने ये तरीका है वारदात? प्यार का तो हमने सुना था कि लोग प्यार से लोगों को काबू करते हैं, ये तो मुझे पता था, इसलिए मैं प्यार से बच बचा के दूर दूर भागता रहा कि कभी ये प्यार का वार ये हम पे ना चले। पर आपने वार किया गुस्से में, देर कर दिया काशिफ को। बड़े चलाक हैं आप, सीख रहा हूं मैं ये चलाकियां आपसे, आजमाऊंगा ये मैं एक दिन आप ही पे वापिस, फिर मजा हासी। अच्छा जी, सामिया ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था अमरिंदर गिल का गाना, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आपका गाना, आप में से किसी का भी गाना जो सॉन्ग आप कहते हैं, जब आप कॉल करते हैं 01274306666 पे 0127-43-06666 पे जब आप कॉल करते हैं ना, जब आप मुझसे बात करते हैं, फिर तो मैं पूछे ही ना ना, फिर तो मुझे देखना भी मुश्किल है आपका, हो मुझे पकड़ना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ बताना पड़ेगा ना आपको, मैं ये बादलों से ऊपर उड़ रहा होता हूँ, बताना चाहिए ना आपको अपनी फीलिंग्स, हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं आपसे बात करते हुए, जरूरी है ना। तो जनाब बादलों से ऊपर उड़ रहा होता हूं मैं, लेकिन जब आप कोई गाना बताते हैं तो फिर वो गाना जब मुझे मिल जाए तो फिर तो ना पूछे, फिर तो मैं चांद का चक्कर लगा के आता हूं, बादल तो दूर की बात है, खुशी के मारे तो फिर ना पूछे ना, चांद पे पहुंच जाता हूं, चांद हाथ जोड़ता है कि भाई वापस जाओ जमीन। चांद पे जो माई चरखा काट रही होती है ना, जी एक माई है वो चरखा लेके बैठी है, वो चरखा काट रही है, वो माई गुस्सा करती है, कहती है काशिफ वापस जाओ ब्रेडफोर्ड में सनराइज रेडियो पे, मैं सुकून में तन्हाई के लिए चांद पे आके बैठी हूं चरखा लेके, और तुम इतनी बातें करने वाले चांद पे भी आ गए हो, वापस जाओ जमीन पे। तो फिर मैं वापस आता हूं जमीन पे, इतनी बड़ी उड़ान हो जाती है मेरी। तो गाना मिल गया माहीन आपका, इतनी इतनी तारीफ और इतनी बातें गाने के साथ, और वो भी आपका गाना मिल गया मुझे। आपने कहा कि जी ये गाना आपके लिए है, ठीक है जनाब, सारे गाने मेरे वास्ते, तुझी मैनु अंदर करा सो। वो क्या कहते हैं, कुछ हमारी हरकतें बातें भी ऐसी हैं, कुछ सानू मरण का भी शौक है ते कुछ माहीन, ते शहर आले भी डाडे ने, रब खैर करे हुण। खैर माहीन, ये गाना अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि कॉलर जो मेरे साथ होल्ड पे हैं वो बड़े सब्र वाले हैं, बड़े दलेर बंदे हैं, दोनों के दोनों जो मेरे साथ कॉल पे हैं, हिम्मत हारने वालों में से नहीं है भाई साहब, हमने कभी हिम्मत हारने वालों से लंबी लगाई नहीं, असी लांदे उत्थे ही हाँ जड़े साडे लाड चुकन, ते असी उन्हां दे लाड चुकीए, ते चुक चुक के ना वो साडे लाड थकन, ते ना असी उन्हां दे लाड चुक चुक के बेजार ते आवाजार होइए, ते लाड प्यार दा जनाब रिश्ता है ताडे नाल, ताडी गल कर रहे हां, जड़े तुसी मुस मुस करके हस रहे हो ना, ऐ अंदरों अंदर किसे नू पता ना लगे, बिल्कुल जनाब ताडे लाड प्यार दा कमाल है,
ते महीन जी आ गाना तुसी भी सुन लेना, मैं तो सुनांगा ही सुनांगा। और आनंद बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा आनंद आया। ये मैंने यहाँ नहीं, मैंने उनसे भी, जी आनंद भाई आपसे जब बात हुई थी तो ये छोटी मोटी गुस्ताखी हमने की थी, हमने कहा आनंद भाई जाने से पहले आपको बता दें आपसे बात करके बड़ा आनंद आया, तो इसलिए आइंदा भी कॉल कीजिएगा। तो आप हंसे जनाब, आपने कहा काशिफ भाई यू आर टू मच, बहुत शुक्रिया जनाब, अभी तो आपको टू मच का अंदाजा हुआ है, अभी तो थ्री मच, फोर मच और मगर मच ये अंदाजा अभी होना आपको बाकी है हमारे बारे में। अच्छा, सामिया का गाना हो गया, आनंद भाई ने कहा था कोई भी गाना लगाएं जिससे आनंद आए उनको, तो ये गाना आनंद भाई आप सुनिएगा, इससे आपको आनंद आएगा। आंटी दीपा जी हाय सदके, की करा ते की ना करा, इन्नी ठंड विच दिल करदा है ठंडा ठार पानी पी पी के खुशी नाल ही मरा। आंटी दीवा ने बात की है ऐसी जनाब, उधार बहुत ज़्यादा है, कॉल्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कॉल्स ले रखी हैं उनका उधार चुकाऊं। आंटी दीवा कहती हैं, पहले तो मैंने कहा कि आंटी दीवा ये तुसी हो या कोई अंकल गाल कर रहा है, कहती हैं मुझे पता था कि मेरी आवाज़ इस तरह की हुई हुई है, बकौल आपकी आपने कहा मेरी आवाज़ पार्टी हुई है, तो मैंने कहा नहीं आंटी मुझे तो ठीक लग रही है, कहती नहीं मेरी आवाज़ ऐसी है बिल्कुल अंकल जैसी हुई है, तो आज आंटी वाली आवाज़ नहीं, आज अंकल वाली आवाज़ से गुजारा करो। तो आंटी की आवाज़ अंकल वाली कैसी हुई है जनाब, उनको हो गया बुखार, ला दीती ना तुसा नज़र, एक ही आंटी बनाई सी असा जमा तफरीक, जरबा दे के सारी कैलकुलेशन के बाद एक आंटी मैंने बनाई, हाय वो भी आपको चुभ गई, नजर लगा दी मेरी आंटी को आपने, आप इतने प्यारे हैं, मैंने कभी आपको नजर लगाई है, नहीं लगाई ना, माशाल्लाह कहता हूं ना। तो आंटी को हो गया बुखार, आंटी कहती है बीमारां दी तिमारदारी करनिया करनिया ना काशिफ आपू बीमार हुई की हां, मैं आंटी जो नुस्खे बने सो लास्ट वीक, ऐ सूप बनानिया तो हड्डियां भी सुरमा हो जानिया, तो ग्रीन चिली भी नाल दो दो, तो ना पूछ फिर माड़ा सूप जड़ा पीना वो जहाज बड़ी जाना उडरना, तो मैं अज तुसा क्यों ना उडरने, जमीन पर किया लैंड किते है आपू ही उडरो ना पियो ना, जड़ा आपू आखने सो लास्ट वीक के तुआ दार मैं बनानी हाँ सूफ, ते आंटी साड़ी आने ना पीसा हूं मैं आने राती, कल ना काशिफ सारे माड़े रिश्तेदार आए से, ते तुसा नी बाजी न सादिया वो भी आए से, आने काशिफ वो आए ते थोड़ियां गल्लां करने सन ते बड़ियां तरीफां करने सन, ते मैं उन्हें की आखिया माड़ा बच्चा ना काशिफ माड़ा पुत्र है, खुश रहो आंटी, आ जड़िया गल्लां मी जे माड़े जिहा सादा बंदा भोला बंदा देना दवाना तुसा कुछ नहीं, तो खाली गल्लां नाल ही मिकी पूर कराई छोड़ने हो, तुसें पता है सादा जिहा है वै इहे जिहा गल्लां करनियां तो पुर होई जाना है, बल्कि पुर होई जाना कबूतर है उडरना, कमजोरी माड़ी पता लगेगी ना तुसा की, डारो डारो कबूतर बनाओ पतंग बनाओ जितना डारी सकने हो डारी लो मजे ले लो, कोई गल सादा भी कोई ना हो अजकल ने दौर। चलो जी, आयशा ने कॉल की, आयशा ने बहुत सारी बातें की, आयशा की वजह से लाइन आपको बिजी मिली पता है, जिनकी जिनको अभी भी लाइन बिजी मिल रही है ना, आयशा आयशा पे डालते हैं सारा मलबा, क्योंकि आयशा ने लड़ाई तो मेरे साथ करनी होती है, तो अच्छा नहीं कुछ कर करा के लड़ाई करवाएं, इज्जत अफजाई करवाएं, कुछ किया कराया तो हो ना, एवं खाम खा हर हफ्ते लड़ाई, तो आज उन पे मलबा डालते हैं जनाब, आयशा की वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी, ठीक है। और शाजिया,
यारा एक बात समझ नहीं आ रही, ये मर्द हजरात आज काम पे हैं, सोए हुए हैं या किधर गायब हैं आप? कितने पौंड कमासो तुसी मेरे वीरो? तुसन दा वीर इत्थे बैठे आ ते सब लेडीज खवातीन ही सुननियां पियां बाहर मेनू, ये क्या गल हुई? चलो कोई गल नहीं, गल तकमीज है, लेकिन फिलहाल जनाब ये गाना और गाना आप सुनिएगा क्योंकि दिल की आवाज है। मेरा खुद का दिल अब मेरा नहीं रहा, आपकी होशियारियां चलाकियां काम दिखा गई इस काशिफ को।

0: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: दिस अक्टूबर बॉलीवुड मीट्स भंगड़ा इन मैनचेस्टर। In-house Productions presents Bollywood Meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October from 9 PM till late at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official radio partner, Sunrise Radio.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

जी जनाब, ये खूबसूरत संगीत हमने लगाना है आप सबके नाम, जिन्होंने कॉल्स नहीं की, जिन्होंने कोशिश नहीं की, जिन्होंने खामोशी से हमें सुना और एंजॉय करते रहे। हलीमा है जनाब हमारे साथ और हलीमा का ये फेवरेट गीत है और उन्होंने कोई मुझे टिकटॉक पे तकरीबन कुछ नहीं तो कुछ 100-150 मैसेज गानों के भेजे हुए हैं जनाब 100-150 के करीब मैसेजेस होंगे टिकटॉक पे और हलीमा कहती हैं कि जनाब ये सारे गाने आपने लगाने हैं। हलीमा, एक शो में, एक हफ्ते के शो में, एक महीने के शो में, एक साल के शो में भी पॉसिबल नहीं है जितनी फरमाइशें आपने मुझे भेज दी जनाब। अच्छा, सोशल मीडिया का ये बड़ा शुगल है ना कि आप तक पहुंच हर किसी की हो जाती है।

एक बात है, आपने कभी गौर किया है कि अच्छा जब आप आईडी कार्ड के लिए या शनाख्ती कार्ड के लिए पिक्चर अपनी लेते हैं ना, अच्छा इंसान कितना भी से मतलब अच्छा भला हो, जो शनाख्ती कार्ड पे पिक्चर लगती है ना आईडी कार्ड पे या ड्राइविंग लाइसेंस पे, यार उसमें बंदा अच्छा नजर नहीं आता। ये क्या साइंस है? लेकिन फेसबुक और टिकटॉक पे आप चेक करें, वही बंदा जिसकी अपनी तस्वीर शनाख्ती कार्ड पे ठीक नहीं आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस पे ठीक फोटो नहीं आ रही है, उसी बंदे को आप फेसबुक पे चेक करें, टिकटॉक पे चेक करें, वो बंदा तो जनाब कुछ और ही नजर आता है ना, एड्डा सोना। जिहड़े टिकटॉक ते नजर आंदे ने ते फेसबुक ते एड्डे सोहणे हुंदे ने सच विच, या मेरी नजर का ही धोखा है, या मेरी सादगी ने ही मुझे ऐसे लाटू बना के घुमाया हुआ है। मैं तो शीशा भी नहीं देखता हूं, लेकिन ये जो इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, ये क्या कैसे प्यारे हो जाते हैं, क्या खाते हैं, केड़ी चक्की का आटा खाते हैं, ये कोई फिल्टर शिल्टर तो नहीं लगाते हैं, ये भी बताएं ना। मैं तो सोच सोच के मेरी तो दिन रात की नींदें हराम हो गई हैं। पहले मुझे इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी, जिधर बैठता था मैं सो जाता था, जिधर बैठता था ना दिन देखता था ना रात। लेकिन फिर मैंने ना एक गलती की, मैंने स्मार्टफोन ले लिया, उस पे मैंने डाउनलोड किया टिकटॉक और फिर फेसबुक। उसके बाद जनाब ना दिन को नींद ना रात को नींद, नींदें हराम हो गई हैं। आपके साथ भी ये हुआ है?

0: जी मैं हूँ आपका, मैं हूँ आपका अपना काशिफ। नहीं, ये मैंने बताया नहीं आपको, मैंने सवाल किया आपसे। मैं हूँ ना आपका अपना काशिफ। दिल में बता दें, हाँ ना कर दें, हमें दिल की बातें समझ आने लग पड़ी हैं। लेकिन जनाब, ये लो, ये जो हाला लल पड़ गई है ना, पीछे आपको आवाज आ रही है, ये जमाने में हाला लल पड़ गई है। हमारी बातें और आपकी बातें जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही हैं, ये हाला लल पड़ गई है, पूरे शहर में रोला पड़ गया जनाब। तो पड़े ना, हमने तो बचपन में ही मूवी देख के समझ लिया था। सलमान खान की मूवी में एक ही मैसेज था, प्यार किया तो डरना क्या। याद है मूवी? हाँ जी भाई साहब, तो बड़ा अरसा पहले ही हमने ये कोर्स मुका लिए थे, एक टांग पे खड़े होके ये सारे कोर्स कर लिए थे हमने, कि प्यार किया तो डरना क्या। आप डर सकते हैं, आपका डरना बनता है। लेकिन जनाब, हमें मशवरा दिया जिन्होंने, उन्होंने कहा कि खाते क्या खुराक हैं आप। मैंने कहा जनाब धक्के खाते हैं। आप बहुत हंसी और आपने कहा नहीं सच में बताएं क्या खाते हैं क्या पीते हैं। मैंने भी सच मुझ में फिर बता ही दिया कि धक्के खाते हैं और पानी पीते हैं, बाकी जनाब और किसी चीज का। पीने वाली कोई भी शह है जिससे धुआं निकले कानों से या मुंह से पीने के बाद, वो हम नहीं पीते हैं। जी जनाब, दोबारा कहूं, पीने वाली कोई भी चीज जिसको पीने के बाद या कानों से धुआं निकले या कुछ पीने के बाद मुंह से धुआं निकले, ऐसी कोई चीज हम नहीं पीते हैं। हाँ, पानी पीते हैं और खाते धक्के हैं। आपने कहा आपकी बातों से लगता है कि आप वाकई काफी धक्के खाए हैं आपने। क्या बात है, दिल को दिल से राह होती है, ये तो सुना था, आज पता लगा। जब मिल बैठे दो दिल दीवाने, आप ही को समझ लगी हमारे दिल की रमजें। बाकी तो सारे आते हैं चले जाते हैं, पर आपने एक कर्म किया, एक एडवाइस दी हमें। आपने कहा काशिफ जी, आपने खाने हैं आज के बाद अंडे खाने हैं, आपने बादाम खाने हैं आपने, और आपने जो तीसरी डिश बताई, आपने कहा अम्मा जी से, आपने अपनी अम्मा जी के, जनाब अपनी अम्मा जी की चितरोल खानी है। क्या बात, कहां से आते हैं आपके जेहन में ये वाले आइडियाज। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूं, और इस हैरानगी की वजह से मेरी इन अखियों के आगे अंधेरा आ जाता है कि आप आखिर मेरे बारे में कितना सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। जनाब मेरी खुराक सेट की है, एक मैडम आई, उन्होंने कहा जी आपने खाने हैं अंडे और ढेर सारे बादाम, और उसके बाद अपनी अम्मा जी के आपने खाने हैं चितरोल। वजह नहीं उन्होंने बताई, बिल्कुल नहीं बताई। उन्होंने कहा काशिफ जी बादाम अगर आपको ना मिले, महंगे मिले, तो आपने हमसे आके बादाम ले लेने हैं। अंडों के बारे में सच्ची बात है, रब गवाह है, आपने बिल्कुल किसी किस्म की हमें सुला नहीं मारी कि अंडे भी ले लें आपने बादामों की ऑफर की है कि जी बादाम आपने हमसे लेने हैं, अगर आपको महंगे मिलें या ना मिलें, ठीक हो गया? बड़ा दिल है जनाब आपका, बड़ा दिल है। शुक्र है बादामों का कहा, चित्रोल का नहीं कह दिया कि वो भी हमारी तरफ से ले लेना। वो आपने हमें अम्मा जी हमारी जो है उनकी चित्रोल का कहा, ये भी बड़ा रब का मेरे पे एहसान हो गया कि बादामों तक बात आके आपने रोक दी। अच्छा जनाब, कसम टूटी लाखों पाए, चौधरी रुखसार साहब ने मर्दों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए शो के दूसरे आवर के एंड पे तकरीबन पहुंच गए हम, और सभी जेंट्स सभी मर्द हजरात की तरफ से पहली कॉल। यहां तो मर्दों को मेरी बातें समझ नहीं आती, या उनको दिल को नहीं लगती, या फिर मुझे लगता है कि मेरी बातें समझ ही मर्दों को आती। कोई दाल में काला है, या दाल ही साली सारी जो है ना काली है, क्योंकि ये जो हला लला पड़ा हुआ है ना रोला जमाने में, इसमें कोई बात छुपी है। मैं ढूंढता हूं कि बात क्या है, क्योंकि इस बात की वजह से ना मेरा दिल डूबा जा रहा है कि मर्दों में से कॉल दूसरे घंटे के आखिर में, पहली कॉल मर्दों की तरफ से आई, सब खवातीन की कॉल आई। तो ये बात जैसे जितना इस पे मैं गौर करता हूं ना, उतना मेरा दिल डूब रहा है,
1: दिल डूबा
0: और फिर डूबे जा रहा है। चौधरी रुखसार भाई शुक्रिया मर्दों की तरफ से पहल करने के लिए। थोड़ा सा दिल मेरा जो है ना अब

कुछ है ना बात इसी तरह की। आज कहती हूँ इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। क्यों बनाती हो ये रेत के महल, जिन्हें एक रोज खुद ही गिराओगी तुम। है हाय हाय हाय, क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये जहर आलूद बात मैंने इतनी कड़वी ये मैंने क्यों की। काशिफ तो आपका ऐसा नहीं है ना, ऐसी बातें नहीं करता। ये बातें मेरे ये मेरे मुंह में किसी ने नवाला बना के डाली है। गैस करें, गैस किसने डाली होंगी। आपको तो पता है मैं तो जनाब जर्दा दही चीनी डाल के जनाब सुबह खा के आता हूँ। मिठी मिठी शहद की तरह की बातें होती हैं, क्योंकि सामने आप होते हैं। तो ये आपके और मेरे बीच में ये कैदो कौन बना, कैदो नहीं पता आपको। अल्लाह बख्शे, मेरे दादाजी की ना फेवरेट मूवी थी। गर्मी की छुट्टियां होती थी तो जनाब हम जाया करते थे अपने दाद के। तो हम वहां पे जनाब दादाजी एक कोई फिल्म देखते थे रोज दिहाड़ी डेली। पूरी दुनिया सोती थी, दादी अम्मा सोती थी, सारे सोते थे। दो बंदे घर में जाग रहे होते थे। गैस करें गैस। बड़े बादाम और बड़े अंडे और बड़ी बातें करते हैं आप। दो बंदे एक हो गए मेरे दादाजी, दूजा बंदा गैस करो कौन हो सी। जी बिल्कुल ठीक, मान गया आपको। दूसरा बंदा ये बंदा ना चीज, यानी क्या आपका, सिर्फ आपका, आपका अपना काशिफ। तो जनाब दादा पोतरा दोवें बह के ईर रंजा फिल्म दादाजी डेली देखते थे। ना मैंने कभी दादाजी से पूछा कि रंजे की वजह से देखते हैं, कैदो की वजह से देखते हैं, या फिर मेरी तरह दिल्ली दिल में चोरी चोरी हीर की वजह से देखते हैं। अब ना मैं पूछूं ना मैं बताऊं, दो दादा पोतरा बह गए ते दिहाड़ी डेली। गर्मियां दी छुट्टियां 2 महीने दियां, बिला नागा भाई साहब, बिला नागा हीर रांझा। और हीर रांझा में एक होता है कैदो, वो कैदो की बदमाशियां, कैदो के चक्कर, कैदो के फरार। हर बंदे की जिंदगी में ना कभी ना कभी अच्छा ये हंस के बताने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या करें। वो आगे बात हो रही थी एक मैडम से कि धक्के इतने पड़े हैं, इतने धक्के खाए। या बंदा जिंदगी में धक्के खा के सियाना होता है, या धक्के में एक वाओ लगा दे तो क्या बनता है। या धक्के तो या धोके। तो जनाब धक्के तो देते हैं जमाने वाले, ये धोखे देने वाले जो होते हैं ना इनको कहते हैं कैदो। तो हर बंदे की जिंदगी में रांझा तो आता ही आता है जनाब, हीर भी आती आती है, पर भाई साहब ये कैदो भी साथ में आता है। इस जमाने का नाम कैदो ना डाल दे आज के बाद, ये जो आपके और मेरे बीच में आता है। हाँ तो भाई साहब हर बंदे की जिंदगी में, आप मुझे पता है कुकिंग कर रही होंगी, हांडी पका रही होंगी, या कोई काम काज कर रही होंगी। आप कह रहे होंगे काशिम मुझे भाई साहब क्यों कह रहे हैं। महावर्तन कहा है आप दिल पे ना लें, वो भी मेरी बात ना ना, एक कान से सुना करें दूसरे कान से बाहर ना निकाला करें अंदर ही दफन करने, दरमियान में कहीं दोनों कानों के। अच्छा

0: तो कैदो जो होता है ना, वो जो कैदो होता है हर बंदे की जिंदगी में, वो कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने ये सबक सीखा है। कैदो मतलब बेसिकली एक विलन की टर्म है। विलन हर बंदे की जिंदगी एक मूवी की तरह, बंद किताब की तरह इंसान होता है, और उस किताब में जनाब ढेर सारे वर्क होते हैं और आक होते हैं, ढेर सारे हर चैप्टर्स होते हैं, कहानियां होती हैं। लेकिन जनाब उस कहानी में एक विलन होता है, यानी एक कैदो होता है, और वो जो कैदो की मार होती है ना, पड़ती है हमें, आपको, वो बहुत कुछ सिखा जाती है ना। अब मुझे बताएं बात मैंने शुरू कहां से की थी। खान साहिब की तरफ आते हैं। खान साहिब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा आपकी आवाज सुनी, आप गिला कर रहे थे कि खवातीन ज्यादा आई हैं और मर्द हजरात नहीं आए हैं, फिर आपने चौधरी जुगसार साहब का नाम लिया, और फिर हमने भी सोचा हम भी गिला शिकवा दूर करें भाई का, बताएं भाई को के भाई सुन रहे हैं बाहर। बहुत शुक्रिया जनाब खान साहिब, गाना आपके लिए होगा जबरदस्त सा ब्रेक के बाद। बर्मिंघम वालों ने बताया, उन्होंने कहा काशिफ आज आपने दिल खुश किया। उन्होंने कहा कि आपने जो गाना लास्ट आवर का आखिरी लगाया था वो भी नाइस है, दिलवाले फिल्म का गाना था सातों जन्म वो भी नाइस है, और आपकी बातें भी नाइस हैं। तो ये गाना भी बताइएगा ब्रेक के बाद मैं लगाऊंगा। गैस किया ये गाना कौन सा है? नहीं गैस किया ना, क्योंकि आपका दिल भी मेरे दिल की तरह कितना पागल है ना, पागल सोचिएगा थोड़ा बहुत तो है।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This
2: from the Sky News Centre at 4. Five men have been arrested on suspicion of explosives and terrorism offences after three suspicious vehicles were stopped on their way to an RAF base. The alarm was raised early this morning near Fairford in Gloucestershire, which is used by the US. 85 homes nearby have been evacuated while bomb disposal experts examine the scene. In the past few minutes, Donald Trump has described the arrests as a great thing.
3: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great. We had them under view for a long time, and we got them.
2: The head of the Democratic Unionist Party is accusing Northern Ireland's First Minister of breaking the law. Michelle O'Neill and others are blocking a controversial Orange Order march heading from Drumcree Church down the mainly nationalist Garvachy Road in Portadown. The Parades Commission's allowed it for the first time since 1998. The Sinn Féin politician's defending her actions.
4: We've spent the night speaking with intergenerational, like a granny and her daughter and her granddaughter. We're meeting families like that who feel collectively traumatised, who feel individually traumatised. Anybody think that this is a good idea? No right-minded person would make this decision.
2: Labour's set out plans to hand local leaders stronger powers to take possession of empty and derelict homes so they can be brought back into use. The first day of the party's annual conference has also seen Andy Burnham discuss ways of paying for a new social care system in England. A man in his 80s has died after fire tore through a house in North London. The first floor of the two-storey building in Wood Green was destroyed last night. A Scottish Health Board has declared a critical incident. NHS Grampian says its A&E departments in Aberdeen and Elgin are under intense pressure. And England's cricketers have taken early wickets after setting Sri Lanka a victory target of 356 in the deciding ODI. The tourists are 73 for 3 in reply at the Oval. Opener Tom Banton had earlier hit his first one-day international century for Harry Brooks' side. That's the latest. I'm Nick Croatia.
5: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
6: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 4:07। 4:07। आयशा जी कहती हैं, काशिफ लगता है अब आपको देखना ही पड़ेगा। मैंने कहा वो क्यों? कहती है आपकी बातों की वजह से अब हमें लगता है कि देखना पड़ेगा कि आप आखिर हैं क्या चीज। वाह जी वाह, चीज वैसे मेरी फेवरेट है। जो पिज्जे के ऊपर होती है ना दाल के, मैं उनको पिज्जा जब मैं ऑर्डर करता हूं, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा चीज डालनी है आपने, तो वो वाली चीज। या क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, या वो वाली चीज, या वो वाली चीज, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कौन सी वाली चीज आपने मुझे समझा जनाब? कौन सी वाली चीज आप मुझे समझते हैं? नहीं, ये मैं आयशा की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। अब आपकी बात कर रहा हूं कि जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ। सुन रहे हैं आप सनराइज रेडियो पे 100.6 FM और 103.2 FM क्रॉस्ट वेस्ट यॉर्कशायर। इसके अलावा सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप मुझे सुन रहे हैं। नहीं, ये मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं। तो आप मुझे सुन रहे हैं जनाब सनराइज रेडियो .fm के जरिए दुनिया भर में आप सुन रहे हैं। और आखिरी घंटा आप पहुंचा है, बातें हो गई बहुत, अभी कुछ बातें बाकी आप ही की, मेरी नहीं भाई साहब। आप लकीर खींचते हैं तो हम जनाब जहां आप लकीर छोड़ते हैं ना, वहां से फिर आगे हम लकीर खींच के ले जाते हैं बातों की, आप ही की बातें होती हैं। सिरा आप पकड़ाते हैं बातों का और उसको लास्टिक बना के खींचते हम हैं, ये मुझे पता है। आप ये न समझे कि मैं सीधा सादा हूं, हूं सीधा सादा लेकिन जलेबी की तरह, तीर की तरह सीधा नहीं, जलेबी की तरह। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या लगे आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ तो सोच रहे हैं। जैसे आयशा जी ने सोचा फिर हमें बताया कि आप चीज क्या है, बस मैं ये देखना चाहती हूं। तो मैंने कहा आप तो मुझे टिकटॉक पे देखती रहती हैं, तो कहती है नहीं टिकटॉक पे नहीं ना, वहां तो फिल्टर लगाए होते हैं लोगों ने। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती है मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जानती हूं, देखती रहती हूं उनको हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन जब उनको मैं टिकटॉक पे देखती हूं ना, तो कसम ले लो काशिफ। मैंने कहा दे दें कसम, मैं ले लूंगा। आपने कहा कसम ले लो, मेरी फ्रेंड्स इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि पूछो ही ना। मैंने कहा नहीं, अब इतनी प्यारी हैं तो पूछना पड़ेगा ना। कहती नहीं काशिफ, फिल्टर लगाए होते हैं उन्होंने, है कोई नहीं सच में इतनी प्यारी वो, तो इसलिए मैं तुम्हारा टिकटॉक देखती रहती हूं, लेकिन मुझे ये है कि तुमने भी फिल्टर लगाए होंगे। मैं सच में तुम्हें देखना चाहती हूं कि तुम जो बातें करते हो, तुम हो क्या चीज आखिर, ये मुझे सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस जो है ना, आपका अगर सस्पेंस ही रहे तो कैसा है? गौर करें मेरी बात पे, इस सस्पेंस को सस्पेंस ही आप रहने दें फिलहाल जो है ना, तो ये मेरे हक में भी बेहतर है और आपके हक में भी। अच्छा जनाब हमारे साथ रहे, हेलो हूं करो गल, किसी भाई साहब ने गल की सी, मैं उन्हों का ना ही नहीं लिखिया क्योंकि तुसी ना दसिया ही नहीं, आ की होया ते कमाल नहीं हो गया, ऐ की होया जनाब? तुसी जिन्ने हाँ तुसी कॉल की थी, तुसी ना दसिया नहीं, तुसी तरीफां दे पुल बन रहे सो, ते मैं उस पुल ते जनाब दौड़ो दौड़ ला दीती, तुसी तरीफां दे पुल बने ते मैं पुल वेख के दौड़ना शुरू कर दिता तरीफां दे पुल ते। और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल की थी, नाम नहीं बताया, आपके लिए आने वाला खूबसूरत सा गीत। और चौधरी रुखसार भाई ने दोबारा कॉल की, तुसी साड़ी हीर रांझे वाली ते साड़े दादा मरहूम और साड़ी गर्मियों की छुट्टियां जिहड़ा असी चिल करदे सा ना कट्ठे बह के, दादा पोतरा थानू साड़ी गल जड़ी है ना वो ठा करके लगी है कलेजे विच। तुसी क्या तुसी ये दसो, ये दादा जी ते वेखदे सन मूवी, लेकिन ये लाग ते तुसी देंदे होने हो ना, ऐ ते फिर तुसी अंदर दी गल पता कर ली। मैं क्या ना इन्ना ना मेरे बारे सोचिया करो, मैं दिल ही चाहना समझ च नहीं जी आंदा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तुसी सर, तुहाडे नाल साडे साडे चलो तुहाडे ते साडे इक्को ही गल है ना, तुसी कह रहे हो तुहाडे नाल तुहाडे दोस्त ने ते तुसी किते जा रहे हो, कहंदे हो साडे दोस्त भी तुहानू सुन रहे ने। मैंने कहा अगर आपके साथ हैं तो जहरी बात है फिर सुनेंगे, अगर हम आपके साथ हैं तो जनाब उनके लिए भी एक खूबसूरत सा गाना बिल्कुल मेरी तरह का। अच्छा बोल्टन से कॉल की थी भाईजान महमूद ने और वो हमारे साथ लाइन पे, लेकिन महमूद भाई आप साथ देने वालों में से हैं, निभाने वालों में से हैं या बस साथ के लिए हैं, क्योंकि आप आए और चले गए, गल्लां चंगियां नहीं। और इसके बाद हाजरा जी आप हैं वजह इस गाने की, इस सॉन्ग की। आपने कहा काशिफ मैं तुम्हारी बातें सुनती हूं, हाजरा जी मुझे पता है आप हमेशा सुनती हैं, कहती हैं पर काशिफ मैं हंस क्यों रही हूं पूछो ना। मैंने कहा बताएं ना क्यों हंस रही हैं, कहती हैं मैंने खाई बिरयानी। मैंने कहा ये तो ठीक हो गया, इसमें क्या हंसने की बात है, कहती हैं खाई किसी की शादी की। तो मैंने कहा कोई शादी करे तो इसमें हंसने की क्या बात है, वो तो साल दो साल बाद पूरा मोहल्ला हंसेगा उनके झगड़े की आवाज सुन के। तो आप बहुत हंसी। आपने कहा नहीं ना काशिफ, बिरयानी खाते हुए मैंने तुम्हें याद किया और बहुत हंसी, अब पूछो क्यों। मैंने कहा क्यों, तो कहती है मुझे पता है तुम्हें बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं जब खाना शुरू की और तुम्हें भी सुन रही थी और फिर मुझे याद आया कि अगर काशिफ को पता लगा कि मैं बिरयानी खा रही हूं अभी कॉल की बिरयानी खाते हुए, तो मेरे तो पेट में दर्द पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है मेरी नजर इतनी आर पार होने वाली है, लेजर तो नहीं है मेरी आंखों में लगा हुआ कि आपके जनाब बिरयानी पे नजर डालेंगे तो आपके पेट में दर्द उठेगा। चले फिर भी वहम ठीक है आपका, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए हमारी नजरों का कि कहीं भी पड़े तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। ये हाजरा जी को नहीं कर रहा मैं बात, ये आपको कह रहा हूं, थोड़ा बहुत डर आपको होना चाहिए हमारी नजरों का कि अगर काशिफ की नजर पड़ी तो कुछ भी हो जाएगा अच्छा तो हाजरा जी, आपने कहा कि गाने अच्छे हैं, साजन मूवी का गाना अच्छा लगा, फिर आपने कहा काशिफ अगर लता जी का या रफी जी का गाना लगाओ। बिरयानी तो मैं खाने के बाद तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैंने रिस्क नहीं लिया बिरयानी खाते हुए तुम्हें कॉल करने का, लेकिन अगर तुम अब गाना लगाओ बिरयानी खाने के बाद मेरे लिए, रफी साहब का या लता जी का, तो कसम से मजा आ जाएगा। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, बिरयानी खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे आपके लिए पेशे खिदमत है लता जी की आवाज में। है तो आप अनदेखी अनजानी सी, पर लगती अपनी अपनी है। नहीं, ये हाजरा जी को नहीं कहा, ये आपको कहा है। कितने पत्थर दिल है आप, बात आपसे करते हैं कैसे अनजान बन जाते हैं आप। हम में सुनते भी हैं,

0: जी जनाब, अल्लाह माफ करे, माना के जमाना कहता है कि थोड़ा आवारा हूँ मैं, लेकिन जनाब क्या हुए, बदनाम हुए तो क्या ना हुआ, नाम तो हुआ। अच्छा जनाब, एक ब्रेक आ गई है, छेती छेती से उसको लेते हैं और कुछ कॉलर्स जाने से पहले कोशिश है कि आपकी कॉल्स ले पाएं, मगर अगर ना ले पाएं तो नाराजगी का इजहार कर सकते हैं आप जनाब, अपनों के साथ ही गिले शिकवे होते हैं। अच्छा जी, बोल्टन वाले आए और फिर चले गए, उनकी कॉल पकड़ने जाते हैं तो वो पता नहीं क्या भाग भाग के कॉल करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन देखिए आंख मचोली खेल रहे हैं वो हमारे साथ और हम उनके साथ, तो देखते हैं कि पकड़ाई देते हैं हम उनको या वो हमको, तो ये आपको अपडेट देंगे हम ब्रेक के बाद। लेकिन बाकी कॉलर्स जिनकी कॉल्स मिस हो गई, जनाब आप भी कोशिश कर लीजिएगा, अब सिलसिला होगा उनके लिए, उनके किन के कौन के लिए, जनाब जिनको गीत ज़्यादा मज़ा देते हैं बातें नहीं। तो अब हमने सबको केटर करना होता है, सबका दिल खुश करना होता है, सब रब की मखलूक हैं तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मैं सबको हंसी खुशी और राजी रख के जाता हूँ अपनी तरफ से। तो इसलिए जनाब ब्रेक के बाद आपसे अलविदाई गुफ्तो शनीद होगी, कुछ जुमले होंगे, कुछ बातें होंगी दिल की जो दिल पे लिखी हैं, किसी वर्के पे नहीं, आपको पता है किसी पेज पे नहीं, हमारे दिल की बात होती है, इस उम्मीद पे करते हैं कि आपके दिल तक ज़रूर वो एहसास बन के हमारी बात पहुंचेगी और आपके काम आएगी, आपकी भलाई के लिए करते हैं बात जैसे आप हमारी भलाई के लिए 3 घंटे जोर लगा देते हैं, साथ निभाते हैं, तो जाते जाते हम भी तोहफे के तौर पर आखिर में आपके लिए आपकी भलाई की एक बात करके जाते हैं, शायद कभी आप एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें वो बात और आपकी जिंदगियां बन जाएं और आपके अपनों की आपके इर्द गिर्द। तो जनाब यही उम्मीद, यही आस, यही दुआ लेके वो बात करता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे इजाजत लेंगे, अगर आप दे देंगे तो क्या कहते हैं वापला, नहीं देंगे तो फिर कोई और हाल इसका निकालेंगे, दे देंगे ना इजाजत आप हमें।
1: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
2: गलियां घूमी ते पैरन जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
0: जी जनाब, जैसा ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था आपसे, कहा था ना कि जनाब बड़ी आस, बड़ी उम्मीद, बड़ा प्यार, बड़ा मान, बड़े दिल से जनाब, जिस दिल से आप हमें सुनते हैं, साथ निभाते हैं, कॉल्स करते हैं, कॉल्स करते रहे आप, वक्त निकालते हैं ना अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा लम्हों में हमारे नाम करते हैं ना, तो जनाब वो लम्हे हमारी कमाई होते हैं, उन लम्हों में आपका प्यार, आपकी दुआएं शामिल होती हैं, वो हमारी कमाई होते हैं इन 3 घंटों की। लेकिन जनाब जो दुआओं का सिलसिला वो दुआएं काम आती हैं हमारी जिंदगी में, हमें हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर लम्हा, क्योंकि दुआओं की परवाज होती है अर्श तक। तो बड़े खूबसूरत तोहफे हैं आपसे आज, प्यार के, खलूस के, दुआओं से भरे अल्फाज हम तक पहुंचे। तो जनाब यही कहता हूं, जिस नियत से आपने, जिस प्यार से मुझे पता है आपने साथ दिया या कॉल नहीं कर पाए, सुनते रहे जिस मान से, जिस प्यार से, रब आपको उसका 10 गुना अजर दे। और जनाब जिस नियत से मैंने रब की मखलूक का दिल बहलाने की कोशिश की, जो भी नियत मेरे दिल दिमाग में होती है हमेशा, आज भी वही, रब मुझे उसका अपनी रहमत के मुताबिक, वो रहमान है उसका तो हिसाब ही नहीं, उसके मुताबिक मुझे जरूर अजर दे। दुआ कीजिएगा, आमीन। बाकी जनाब हाय, याद आपको करते रहते हैं हम। आगे एक कॉलर से बात हो रही थी तो वो कह रही थी ये जब आप आते हैं ना तो मैं सारे घर की सफाइयां करती हूँ, साथ साथ आपको सुनती हूँ। तो मैंने कहा जिस दिन मैं नहीं आता, कभी कभार छुट्टी भी कर लेता हूँ, तो फिर क्या करती हैं? तो वो बहुत हंसी कहती है काशिफ खुशफहमी में ना रहना, सफाइयां तो मैं फिर भी करती हूँ पर मजे से नहीं, मजबूरन। मैंने कहा छुट्टी तो मैं भी करता हूँ जब यहाँ आपके पास नहीं आता हूँ, कभी खुशी से नहीं मजबूरन याद करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ छींकें आती हैं हमें, हमें पता लगता है। तो उन्होंने सवाल किया था कि आपको भी छींकें आती हैं? तो जनाब ये जवाब है ये गीत उसका, उस बात का, कि याद तो उसको करते हैं जनाब जिसको कभी आपने बुलाया हो, हम तो आपको कभी बुला ही नहीं पाते। सच में रब गवाह है, कभी आपको बुला पाए तो फिर रब से ये दावा है, दुआ है कि फिर कभी लौट के वापस ना आए। ऐसे याद करते हैं हम आपको।

0: जी वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा कि जनाब अगर सब आपको बहुत सारे लोग सफाइयां करते करते सुनते हैं, तो आपने कहा असम ही सुनने आना। असम ही पूरे टाइम ने सुनने भी हैं, पिछले दो ढाई घंटे ने। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि अग फिर दो पासे नहीं, ये बहुत सारे पासे, यानी कि चौवा पासे ही अग लगी है। सारे सुनने पे हो आने असे बहु आने आ, बिल्कुल जी अग चौवा पासे लगी है, तो ये अग तुसा लाई है। आला वहीद भाई, तुसा ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा नाल गल कीती ते बहुत चंगा लगा ने। आइंदा भी जनाब गपशप रहसी, ते ये आने वाला गाना तुसा ने ना लाने आ, क्योंकि तुसा की साड़ी जुदाई ने टाइम नाल ते जुदाई दी गल्लां नाल मी पता लगा थोड़ी थोड़ी छिक पई, जिहड़ी छिक असां की पैनी ओ तुसां की भी पैनी। मी पता लगा तुसां जिक्र कीता थोड़ा जिहा जुदाई ना, चलो वहीद भाई ये गाना बुझिया है, बाकी जनाब आप सबके लिए यही गीत होगा जो हमें लेके जाएगा एक ब्रेक की तरफ। लेकिन ब्रेक से पहले जनाब एक बात,
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: जनाब टाइम हो चुका है 4:43 यानी के हो चुके हैं, ठीक है। अब आए मैदान में, अब आपसे लेंगे रुखसती, दे देंगे ना अब रुखसती हमें आराम से दे दे। इतने प्यार से अगर कोई कुछ भी मांगे तो नहीं बंदा कहता ना। जनाब हमेशा कहता हूं कोशिश कीजिएगा आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ना टूटे, किसी की जिंदगी में मुश्किलें ना आए आपकी वजह से, किसी की जिंदगी में मुश्किल खड़ी ना हो आपकी वजह से। अगर आए तो जनाब दूसरों के चेहरों पे, रब के बनाए इंसान, रब के बनाई मखलूक, अशरफुल मखलूकात में इंसान, कोशिश कीजिएगा कि अगर आए तो मुस्कुराहट आए आपकी वजह से, दूसरों के चेहरों पे आए तो राहत आए, सुकून आए, आसानी आए आपकी वजह से, दूसरों की जिंदगी में। और जनाब हमेशा एक दावा करता हूं, सच में आजमा के देख ले, अब रब के बनाए हुए बंदों की जिंदगी में अगर वजह बनेंगे, कोशिश करेंगे वजह बनने की आसानियों की, दूसरों की जिंदगियों में आसानियों की वजह बनने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो देखिएगा रब आपको आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े दिखाएगा, आपकी जिंदगी में आसानियों के, आपके अपनों की जिंदगियों में आसानियां ही आसानियां मौजज़ों से आएंगी, मौजज़ों से, सिर्फ आप रब के बंदों के लिए आसानियां बांटें, कोशिश करें, वसीला बने, वजह बने, नियत करें, कोशिश करें, रब आपको देखिएगा आपकी कोशिश के मुताबिक, नियत के मुताबिक दूसरों की जिंदगियों में आसानियों की वजह और वसीला बनाएगा। ये कम एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल को रेजोल्यूशन की तरह न्यू ईयर के नहीं, सारी जिंदगी ये कीजिएगा। आपका शुमार आसानियां बांटने वालों में हो, मुश्किलात और स्यापे और कांटे दूसरों की जिंदगी की राह में खड़े करने वाला उसमें ना आपका शुमार हो, आप मुझे प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं, इसलिए यहाँ आता हूँ। बाकी रब का दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह की, सब दिया हुआ अल्लाह का सब कुछ है। सिर्फ ये इस दुआ के लिए आपके दिल से जो निकलेगी, अगर आपको मेरी बातें समझ आई, जिस नीयत से आपको आपका दिल बहलाया, अगर आपको अच्छी लगी, आपका दिल बहला, आप सुनते रहे, तो फिर दुआ तो निकलनी चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि हमारा शुमार मुनाफिकों में हो, खा पी के वही हम थूक दें, वही गंद कर दें जिस प्लेट में खाएं। जिसको सुनना भी है और उसकी पीठ पीछे मुनाफकत भी करनी है, एक दुआ भी नहीं देनी है, मुझे ना दें, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ अच्छाई की हो, उसकी नीयत पे शक ना कीजिएगा, रब पे छोड़िएगा। रब नीतों के हाल जानता है, आप रब का काम अपने इख्तियार में कभी ना लीजिएगा। खुदा रा, नीतों के हाल, दिलों के हाल रब जानता है। किसी की नीयत पे शक करने से पहले सोचिएगा, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है किसी की नीयत के शक का सबूत के साथ? अगर नहीं है, क्योंकि किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता। रब ने कुछ काम अपने इख्तियार में रखे हैं, रिज़्क के, जिंदगी के, मौत के, और नीतों और दिलों के हाल का ये रब जानता है, ये इल्म उसके पास है। आपको कोई चीज अच्छी लगे, कानों को सुनने में, देखने में, आंखों को, तो तारीफ रब की कीजिएगा, दुआ बंदे के हक में कीजिएगा। अच्छाई इसी तरह फैलती है, अच्छाई का बीज लगाने वालों में आपका शुमार हो। कांटों के बीज ना लगाइएगा अपनी जिंदगी में या दूसरों की जिंदगी में। खुदा रा, हमने भी बड़ी दूर से जाके ये बात समझी और कोशिश की कि अगर हम समझ गए हैं तो आप तक जरूर पहुंचाएं कि दुनिया डिग्रियां लेके भी बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन के, बड़े बड़े कामयाब ओहदों पे पहुंच के भी हमने देखा लोग अभी भी हैं ना समझ। दुनियावी तौर पे बड़े कामयाब होते हैं लोग, पर होते ना समझ हैं, नादान होते हैं, भटके हुए होते हैं। रब सबके लिए आसानियां पैदा करे और हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने वालों में शुमार करे। आमीन सुमामीन। तो लो जी ये जनाब, अब आपकी जान छोड़ते हैं, आपकी जान छूटी, गल्ला गईया मोक ते किल्ला गया ठोक। गड़ियां पहुंची जुदाइयों की, वछोड़ों की आपसे दूर जाके, आपके पास आपके दिल में रहने की गड़ियां पहुंची, अपनी यादों में, बातों में और चाहतों में, और हाँ सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात, बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत, एक बार फिर से आपके साथ होगी। तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपका और मेरा, मेरा और आपका।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: लिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, hip-hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 p.m. till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें DAB पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 FM पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: पंजाबी एमसी सिंधु शिंदा मिर्जा
1: कदे न रांझा कन पड़वांदा ते हीर खवांदी चूरी ना मिर्जे ने फिर मरना की सी।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Move for 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाए। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरे और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे, और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

आखिरी घंटे में हम आन पहुंचे हैं आप सभी का एक बार फिर से। खैर मकदम है जी, आई अनु वेलकम। पिछले दो घंटे साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस घंटे में भी आप ज़रूर हमारा साथ निभाएंगे और इस घंटे में भी जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे और आखिर तक आप ही के लिए रहेंगे। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा। आपके साथ का शुक्रिया।

0: you tried Caroteno Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caroteno Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caroteno Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caroteno Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
1: चाचा केड़ा चाचा
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935

किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, मैं दोस्त पुराना सही मगर जिंदा तो हूँ। और इसके जवाब में परी शाकर कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। चंद अशआर आपके गोशे गुजार किए, मुझे यकीन है कि आपने इंजॉय किए होंगे। और आप हमेशा शायरी पसंद करते हैं और शायरी बोलना भी पसंद करते हैं, और मुझे भी कभी कभी शौक आ जाता है कि आपको कुछ अशआर सुनाऊं। ऐसे ही चंद ये जो अशआर थे आपके लिए पेश किए, और अब आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि यकीनन आप पसंद करेंगे और इंजॉय भी करेंगे।

क्योंकि आप हमारे हम सफ़र थे और इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ साथ थे, इसीलिए ये 3 घंटे बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हसीन रहे, क्योंकि आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ थी। इंशाल्लाह हमारा प्यार और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर इंशाल्लाह। आज की मुलाकात बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान। बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़, गुड बाय।

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: कौन है ये जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: Always Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वागत खुश आमदीद, वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम में आपका होस्ट दोस्त यहाँ भी हाजिर है, मेरा नाम परवेज़ आम ही है till 11 का वीर विशाम और आप सबके नाम रंगे महफिल का प्रोग्राम है 01274306 एंड टुडे इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डे एज यू नो टुडे इज अ संडे इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल टुडे 27th ऑफ द 9th 2026 द वेदर हैज बीन अ सच अ लवली डे विद रोमांटिक मौसम है कहां पे जा रहे हैं कहां पे आ रहे हैं व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग योर लिसनर सुंदर रेडियो 100.6 एफएम 103.2 एफएम क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर And not forgetting www.sunriseradio.fm throughout the world. And here we have to pitch the hit of the hour. If you want to give me a call, it's 01274306. And here we have to pitch the hit of the hour. I hope you're going to enjoy this wonderful, wonderful tune. One of my favorite tunes. And here we have to chamak rahi hai, damak rahi hai. Aap sab doston ka pyar, mohabbat hai, chahat hai ki aap hamara saath de rahe hain. And ye wo khoobsurat geet hai. One of my favorite tunes. Enjoy.
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके लिए था और आपने enjoy किया और यहाँ भी हमने करना है time check which is very very very important.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 12 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked and keep dialing number 01274-30666 on your listening to Sunday Radio 100.6 FM. And I thank you for your support. The lines are shining here, and you are giving us your support. And listen to this, see this, and our heart is garden garden. And thank you very much for your support. And here, Nikki, we will break for a moment. I will mention your names, hello, hi, whichever is going to be, and thank you very much. Aapka bhi.
2: Sunrise and music.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: जे तुसा पुराना सुना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935
0: Music. Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Music, definitely, or your number one hit music station and Sunrise Radio. और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ हैं और सबसे पहले कॉल आज आई हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया. हमारे मीठा जी हैं और चौधरी रुखसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप आए और बाहर आ गए, हमें अच्छा लग रहा है कि आपने हमारा साथ देने और याली मदद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने हमारा साथ देने एंड देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम वाजिद भाई, हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतिका साहब हैं, गिदन भाई हैं, हमारे भाई मित्रा जी हैं, सिमी जी हैं, डॉक्टर मलिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. नशीन जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. और जो बाकी कॉलर्स हैं जो आप मुझे याद करें, मैं किसी को भूला नहीं हूं और आप हमें याद करें. वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी बात होगी और थोड़ी देर के बाद. और यहां पे हमने गीत पेश करना है. सबसे पहले जो कॉल आई है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत भाई, और क्या कहना, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और ये हमारे रुखसार भाई हैं, आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा और जो भी आपके दोस्त अहबाब अजीज हैं आप सब के लिए होगा. और बहुत अच्छा लगा और ये देखिए कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं, और हम अगले आवर में आपका इंतज़ार करेंगे. और आज के भी आपके भी गुफ्तगू होगी और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ हैं और ये गीत आपके लिए भी होगा. और डॉक्टर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं. आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. बिलीव करेंगे आपका जो हमारा मकसद पूरा हो गया यहाँ पर आने का, बैठने का, और ये गीत मैं आपके लिए फ़िलहाल आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इस गीत को इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये खूबसूरत गीत है आपके लिए होगा. इंजॉय द ट्रैक.

यहाँ पे गाना स्टॉप करना है क्योंकि यहाँ पे अजान ब्रेक का टाइम होने वाला है और अजान जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सब के लिए और आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे अजान पेश करूँगा। बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ आपने अजान सुनेंगे और जब भी आप नमाज अदा करेंगे मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है और जो बीमार हैं खसूसन हमारे मोहतरम में वाजिद भाई उनके लिए खसूस दुआ करनी है, वाजिद भाई उनके लिए और चौधरी फरियाज साहब के लिए दुआ करनी है और यहाँ पर हमने अजान ब्रेक करनी है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो भी मेरा साथ देने की पे लगते सनराइज रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सनराइज नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। एंड यस डेफिनेटली ऑन द सनराइज रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, वेन्यूज, आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर क्लब मेंबर्स, सो जॉइन फ्री now at sunrise.radio. keep listening for more detail. That is all about Sunrise Radio, और so much happening in the future में, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और हम मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यहाँ पे सब दोस्तों के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं। अली राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अतीका साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया या अली मदद, और यहाँ पे अली अली और ये माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने खूबसूरत पैगाम भेजा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत मैं पेश करूंगा चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इंजॉय करेंगे, बड़ा ही नायाब गीत है और सबका सब दोस्तों के नाम में होगा, जो भी आपके दोस्त अहबाब अजीज हैं उनके लिए गीत होगा। अली राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अली साहब कितने गायब हो गए हो, कितने गायब हो गया, बड़े दिनों के बाद आपसे भी मुझे देखा है, आपका अभी पैगाम है और बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए, इंजॉय द ट्रैक, और बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे उम्मीद है यकीन के आप इस गीत को इन्जॉय करेंगे और बहुत अच्छा लगा आप ही हमारा साथ देने जो खामोश लिसनर हैं, और चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर जो हमारा साथ देने, ये गीत उनके लिए भी होगा, मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे। और थोड़ी देर के बाद मैं आप दोस्तों का नाम लूँगा जो हमारे चौधरी फरियाज साहब की लिस्ट है, उनका मैं नाम लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कीप इट लॉक्ड।

0: That is amazing, amazing track. और बड़े दिनों के बाद मैंने ये गाना पेश किया है और आपने इन्जॉय किया और हमें अच्छा लग रहा है ये पैसे वसूल हो गए कि आपने इन्जॉय करें और बहुत अच्छा लग रहा है. एंड यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो ऑन डीबी प्लस ब्रैडफोर्ड कीथली इल्कली एंड स्किप्टन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है डीबी प्लस. और ये भी खूबसूरती है बिकॉज ऑफ ऑल दोज beautiful, beautiful callers. Or yahan pe choti si break hogi, break foran baad I will mention the names that are left for the dedication. To unka bhi main naam lunga aur hame acha lage ki aap hamara saath hain. Line kafi busy hain aur jagmag kar rahi hain, to please aapne mind nahi karna hai aur hamare apne hain. Aur mind kyun karenge, apne ho to mind karne aisa nahi ho sakta hai. Aur kyunki apne jo hote hain na wo apne hi hote hain, apne apne hi hote hain. Aur khoobsurti hai ki aap hame support kar rahe hain. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Keep it locked.
1: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
2: Have you tried Caroteno Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caroteno Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caroteno Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caroteno Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना.
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935.
0: Right, moving on to the track which I'm going to be playing for Chaudhry Firyaz Sahab. ये आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होंगे. मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप enjoy करेंगे. आपके दोस्तों के नाम हैं चौधरी आसिफ फिराज साहब हैं और परवेज खान यानी कि मैं हूँ, महबूब लाई साहब हैं, तारक जुल्फी साहब हैं, जवेद मीर साहब हैं, तारक भट्ट जी हैं, शकील साहब हैं, इरा खान जी हैं और चौधरी एम उस्मान हैं, शफीउल्ला हैं, वाजिब भाई होडिसपुर से हैं, अयूब जवान साहब हैं और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं और हमारे मोहतरम हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं और सलीम भाई हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं और अतीका साहिबा हैं और जंगीफ अमजीज ब्रिज से हैं. ये गीत आप दोस्तों के लिए होगा और स्पेशली ये गीत में पेश करने जाना हमारे मीठा जी हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और उनके लिए होगा. और रुखसार भाई ये गीत आपके लिए भी होगा और शाह जी ये गीत आपके लिए भी होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही नायाब गीत है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है. और अली राय साहब ये गीत मैं आपके लिए भी पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे. फजाना जी ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. आई होप यू गोना एंजॉय द ट्रैक. बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया है हमारे चौधरी फिराज साहब के लिए. माशाल्लाह उन्होंने सलाम आपने पेश किया है तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम सलाम. और आपकी जो सखियाँ सहेलियाँ हैं आप प्रोग्राम सुने तो आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मैं गीत में पेश करने जा रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए. इफ़ यू ड्राइविंग ए ड्राइव विद एंड इफ़ यू आउट एंड अबाउट स्टिक राउंड विद सनराइज रेडियो. और क्या कहने जी सनराइज रेडियो की खूबसूरती है कि एक यॉर्कशायर में है, ब्रैडफोर्ड में है. और यस इन ब्रैडफोर्ड दैट वाज अ सच अमेजिंग अमेजिंग इट वाज अ फ्लावर गार्डन इन ब्रैडफोर्ड इन सेंटिनरी स्क्वायर. और बड़ा ही नया, बड़ा ही खूबसूरत बिलीव करें कि इट वॉज लाइक ए कारपेट एंड इट वॉज अ फ्लावर गार्डन एंड इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग विद फ्रेश फ्लावर्स केम ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम से. और जिन्होंने आर्टिस्ट ने वो काम किया है आई सल्यूट यू ब्रो, आई सल्यूट यू. और यहाँ पर मैं हवा के दोष में मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो काम किया है बिलीव करें कि यू मेड ओज प्राउड एंड यू मेड होल ऑफ द सिटी प्राउड एज वेल. दैट वॉज द राइट मनी हैज़ बीन स्पेंड राइट टाइम राइट प्लेस एंड एवरीबॉडी एंड मेन थिंग वॉज द एवरीबॉडी गॉट इन्वॉल्व्ड. दैट वॉज द ब्यूटी दैट एवरीबॉडी गॉट इन्वॉल्व्ड एंड एवरीबॉडी हैज़ टेकन द इनिशिएटिव एंड इवन क्रिएटिव टू द सी द फ्लावर्स इन ब्रैडफोर्ड एंड वॉज फ्रेश फ्लावर्स एज वेल. एंड देयर वॉज अ थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड फ्लावर्स एंड यस यू वर देयर, आई वॉज देयर लास्ट नाइट एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग एंड इट वॉज प्रीटी मच डार्क आउट देयर बट स्टिल we enjoyed it, I enjoyed it and everybody, it was so many people there and the main thing was that everybody had initiative to do the flower themselves as well. There was nobody to say, oh no, don't do this, don't do that. You know, or then I say, but Yahabe and whoever was the organization, whoever organized it, beautiful, beautiful. If you're listening, I want to hear from you. I want to know, where was the idea come from? How was the idea and the paperwork you done? Wow, I salute you. Believe it or not, I totally, totally salute you. It was amazing job. Anyway, this is track going out to you and your family, your friends and colleagues. Enjoy the track.

0: राइट एंड दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही नायाब गीत था और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक विच इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर यू बहुत खूबसूरत गीत होगा और वो गीत आने वाला होगा स्पेशली हमारे छोटे पीर साहब ने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया मेरे भाई और ठीक ठाक हैं आप, फर्स्ट क्लास हैं और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ठीक होंगे. और बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया है और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा और आपने कहा कि सब सुनने वालों के सलाम पेश किया है और जहां पे हैं या पाकिस्तान में हैं तो बड़ा ही अच्छा लगा और स्पेशली आपने सलाम पेश किया है हमारे जावेद मीर साहब को, आपने सलाम पेश कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. तकी शाह को आपने सलाम पेश किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनको याद कर रहे हैं. तो आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ और उनके लिए भी पेश करने जा रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बड़ा अच्छा लगा कि आपसे भी बात हुई है बड़े दिनों के बाद और आप खैरियत से हैं ये भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. एनीवे बहुत जल्द आपसे भी मुलाकात होगी और बहुत जल्द मुलाकात होगी, ठीक है. अब मुझे पता लग गया कि आप ठीक ठाक हैं और यहीं पे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एनीवे यहाँ पे छोटे से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद है एक खूबसूरत गीत होगा जो फ्लैश बैक में होगा और वो नायाब गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. जावेद मीर साहब आपके लिए होगा और छोटे पीर साहब आपके लिए होगा और आपके जो दोस्त अहबाब हैं अजीज़ हैं और तकी शाह जी आपके लिए भी गीत होगा और हमारे वाजिद भाई हैं आपके लिए भी होगा और आप सब दोस्तों के लिए होगा जिन्हें जो हमें फ़ोन कर चुके हैं और अली राय साहब आपके लिए भी गीत होगा. फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया है. ऑल द वे फ्रॉम रश दिल से आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

And that was a wonderful tune और आपने enjoy किया होगा. Definitely मैंने enjoy किया. बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना है और बड़ा ही अच्छा लगा. और moving on to another beautiful track, Dr. Malik साहब आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन कि आप enjoy करेंगे. सब सुनने वालों के नाम होगा और बहुत अच्छा लगा. इतनी आपने दुआएं की हैं और वो भी फ्री में. और मैं यहाँ पर आमीन आमीन कह रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमारे जो बहुत ही प्यारे भाई हैं, मुर्शिद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी. वो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये सुन के बहुत अच्छा लगा. और आने वाला गीत मैं आपके लिए भी पेश करूंगा और यही गीत मैं पेश करूंगा. बहुत अच्छा लगा. सिमी जी आपकी और आपकी पूरी फैमिली ने हमारा साथ दे रहे हैं और बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं. आप इन्जॉय करें और ये गाना मैं आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन है आप ही इन्जॉय करें. अतिकर साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, ये गीत आपके लिए का. और यही गीत मैं पेश करूंगा. रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फजाना जी हैं, ये गीत आपके लिए का. मुझे उम्मीद है यकीन है इस गीत को आप इन्जॉय करें. बड़ा खूबसूरत नायाब गीत है और वन ऑफ माय फेवरेट गीत. और यही गीत मैं पेश करूँ जवेद मीर साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा. खुमी फ्रॉम छोटे पीर साहब हैं, उनके लिए होगा. आप उनकी तरफ से आपके लिए होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ और इन्जॉय. थोड़ी सी रेडी को हो रहा जाओ या रेडी की आवाज़ ऊपर कर लो. बड़ा ही नायाब गीत है. महबूब लाल साहब, ये गीत आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बड़ा ही नायाब गीत है. इन्जॉय.

0: God was alive and kicking track, और आपने enjoy किया है और हमें अच्छा लग रहा है. और anyway, moving on to another beautiful dish track will take me to the 9 o'clock news. और time हमसे भाग रहा है, हम क्या करें क्या करें क्या करें. इतने खूबसूरत गीत पेश किए हैं और बड़ा ही अच्छा लगा. आपने दोस्तों ने enjoy किया, ये आपके अल्फाज थे कि आपने बड़े अच्छे गीत पेश किए, बड़ा अच्छा लगा. ये आपके लिए थे और बहुत अच्छा लगा आपका भी. और मैं यहाँ पर क्या करूँ कि गाना लगाऊँगा तो वो अधूरा हो जाएगा. और हमने क्या करना है कि हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है. और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि फैंसी बिट ऑफ फोन विजिट सनराइज प्ले ऑन हेल्प राज वांट्स रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज रेडियो रुश टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज डिस्कवर द विच बॉलीवुड कलेक्टर यू आर प्ले नाउ एट sunrise.radio एंड जॉइन द फ्री सनराइज लिसनर क्लब टू अनलॉक even better. And that is all about the Sunrise Radio. And rush rush rush ho rahi hai aur kya kare ji aur bada hi acha laga. That was a short and sweet aur ye baat ho rahi hai. Aur not forgetting the Sunrise Radio, you're listening to Sunrise Radio on DAB Plus Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington और मिंटन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना है. नो फॉरगेटिंग ऑन वेस्ट लंदन में हमारा प्रोग्राम सुना है. एंड यस वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम वेस्ट लंदन एज वेल. और हमारे प्रोग्राम में हमेशा शिरकत करते हैं और ये हमारी खुशी है कि खुश नसीबी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और ये भी हमारी खुशी भी है और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. और एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है जो लंदन में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून का. और रूबी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड देन वी गॉट सईद एहसान हैं और हक साहब हैं और लोधी भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. हमें अच्छा लगेगा कि आप जब आप आएंगे हवा के दोश में, एंड देन वी कैन हैव अ चिट-चैट विद यू, दैट विल बी द अमेजिंग फीलिंग. एंड इट्स नाइस टू हैव योर कंपनी एज वेल. जो काफ़ी मुझे दोस्त जो फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो मेरे भाई जब आप हमें फ़ोन करेंगे, फ्लैश इन करेंगे या फ़ोन करेंगे तो मैं नाम ले लूँगा. वैसे आप कहेंगे मैं आपका नाम लूँ तो आई एम सॉरी, आई डोंट यू नो मेंशन anybody names without you calling in. और ये खूबसूरती है हमारा प्रोग्राम की कि मैं हाजिरी लगाता हूँ और हाजिरी का मकसद यही होता है कि आप हमारा साथ देंगे तो तब हाजिरी लगाएंगे. जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ पर हाजिरी लगेगी, क्या हाल है. और वही बात हो रही है और गैर हाजिरी और हाजिरी ऐसे ही लगा रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगेगा. मैं आप दोबारा फ़ोन करेंगे तो मैं नाम ले लूँगा. कीप इट लॉक्ड.
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 9, Donald Trump is claiming a suspected terror plot against an RAF base used by the US Air Force was looking to do big damage. The President has praised the arrests of 5 men after 3 suspicious vans were seen heading to Fairford in Gloucestershire. 85 homes were evacuated in the operation, which awoke nearby villagers in the early hours.
3: My wife heard a noise, nudged me and said there's somebody knocking on the door, which is most unusual for a Sunday morning.
4: It just highlights again, you know, we really need to focus on defence in our country, and you know there's lots of things politically that are happening that aren't being dealt with properly.
2: Counter-terror officers are understood to be looking at possible links with Iran. The head of the Democratic Unionist Party is accusing Northern Ireland's First Minister of breaking the law. Michelle O'Neill and others have blocked a controversial Orange Order march heading from Drumcree Church down the mainly nationalist Garvachy Road in Portadown. The Parades Commission's allowed it for the first time since 1998. The Sinn Féin politicians defending her actions.
5: We've spent the night speaking with intergenerational, like a granny and her daughter and her granddaughter. We're meeting families like that who feel collectively traumatised, who feel individually traumatised. Does anybody think that this is a good idea? No right-minded person would make this decision.
2: 10 staff have been removed from duty after the medical records of 3-year-old

0: Music.
1: All right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Music, your hit music station, 100.6 FM across West Yorkshire. और बहुत अच्छा लगा और हमारा साथ दे रहे हैं रविन साहब हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप अमेरिका में न्यूयॉर्क में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, तो ये आने वाला गीत मैं आपके लिए भी पेश करूंगा और सब सुनने वालों को पेश करूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ऑन दिस ट्रक इज गोना गो आउट टू यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है और स्पेशली जो गिदन भाई हैं और हमारे पापी सुमित्रा जी हैं, उनको अपने सलाम पेश कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ देने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और राय अजर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने पेश करना है ये गीत हिट ऑफ द आवर. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल ट्यून और बहुत खूबसूरत गीत, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून. एंजॉय.
2: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Right, I'm in the studio. It's 7 minutes past nine in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब। ये ना हो कि उनकी लाइन ड्रॉप हो जाए, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ और उनके पहले मैं लेके जा रहा हूँ। और उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ और वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान से हमें याद कर रहे हैं। तो ये ना हो कि वो उनकी लाइन किसी वजह से वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर मसला मसाइल है। तो उनके लिए हम एक कह रहा हूँ कि यहाँ पे जल्दी में लेके जा रहा हूँ उनको, अदरवाइज हमने कभी गाना रोका नहीं है। तो उनके लिए खसूस रोक रहा हूँ क्योंकि उनको, क्योंकि आपको पता है कि वो फ़ोन करते हैं पाकिस्तान से, तो अच्छा नहीं लगता कि जब वो फ़ोन करते हैं, उजरा अफजाई करते हैं, शेर शायरी करते हैं, वो लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर लूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आप सब सुनने वालों का भी। और यहाँ भी हमने वेलकम करना है, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा,
0: बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह। सही, ठीक है, ठीक ठाक, ठीक ठाक हो ना?
2: बस सारी दुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं निशान जी तुम गुजारा क्या, तो ठीक ठाक हो, फर्स्ट क्लास में। मैं यही कह रहा हूँ कि तुम वापस आ जाओ तो साढ़े लिए भी ठीक ठाक हो जाएगा, सब सुनने वालों को भी ठीक ठाक हो, चौधरी साहब वापस आ गए, क्या हाल है?
2: मैंने
0: पूरा बोरा नहीं, पूरा बोरा तो सलाम चुकया है और सब सलाम दे करने ने। तो मैं फर्दन फर्दन सब आपकी जो पूरी जो दोस्त है बाब अजीज़ हैं, उन्होंने आपके लिए सलाम पेश किया है। तो थोड़ी गपशप लगाएंगे अगले आवर में, ठीक है ना? तो इस आवर में आप अपनी शायरी करें और ये ना हो कि देर हो जाए।
2: जी सबसे पहले जनाब छोटे पीर साहब, उन्होंने सलाम है। और इस बाद मेरी बहन अतीका जी और नौशीन जी ने,
0: जी
2: और सिमी जी ने, गजालाबाद जी ने, उमर कुसुम जी ने, सिबा जी ने,
0: जी
2: शाहपरी जी ने, जुलेखा जी ने, सारा जी ने, पाबी साहिबा ने, गिदड़ भाई ने, और फरजाना जी ने, साइमा जी ने,
0: जी
2: और सोनिया जी, इनका मेरा बहुत बहुत सलाम। और इन सब ने मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना के मेरी बड़ी हौसला अफजाई करने में, और इन्होंने बड़ा खलूस है।
0: और अतीका साहब ने कहा कि आपको पहले लेके जाएंगे। जी
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बाजी का।
0: और ये आपके
2: यकीन करो कि मैं, मेरे को इल्फाज नहीं है कि मैं तुसा कह रहा इना कह रहा।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मेरे भाई, आप हमारे भाई हो,
2: हमारे बंदे ने कम में गए।
0: ऐसा ना करे मेरे भाई, ऐसा ना करे। आप माशाल्लाह सर आंखों पे, माशाल्लाह सर आंखों पे।
2: चलो चलो
0: जी,
2: चलो ऐसा मनने की नहीं।
0: जी
2: मैं हमेशा मेरी हौसला अफजाई करने रहे, और भी जितने ने मैं किस किस तरह ना लिया, यकीन करो मैं सारे शुक्र गुजार हूँ।
0: जी
2: और असाने मोहतरमा अमर भाई ने,
0: जी
2: और महबूब लाई साहब ने, दफ्तर साहब ने, आज सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सैन चक्की वाले ने, शकीर साहब ने, हिजाब भाई ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मेर भाई ने, अब्दुल किशन भाई ने, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारक बार साहब ने, और जनाब मुजफ्फर चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसफ रियासत साहब ने, और जनाब डाटू चौधरी मालिक साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुसाने खलूस ना, तुसाने मोहब्बत सही नहीं है, तुसाना खलूस प्यार असा वैसे बेबा ए तोहफे ने,
0: जी
2: ए तोहफे ने। इंशाल्लाह जे अंग्रेज ने आ तो जनाब वाला मुलाकात करसा
0: इंशाल्लाह,
2: ऐसा की खुशी होसी के तुसा जे दोस्त असा ने से खैर ख्वाह ने और सारा ख्याल रखने ने। और जनाब चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, राजा वकास साहब ने, राजा जुल्फर ने, और जफर अली हीरो साहब ने, महमूद साहब ने, राजा शोएब साहब ने, और चौधरी मनीर सैन अली तक, और जितने संगीत साथी ने, मेरा बहुत बहुत सा बना सलाम।
0: वालेकुम सलाम,
2: बिस्मिल्लाह करा परवेज भाई।
0: जी बिस्मिल्लाह।
2: लिखने ने के नबी पाक की बारगाह पाक अंदर,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
2: नबी पाक की बारगाह पाक अंदर रे याद ना कोई फरियाद दिल नो, कमल पोछ के कमल दे साए थले, मैं ध्यान के कीता है आबाद दिल नो,
0: माशाल्लाह,
2: रे आशर दे अरे दा खौफ कोई नहीं, ताके करम मुस्ता कीता है शाद दिल नो, पड़ा राकब दुरूद सलाम जे ना मिलदा चैन ना आंदा है सवाद दिल नो। परवेज भाई
0: जी जी,
2: एक शेर तुसा ने छोटा जिहा तुसा सारे नजर
0: जी जी
2: तुसा इतना असा की खलूस देने हो तुसा सब बानी नजर
0: जी जी
2: और जितने मेहमान तुसा ने महफिल जिसने ने और उन्हें मेहमाना वास्ते तुसा वास्ते
0: जी
2: छोटा जिहा लिखने ने के मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता।
0: हाय हाय हाय क्या कहने।
2: मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मैंने मान लिया तुमको बुलाया नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वा, क्या कहने
2: जादू साहब। मैंने मान लिया तुमको बुलाया नहीं जाता, एक मुद्दत से तेरा नाम लिखा था दिल पर।
0: वाह।
2: एक मुद्दत से तेरा नाम लिखा था दिल पर, मैं क्या करूं वो मुझसे मटाया नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
2: के मजाज में रंगे जनाब
0: जी जी
2: बिस्मिल्लाह करा लिखने ने के केड़ा दुख दसा वो दुखा आलिया नो।
0: हा हा हा हा वाह वाह।
2: केड़ा दुख दसा वो दुखा आलिया नो, कली खिलन पे आई ते खिजा चुल गई।
0: वाह।
2: ताकि मेर सेती लगा जाम देने लड़खड़ाया कुछ ऐसा के तमाम डुल गई।
0: आई हाय हाय क्या कहने।
2: दूर दूर रहने सालों साल आके दूर दूर रहने सालों साल आके मेरी अस्थी ना बाग बहार फुल गई।
0: वाह।
2: पाने रंग विच पंग नसीब मिर्जा कोई आया ख्वाब विच यार ते अख खुल गई।
0: वाह चौधरी साहब।
2: अच्छा फिर बेत कलम संग गहरा कलाम तेरी, बेत कलम संग गहरा कलाम तेरी, खातर मेरी क्यों ऐडा अंधेर आया।
0: वाह।
2: मैं ते सजना मन रजा तेरी, छूटा दर रकीबा तक फेर आया।
0: वाह जी वाह।
2: तेरी नगरी विच फेरा नगा जिधरे जिठा गम आर पासियो घेर आया, कोई मिलना मसलना किया उन्हें जाम मिर्जा, करम साकीना जदों चफेर आया।
0: वाह चौधरी साहब वाह।
2: अच्छा फिर गई जिंदगी गुजर रह गां मेरी, गई जिंदगी गुजर रह गां मेरी, आई शाम बिन शाम ना शाम आया।
0: वाह।
2: रोक शोक कर बैठा लचार मैनो, ना को नामा निशानी ना पैगाम आया।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: चली जान इजराम थी जान मेरी, फिर भी साकी सराई ना जाम आया, मिर्जा गोर तक मिलिया ना चोर कल भी, और ना ही दर्दा थी मैनो आराम आया।
0: आई हाय हाय वाह वाह।
2: अखिया फिर मतलब ने साज नो तोड़ दिता, मतलब ने साज नो तोड़ दिता, लबे यार पर मेरा जद नाम आया। बैठा साफ कर साकी सराई ताई, मेरी तरफो मेरी तरफ फिरना जद जाम आया।
0: वाह चौधरी साहब।
2: मरकल मौत भी दिता सलाम आके, जद कासत ले वसले पैगाम आया। मिर्जा जान टुर चली जवाब दे के, मिर्जा जान टुर चली जवाब दे के, जदों दर्दा से जरा आराम आया।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: आखिया फिर आखिया कासदा मेरे दिलदार ताई, आखिया कासदा मेरे दिलदार ताई, चके रानी तो तेरे गमगीन खल के, बेजा दीद बेदीदिया नु वास्ता ही पवे दूरी माए जबीन खल के।
0: वाह जी वाह कमाल कर
2: दी। चटिया जिसम तमाम अंदरों रोने आजक भी सारे बलीन खल के, निकले मिर्जा अरमान से जान सोखी।
0: वाह।
2: निकले मिर्जा अरमान से जान सोखी, आके पर जा सराने यासीन खल के।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहनी।
2: अखिया जुल्म पर जुल्म कमा पावे, जुल्म पर जुल्म कमा पावे, वक्त नजर पर तेरा दीदार चाहिए, बेशक मिले ना मिले मकसूम से सी है, पर साकी संग नगा है दो चार चाहिए।
0: वाह चौधरी साहब वाह। मनिका
2: क्या रवे खिजा मेज से गम नाई, रवे खिजा मेज से गम नाई, है पर गार नहीं है पर गैर नहीं विच ना खार चाहिए।
0: वाह।
2: और केंदा मिर्जा पावे नंगे वो मार ठोकर।
0: वाह।
2: केंदा मिर्जा पावे नंगे वो मार ठोकर, ओए रस्ते यार विच होनी मजार चाहिए।
0: वाह चौधरी साहब मनिका।
2: बाबा परवेज आखिरी शेर
0: जी जी जी।
2: सारिया नजर जितने मेहमान तुसा ने महफिल इतने ने
0: जी जी,
2: ते असानी तरफ एक उन्ना दे खूबसूरत शेर
0: जी, अच्छा
2: बड़े खूबसूरत अल्फाज ने और सारे खलूस ने, ए समझो के अकासी है
0: जी।
2: क्या लिखने ने बिस्मिल्लाह करा मत्तर खुशबुआ नाल घर करके।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: मत्तर खुशबुआ नाल घर करके, ये जूते सजावा मैं फुल कल।
0: आहा।
2: मस्तर खुशबुआ नाल कर करके, से जुते सजावा में फुल कलिया, कदम जिन्ना पर रखे तो चंद माइया।
0: वाह।
2: कदम जिन्ना पर रखे तो चंद माइया, अखा नाल ओलावा में फुल कलिया।
0: वाह।
2: खूने जिगर नाल करमा, खूने जिगर नाल मैं करा दीप रोशन, हरावा विच बछावा में फुल कलिया।
0: वाह।
2: हार विच हकीम परो के थे और तुसा सारे ने गले विच पावा मैं फुल कर
0: आए आए आए आए वाह वाह वाह चोरी शाम मन गया चोरी शाम मनी गया
2: सलूट फिर एक दफा फिर तुसा ने नजर कर रहे हैं
0: जी जी
2: तुसा ने मैं पर ने नजर
0: जी
2: जितने मैं मान मेरी कदर करने ने ना मेरे मेहरबान ने मेरे कदरदान ने
0: जी
2: उन्हें वास्ते आख्या मत्तर खुशबुआ नाल घर करके
0: वाह
2: से जुते सजावा में फुल करियां कदम जिन्ना पर रखे तो चंद माइया
0: वाह
2: कदम जिन्ना पर रखे तो चंद माइया अखा नाल लावा में फुल करियां
0: वाह चौधरी साहब मन गया
2: उन्हें जिगर नाल करा में दीप रोशन
0: वाह
2: अलावा विच बछावा में फुल करियां
0: वाह
2: हार विच अतीम परो के थे
0: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया और अगले आवर जी हम क्या कहते हैं कि अली हमजा ने सुनने और जो आपके चाहने वाले हैं माशाल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम भाई हैं दोस्त हैं और क्या गल है मेरे भाई जा रहे हो आ रहे हो ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है मेरे भाई ओए आप माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी और बड़ी मेहरबानी आप आए और बाहर आ गई बड़ा अच्छा लगा और थोड़ी देर के बाद दोबारा सुनेंगे आपकी आवाज़ में बड़ी खूबसूरत शायरी और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप आए और बाहर आ गई बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से
2: लगे जाए या क्या
0: थोड़ी सुनो ना थोड़ी करो ना कहना थोड़ी देर बाद करने ना कोई शेर शायरी अली हमजा ने और थोड़ी सुनाए ना थोड़े कह ला तो बड़ी मेहरबानी सर बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और हमारी तरफ से ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274-488-935
4: राइट वेलकम बैक लिसनर और यहाँ पे मेरा साथ हैं अतीका साहिबा हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू
4: कैसी तबीयत ठीक है ठीक है आपकी हमारे चौधरी फरियाद साहब भी आ गए और बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने खूबसूरत शायरी की है और आपका शुक्रिया अदा करने के आपने उनको मौका दिया जी
5: उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने फरियाद भाई ने बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई
4: जी
5: हमेशा की तरह
4: जी
5: तो उनका बहुत बहुत सलाम
4: वालेकुम सलाम
5: तो सबसे पहले तो आपके जो सॉन्ग आज भी आपने लगाए
4: जी
5: तो उनकी अगर उनकी तारीफ ना की जाए तो ये गलत है
4: गलत है ये वाकई गलत है वाकई गलत है वाकई गलत है
5: बहुत खूबसूरत सॉन्ग आज भी आपने लगाए हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा शुक्रिया आपका
4: जी
5: ये आप आते हैं और खूबसूरत महफिल सजाते हैं
4: हम लोग
5: भी फिर दौड़े आते हैं
4: जी
5: ये भी एक लतीफा ही हो गया
4: नहीं कई कई बात नहीं ऐसे होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है जी
5: जी तो सबसे पहले तो सब चांद सितारों को सलाम रंगे महफिल के
4: जी
5: जितने भी लोग आते हैं सबको सलाम करते हैं और हमारी सुमित्रा जी हैं गिदर भाई हैं
4: जी
5: वो भी हमेशा की तरह आज भी सॉन्ग सुनाएंगे और लास्ट टाइम भी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाए उन्होंने
4: जी
5: और आज भी कोई दमाल शलम होगी मेरे ख्याल है उनकी तरफ से
4: जी
5: तो उनको नमस्ते
4: जी
5: रेखा जी हैं नशीन जी हैं
4: जी
5: शाहपरी हैं जुलेहा जी हैं सलीना जी हैं सितारा जी हैं आसिया जी हैं रुखसाना अफजल हैं चौधरी फरियाद साहब हैं जवेली साहब हैं नदीम मंसूर साहब हैं नदीम मंसूर साहब भी आएंगे इंशाल्लाह
4: कमाल करेंगे कमाल
5: जी वो भी कमाल ही करते हैं पापा जी हैं शकील जी हैं सलीम भाई हैं अब्दुल कयूम साहब हैं सज्जाद साहब हैं साजिद पहलवान साहब हैं वाजिद भाई हैं फिर इमान साहब हैं महबूब इलाही साहब हैं उनका भी लगता है कि वो जरूर आएंगे
4: आएंगे जी
5: खूबसूरत आवाज में कोई शेर व शायरी या
4: आज महबूब इलाही साहब गाना गुनगुनाएंगे डेफिनेटली जी
5: अच्छा इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज के साथ वो शेर व शायरी और गाना सुनाते हैं तो उनको बहुत बहुत सलाम राना नवीस साहब हैं शुक्रान भाई हैं एहसान भाई हैं रुखसार भाई हैं और राव अजहर हुसैन साहब सबको बहुत बहुत सलाम
4: वालेकुम अस्सलाम
5: तो शायरी है सबके नाम करेंगे
4: अरशाद
5: तो कहते हैं दास्तान ये तेरी मेरी कितनी अजीब है
4: वाह
5: दास्तान ये तेरी मेरी कितनी अजीब है पास तू नहीं फिर भी सबसे करीब है पास तू नहीं फिर भी सबसे करीब है रूह में शामिल है फक्त नस नस में नहीं वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं
4: वाह
5: हाल यही है कि मैं भूल जाऊं उसको
4: वाह
5: और यही बात मेरे बस में नहीं
4: बहुत खूब
5: दास्तान ये तेरी मेरी कितनी अजीब है पास तू नहीं फिर भी सबसे करीब है
4: बहुत खूब
5: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा या इस पे मबनी कोई तासीर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा
4: वाह
5: गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे
4: वाह
5: मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जिसे जैसे चाहूं लगाऊं बाजी।
4: वाह।
5: तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम मेरे, अगर मैं हारा तो तू मेरा, तो मैं तुम्हारा।
4: वाह, क्या कहने।
5: तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना।
4: वाह।
5: रहा ना इनमें से कोई दुनिया में, जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा।
4: बहुत खूब।
5: तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा, तो मैं तुम्हारा।
4: क्या कहने।
5: ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो, जो इस्तखारा, तो मैं तुम्हारा।
4: वाह, क्या कहने।
5: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा।
4: बहुत खूब।
5: हालत हाल में क्या रोके सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। हालत हाल में क्या रोके सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको।
4: वाह, क्या कहने।
5: खुद को इस होश में मदहोश बनाने के लिए आयत हुसन पढ़ूं, देखता जाऊं तुझको।
4: बहुत खूब।
5: तू नहीं मानता मिट्टी का धूल हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है। अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको।
4: आहा, क्या कहने।
5: क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मदहत से जलाऊं तुझको।
4: बहुत खूब।
5: ऐन मुमकिन है तेरे इश्क में जम हो जाऊं, और फिर देहान की जन्नत में न लाऊं तुझको।
4: वाह, क्या कहने।
5: उसने एक बार मुझे प्यार से बोला था, मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको।
4: बहुत खूब।
5: हालते हाल में क्या रोके सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। तो अभी छोटा सा एक गाना है पंजाबी का, जो कि मैंने एक दफा सुनाया था, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट है।
4: जी, गो अहेड।
5: बहुत छोटा सा है।
4: जी।
5: तो है तो पंजाबी, लेकिन कोशिश करते
4: हैं। कोई बात नहीं, गो अहेड। जी।
5: दिन अज दा वी टल दा जावे, रब खैर दी खबर कोई आ।

0: जियो डोला जियो डोला जियो डोला जियो डोला। थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत गीत का गुनगुनाया आपने और शेर शायरी भी कमाल की किया आपने, बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप आई,
0: आपने टाइम दिया,
1: वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके लिए ये बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज़।
2: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 PM till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे सोनी जी हैं और वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और वाओ इट्स अमेजिंग टू हैव यू सोनी जी, वेलकम जी अनु, खुश आमदीद। हाउ यू डूइंग?
5: I'm very well, thank you.
1: Oh my God.
5: Hi everyone.
1: I'm good, good. What about yourself? Are you good?
5: Yeah, I'm fine, thank you.
1: Wow, it's been an honor to have you in my program and we eagerly be waiting for you and itne khoobsurat geet aap gungunati hain aur charcha ho raha hai puri duniya mein to hamari bhi khush naseebi hai ki aap aayi hain aur kaun sa geet aap hamare liye gungunayenge hamare sameen ke liye gungunayenge aur hamari taraf se pehli baat ye hai ki aapko welcome ji ane khush amdeed aur ye aapke liye. All yours, ji. The stage is yours.
5: Okay.
1: Ji.
5: शुरू करूँ मैं?
1: जी जी आप शुरू कर लें, जब भी आपको मौका मिले। जी
5: जी जी
1: जी,
5: अगर किसी की कोई फरमाइश है तो भी मैं दूसरा गाना गा लूँगी, फिलहाल पहले वाला मैं अपना वाला गाती हूँ।
1: कोई कोई बात नहीं, go ahead.
5: Okay.
1: जी जी, go ahead.
5: बिना म्यूजिक के ही।
1: आई हाय हाय, थोड़ा मुश्किल है तो इट्स वेरी हार्ड एज वेल। तो आप तो वैसे तो म्यूजिक के साथ गुनगुनाती हैं तो आप बिना म्यूजिक के गुनगुना रही हैं तो ऑल योर्स जी।
5: ओके, नेक्स्ट टाइम मैं विद म्यूजिक के साथ करूंगी। ओके,
1: कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है।
5: जी
1: जी,
5: क्योंकि मेरा कनेक्ट हुआ नहीं इस वजह से ना।
1: अच्छा ठीक है जी, कोई मसला नहीं। जी जी, गो अहेड।
5: ओके ओके, ये पुराना सॉन्ग है।
1: जी जी
5: ठीक है, जो फेमस है
1: जी,
5: तो मुझे अच्छा लगता है
1: जी,
5: तो इसीलिए मैं गाना चाह रही हूँ।
1: जी
5: ओके,
1: गो अहेड।
5: ओके जी, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा,
1: वाह,
5: कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं।
1: वाह क्या कहने,
5: आपको आवाज आ रही है?
1: मेरी आपकी आवाज बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है, आप गुनगुनाएं कोई बात नहीं। और यहाँ पे जी,
5: I'm sorry, आपका ना वो क्या कहते रीसाउंड हो रहा है मुझे ना।
1: अच्छा मैं अभी मैं बंद करता हूँ और आप गाना गुनगुनाएं, ठीक है? गुनगुनाएं
5: जी। ओके थैंक यू। ओके, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं, कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार कर

की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे

0: इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ मेरे, है नाम मेरा जल की धारा। थैंक यू एवरीवन।
1: वाओ, क्या कहने क्या कहने, ब्यूटी। आपने तो कमाल ही कर दिया और इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया। वेरी मुश्किल गीत था और बड़ा ही नाइस गीत आपने गुनगुनाया। और हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से याद करें तो उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम हो तो एक साजन का गाना है, जो भी आपकी जो साजन की मूवी के गाने हैं और जो भी आपका दिल मनपसंद गीत है उनके लिए आप पेश कर दें तो अच्छा लगेगा जी। वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: ओके, साजन मूवी का ना?
1: हाँ, कोई भी गीत हो साजन मूवी का हो या कोई और की आपकी जो जो आपकी जो आपके पास कोई गीत हो और उनके लिए पेश करें, उनके दोस्तों के लिए पेश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा जी।
0: जी बहुत प्यार करते हैं गांव में।
1: हाँ, वेरी गुड, दैट्स अ ब्यूटीफुल वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून। वाह, क्या कहने।
0: ओके, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार

की कसम बहुत प्यार करती है तुमको सनम, हमारी गजल है।

0: जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, सागर सी बाहों में मौजें हैं जितनी, सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, कि ये बेकरारी ना अब होगी कम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। थैंक यू एवरीवन।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और क्या गीत आपने गुनगुनाया, और वेरी नाइस ट्रैक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाह मूवी, और वाह आपकी खूबसूरत आवाज है, आहा क्या कहने,
2: बहुत प्यार करते हैं,
1: आहा क्या कहने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आप मैंने अभी खुम नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू प्ले डू विद द म्यूजिक करियोकी यू कैन डू शो एज वेल। और आप इफ यू फील बेटर,
0: आई ट्राइड टू कनेक्ट वंस बट वो कनेक्ट हुआ नहीं था मेरा।
1: ओह हां, अच्छा, कोई बात, नेक्स्ट टाइम आप जो आपको जो दिल करे, जो भी, इफ यू आर फील हैप्पी टू डू विद द म्यूजिक यू कैन डू शो एज वेल, इफ यू फील विदाउट द म्यूजिक इट्स योर प्रोग्राम, इट्स योर शो,
0: विद द म्यूजिक आई कैन सिंग मोर बेटर, नो मतलब, बट
1: कोई मसला नहीं, इफ यू वांट ट्राई नेक्स्ट आवर यू कैन डू शो एज वेल। बहुत शुक्रिया आप आई हैं और आपने हमें टाइम दिया, एंड यू नो व्हाट, आई सैल्यूट यू ऑन हवा के देश में, बहुत बहुत शुक्रिया, यू नो व्हाट, यू मेड माय इवनिंग टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जाने से पहले ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई और दैट वाज सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड ब्यूटीफुल कॉल, एंड यहाँ पे आपने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप आई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड दैट वाज सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आई हैं, और बहुत ही खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाए और हमारा साथ दिया आपने, और चौधरी फिराज साहब भी खुश हो गए, उनकी पूरी टीम भी खुश हो गई है, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, और उनका मैं शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि हमारे मोहतरम में भी आ गए हैं, उनका भी मैं शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद है, काफी दिनों के बाद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाओ, पहले ये आप मस्ते लगा रहे हैं मेरे साथ, मस्ते लगा रहे हैं, पहले ये बताओ कि कहाँ थे आप मेरे बाद, पहले ये बताओ
3: सर जी, मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के ना छलांग लगाई थी लेकिन मुझे आगे जगह नहीं मिली
1: और
3: तो बड़ी कोशिश,
1: वाह मेरे भाई,
3: मैंने सोचा किसी ना किसी तरफ से घुस जाऊं एक दफा, बाकी तो इंशाल्लाह चल जाएगा काम, लेकिन किसी ने जगह ही नहीं दी बेचारे,
1: कोई मसला नहीं, आप आए और हमें अच्छा लग रहा है, और आपने गाना भी सुना है इनकी खूबसूरत आवाज में, सोने जी आई है,
3: बड़ी मासूमियत इनकी आवाज में, और बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज है इनकी, अल्लाह इनको जिंदगी दे
1: जी।
3: तो माशाल्लाह न्यू कमर जब आते हैं ना तो फिर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना।
1: नहीं, वो वाकई क्या बात है मेरे भाई, आप तो कब से सियाने हो गए मेरे भाई, ये आपकी दोबारा आपके लिए ये मेरा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी बात है कि ये आपने सोचा है, उनकी हौसला अफजाई की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। ये हमारे
3: अगर हम औरतों की इज्जत नहीं करेंगे, भाइयों की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर हम हमारी भी इज्जत कोई ना करेगा।
1: हाय हाय हाय हाय, बड़ी बात है मेरे भाई, बड़ी बात है, कसम से बड़ी बात है, आपने आज दिल लूट लिया मेरे भाई, दिल लूट लिया आपने आज,
3: जी, तो मैं लास्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपका टाइम खत्म हो गया था, तो आपने एक गाना चलाया था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जी,
3: तो वो आज गाना मैं आपके तमाम जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी डेडिकेट करता हूँ, आपको भी करता हूँ।
1: जी जी गो अहेड।
3: वो क्योंकि उसमें शायरी भी है और गाना भी है, वो टू इन वन सिस्टम है।
1: जी जी जी।
3: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता
1: है, हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
3: ये जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी,
1: हाय हाय,
3: ये रंजो गम की सियाही जो दिल पे छाई है,
1: वाह,
3: तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी,
1: हाय हाय,
3: मगर ये हो ना सका,
1: हाय हाय,
3: मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है,
1: वाह,
3: कि तू नहीं तेरा गम तेरी जस्तजू भी नहीं,
1: हाय हाय हाय,
3: भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इसे किसी के सहारे की आरजू नहीं,
1: हाय हाय हाय हाय हाय,
3: ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी ऐसे, और इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर,
1: हाय हाय,
3: मैं जानता हूँ मेरी हम नफर मगर यूं ही,
1: हाय हाय,
3: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने, शुक्रान भाई,

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता
1: है। हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
2: कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल।
1: क्या कहने जी, क्या कहने। एंड दैट वाज डन बाय शुक्रान भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। माशाल्लाह जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और शुक्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द वैलेबल टाइम आउट फॉर मी। और आपने तो कमाल ही कर दिया, कमाल पे कमाल हो गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने वेलकम कहेंगे, जीएं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे हमने करना है बहुत ही ज़रूरी काम करना है, वो काम कौन सा है और हमने वो काम करेंगे। और यहाँ पे
3: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: और यहाँ पे हमने काम करना है, वो काम करना है, जरूरी काम है। और यहाँ पे और वो काम है को, और वो टाइम चेक करेंगे यहाँ पे।
4: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Right, time in the studio is 45 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ पे छोटी छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दिल अजीज, हमारे मोशन हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। आपने घबराना नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ना टेंशन देनी है ना लेनी है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है और हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। कीप इट लॉक्ड।
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
6: The greatest Asian radio station in the world, Sunrise Radio.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: पहचान किस।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो। और यहाँ हमारा साथ दे रहे हमारे मौजूद मेहमान हैं और बहुत ही प्यार करने वाले हैं, दिल अजीज हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम में। और उनको हम अच्छा नहीं लगाएगा कि मैं उनको होल्ड करूं, और वो हमारे बहुत ही अच्छे हैं हमारे भाई, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और हमारी आन बान और शान है हमारे यॉर्कशायर की, ब्रैडफोर्ड की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह आपका रेडियो रेडियो का सब जैसे खवातीन आजाद का और आपका बिलखसूस खूबसूरत कलमा जो कहते हैं, ये कलमा आपके हक में सब सुनने वालों के हक में आइंदा साल तक फिर नियमतों से अल्लाह माल माल
1: आमीन आमीन आमीन आमीन।
2: इरशाद फरमाते हैं,
1: इरशाद
2: नारे अपनों से

0: अगर मंजूर है दुनिया में ओ बेगाना ख्वा रहना, शराबे रू परवर है मोहब्बत नुए इंसान की, सिखाया है उसने मुझको मस्बे जामो सबू रहना, मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मुने, किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार को मुने, बयाने मोहब्बत दशते गुरबत भी वतन भी है। आगे मियां साहब इरशाद फरमाते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: इरशाद
1: बिल्कुल
0: फरमाते हैं,
1: जी
0: और दानिशमंदों सुनो तमामी अर्जु फकीर करेंदा, आपू जो आपने बात कही,
1: जी
0: आपू चंगा जे कोई होवे हर नू पला टकींदा,
1: क्या कहने,
0: तक तक ऐबू न कर दे वांदे,
1: वाह,
0: वो चंगे लोग
1: बहुत खूब
0: कुदाई
1: बहुत खूब,
0: नुक्ता चीनी सिटा दो दी, वो पलिया दा कमो नाई, वो ऐबू पाक खुदा बंद आपू, वो कौन किसे नू आखे, वो कानू गल किसे दी करनी, मैं भी शायर पाखे। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे और एम खान जी, और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बड़ी इल्मी गुफ्तगू होती है हमेशा ही, और आज भी उन्होंने की है और बड़ा ही अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर के बाद, हमारा साथ दे रहे हैं हमारे, इनके पहले इनके साथ मुलाकात करेंगे, पर उनको कहेंगे यार थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि अच्छा लगेगा मैं उनसे बात कर लूँ यहाँ पे, और फिर उनके बाद जो ना, क्योंकि वो आए हैं और यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, चश्मे रोशन दिले माशा बा कुमार लाजवाब बो तला बा इज्जत बा वकार बा जोक बा शोक, हर दिल जी शख्सियत बहुत रफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक बा इज्जत बा आजमत मेरे चैंपियन भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, या अली मदद, पीर मौला अली मदद। और बड़ा ही अच्छा लगा, मेरा भाई आया और देखो चैंपियन चैंपियन हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपकी से और आपकी वजह से माशाल्लाह, और ये यहाँ पे देखो आप इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी गुफ्तगु करते हैं और चैंपियन चैंपियन, ये क्रेडिट ये सारा आप ही जाता है।
2: नहीं नहीं सर, ये तो आपकी बड़ा जरा नवाजी है, क्योंकि पता क्या माशाल्लाह आप हैं ही बाइज्जत बावकार, और आपसे लोग इतनी उल्फत इतनी चाहत इतनी मोहब्बत करते हैं कि यकीन करें कि वो अपने प्यार का इजहार करते हैं।
1: हाँ हाँ, सदके जावा सदके जावा, कुरबान जावा आप ही माशाल्लाह। और हमारे मोहतर में शाह जी हैं, वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, और वो भी आपके इलाके से हैं माशाल्लाह, और मैनचेस्टर के हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारी। ये हमारी खुश नसीबी आप ही आ गए और हम आपके हम शेर शायरी सुनेंगे, गाना सुनेंगे और अगले आवर में, और बड़ा ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप आए हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पे स्टूडियो में खुशबू आ रही है, महक आ रही है, वैसे भी हमारे योगक्षेम में फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए, तो आप ही आए हैं तो फूल लेके आए हैं तो हमें अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
2: सबसे पहले तो शाह साहब सैयद हैं, माशाल्लाह मेरे लिए नहायत काबिले इज्जत काबिले एहतराम हैं और मोहतरम है मेरे लिए, और मैं उनकी खिदमत अकदस में नहायत मोहब्बत नहायत चाह से अपना पूरा खलूस सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो है ना

0: क्योंकि मैं भी उनको जानता हूँ और आप भी उनको माशाल्लाह जानेंगे माशाल्लाह, और आने वाले वक्त में हम इनके साथ खाना भी खाएंगे, बैठेंगे भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपको भी हम इंशाल्लाह दावत देंगे, इंशाल्लाह किसी रोज़ आपको भी दावत देंगे। वैसे भी चर्चा हुआ है कि हमारे रुखार भाई पता नहीं कहाँ हॉलीडे जाते हैं, परवेज़ खान के साथ यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो हम किसी वैसे ही वो कहते हैं कि वहाँ पर भी, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर वैसे भी वो कहते हैं ना कि खबर को चल रही है यहाँ पे कि परवेज खान और चौधरी रुखार भाई जो ना पता नहीं किस जगह पे गए, पता नहीं किधर गए, किस मुल्क में गए, किस शहर में गए, तो इंशाल्लाह हम किसी शहर में जाएंगे इंशाल्लाह। और ये रेडियो को कोई तलक नहीं है, ये हमारा एक अपना एक तलक है माशाल्लाह, तलक वास्ता है, आप हमारे पीर भाई हो और उस जगह का तलक वास्ता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके लिए हम दुआ गो हैं और आपके लिए भी दुआ गो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि हम जो जाने वाले हैं उस जगह से जानते हैं जो हमारा एक हमारा वो कहते हैं पंजाबी में पांजी बर्तन है, क्या हाल है उस डेरा का,
1: इसीलिए चलो। और मैं यकीन करें कि शाह साहब जो है ना सैयद, यकीन करें कि नाम सैयद आज तक वो मेरे लिए जो है ना मेरा सरदार है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, देखो देखो माशाल्लाह, देखो ये आपने जो बातें कर रहे हैं ना, हम उनके घराने के घर के नौकर हैं माशाल्लाह, और उनके घराने के नौकर हैं, और
1: उनके घर के अपना चैंपियन भाई, हम उनके घर के गदागार हैं।
0: हाय हाय हाय गदागार, हाय हाय हाय।
1: ये नहीं कि हम सैयद का एहतराम इसलिए नहीं करते कि वो उनके माशाल्लाह कपड़े अच्छे हैं या
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं
1: जी नहीं, हम सैयद की अजमत, चाहे सैयद कोई ठेला लगाता है चाहे कोई काम करता है, यकीन करें कि हम सैयद की अजमत को सलाम करते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, वो निस्बत है, वो निस्बत है, निस्बत है इंशाल्लाह, वो निस्बत है, वो वही है, ऐसे चले और ऐसे ही हम उनके नौकर हैं और हमेशा नौकर ही रहेंगे, और जिसका खाते हैं उसको गाते हैं गुनगुनाते हैं, क्या है, और उनका खाते हैं उनको पीते हैं, और आज भी जी सॉरी
1: सैयद जो है ना सैयद सरदार ज्यादा है, अमीर हो जाए जितने चौधरी है, हम गुलाम ज्यादा ही रहेंगे, वो सरदार ज्यादा हैं, सरदार ज्यादा ही रहेंगे, वो नबी की आल है,
0: नबी की आल आल है, हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: उनका शजरा नसब है
0: कहाँ। मैं आपसे माजर चाह रहा हूँ दो हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने न्यूज़ ब्रेक करनी है यहाँ पे, आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको टोकूं, और आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो नेक्स्ट आवर में मैं लेके जाऊँगा आपको, और आपने जो खूबसूरत अंदाज में आपने जो भी पढ़ना है पढ़ लेंगे और गुनगुनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: It's understood police are investigating whether Iran is linked to a suspected bomb plot at an RAF base. Five men have been detained on suspicion of explosives and terrorism offences after three vans heading for Fairford in Gloucestershire were stopped early this morning. US bombers are located there, and President Trump has praised the arrests as fantastic. Defence Secretary Wes Streeting's reacted too.
4: There's a live police investigation, so I'm very limited in what I'm able to say, except to pay enormous tribute to our emergency services and security services who have once again demonstrated that they work around the clock to keep this country safe.
3: Northern Ireland's First Minister is being accused of breaking the law by the DUP leader following her actions on a hugely significant road. Sinn Féin's Michelle O'Neill is among thousands of protesters who've blocked a largely nationalist route in Portadown. The Parades Commission has allowed the Loyalist Orange Order to march along Garvaki Road for the first time since 1998. 10 NHS staff have been removed from duty or suspended after snooping through the medical records of Noah Woods. The three-year-old was found dead in a pond in Suffolk last week after he went missing from a playground through a gap in the fence. NHS England's promised to get tough on staff who access data inappropriately. It also happened after Oliver McGowan died in 2016. His dad Thomas knows what Noah's family's going through.
5: We expect people to respect privacy, especially with delicate, sensitive information like this. And, you know, when you've lost a member of your family or a relative. It's hurtful, deeply hurtful.
3: In sport, the Republic of Ireland bounced back from an opening Nations League defeat with a 3-0 victory over Israel. Neither side shook hands before kick-off in the controversial fixture in Hungary. Wales, meanwhile, remain winless in 2026 after losing 2-0 away to Denmark. And England's cricketers eased to a 223-run victory in the deciding one-day international with Sri Lanka to take the series 2-1. And that's

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio, 100.6 FM, 103.2 FM, across the West Yorkshire. And you're listening to on DAB Plus on Milton Keynes and West London. And not forgetting Apple stores आप हमें और Google Play Store में आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं और www.sunriseradio.fm और www.sunrise.radio और ये वो खूबसूरत जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन www.sunrise.radio that is all about on Sunrise Radio is every household name aur har jagah pe baj raha hai har jagah pe chal raha hai gaadi ho ya bangla ho ya motor ho ya jo bhi ho aur wo chal raha hai aur aage bhi chalega aur zabardast ho raha hai aur Sunrise Radio is number one hit music station across the nation aur badi khoobsurti hai aur aap doston ka pyar hai aur yahan pe humne kya karna hai time check karna hai
1: Sunrise Radio Your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 7 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the power of his con. And here we are, our mother is here, our father is here, and they have all been here. And our happy is here, that they are our father. And here we are, our very loved brothers. And as much as I will give them, they are our sweetheart and sweet brothers. And we say to them with love, they are very adab-adab, sweetheart. And because their gift-giving Yeah. बड़ी इल्मी गुफ्तगू होती है माशाल्लाह और बड़े ही नायाब हैं हमारे लिए और हम इनकी कीमत को जानते हैं कोई और जाने ना जाने हम जानते हैं और यहाँ पे वेलकम जी आई ने खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू
2: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात जनाब मोहतरमाली जनाब यकीन करे कि जिस इज्जत से जिस प्यार से जिस मोहब्बत से आप पुकारते हैं जो आजाजात आप मेरे लिए अता करते हैं मैं उस काबिल नहीं हूँ यकीन करे ये आपकी मोहब्बत आपकी चाहते हैं ना वो क्या कहते हैं कि चंगे होमन यार से हर कोई सड़दा है
0: आए हाए, आए हाए। अच्छा ये गाना आपने गुनगुनाया ना गाना गुनगुनाया पूरा गुनगुनाए ना कि हमें अच्छा लगेगा क्या है ना
2: अच्छा ये इसका मतलब
0: ये खूबसूरत गाना है और बड़ा प्यारा गाना है जी
2: सर आप पता क्या क्योंकि माशाल्लाह मुझको पता है कि मेरी कितनी बेसुरी आवाज है अगर मैं गडेरियां बेचने बैठ जाऊं तो मुझसे कोई गडेरियां ना खरीदे यकीन करें
0: ना ना ना मेरे भाई ये कौन कहता है ये किसने आपको बताया मेरे
2: किसने नहीं बताया मुझे खुद पता है ना
0: अच्छा ये
2: माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह आपके पास इतने इतने हीरे हैं माशाल्लाह अतीका आपकी से लेकर और मेरे जैसे आखिरी यानी के जो कहते हैं ना कि मेरा जो लिस्ट में आखिर नंबर होता है जो नीचे
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका अव्वल नंबर है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और हमारे सब बराबर है यहाँ पे ये नहीं है कि नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ये वो बात नहीं ये आप सब हमारी फैमिली हो खुशी में हो या गमी हो आपने हमारा साथ दिया और मुझे ये पता है कि जब मैं मुश्किल में था तो आपने मुझे फोन किया कि कहे कि परवेज खान क्या वजह है क्या बात हुई है ये होती है खूबसूरती होती है देखो ये खूबसूरती है और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि आपको पता है कि सब सुनने वालों को पता है कि जो मेरे दो हफ्ते जो ना बड़े मुश्किल के साथ गुजरे हैं और बड़ा ही मुश्किल ऐसा था कि मैं क्या कहूँगा मैं शुक्रगुजार हूँ जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया और वही बात है कि जिनके पास औलाद होती है ना उनको पता होता है कि औलाद किसको कहते हैं जिनके पास अपनी औलाद होती है और दूसरे की भी कदर करते हैं और अपनी जिनके पास वो औलाद है नहीं है बच्चे नहीं है फैमिली नहीं है बीवी नहीं है हस्बैंड नहीं है उनको क्या पता कि यार दुख और सुख क्या होता है क्या पता उनको यार कुछ नहीं पता होता है कि हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आपके बच्चे हमारे बच्चे आपके बच्चे और ऐसे भी दुनिया में लोग हैं कि जो वो कहते हैं कि हम क्या करें आपकी मसला है आपका मसला है आपका प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है ऐसे भी दुनिया में है ऐसा होता है मेरे भाई ये दुनिया के दस्तूर है दुनिया के मेले हैं और यही ऐसा ही होता है मेरे भाई
2: खुदा जिसको ओजे कमाल अता फरमाए उसको इज्जत और शोहरत बेमिसाल अता फरमाए ये यानी कि आपके लिए अल्फाज हैं यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो ओजे कमाल अता किया है ना और अल्लाह ताला जो मैं क्योंकि मैं ऑन दी एयर जो आपने किया है ना बात और मैं भी ऑन दी एयर बात करता हूँ कि आपका और तल्लक सिर्फ रेडियो तक नहीं है
0: जी। अल्हम्दुलिल्लाह।
2: हम रेडियो से बाहर भी हम गुफ्तगू करते रहते हैं, एक दूसरे से खैर खरीद करते रहते हैं, और मुझे वो अच्छी तरह याद है जब आपने मुझे सितंबर में पहली कॉल की थी तो मैंने पूछा कौन, आपने बोला गुमनाम।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी,
2: हर बात याद है। और उस दिन से लेके आज दिन तक परवेज भाई यकीन करें के हमारा ऐसा एक रिश्ता बन गया है कि हम यानी के रेडियो के हाथ से भी हम एक दूसरे के।
0: पहली बात यह है कि मैं मदद चाह रहा हूँ कि आप मेरे पीर भाई हो, पीर भाइयों की हम खिदमतदारी करते हैं, और हमारा जो जिस इलाके से हमारा तल्लक है, मैं जजाल के रहने वाला हूँ, और मेहमान नवाजी हमारे खून के अंदर है, और खून के अंदर है, वो हमारा खून ही ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस इलाके की खूबसूरती है, हम किसी का नमक खा लेना तो आखिर दम तक आखिरी सांस तक भूलते नहीं हैं, किसी का एक निवाला भी खा लेना या पानी भी पी लेना तो वो कभी भूलने वाले नहीं है। और हम उस बाप के बेटे हैं जो माशाल्लाह दुनिया को खिदमतदारी करते हैं और दुनिया की कदर करते हैं, और हमारे वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। मैं यहाँ पे बैठ के कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपनी जगह पर एक खूबसूरत है, और जो हमारे जानते हैं, जैसे हमारे ब्रैडफोर्ड के यॉर्कशायर के हमारे जानने वाले हैं, और जो हमारे डडियाल के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ के जो उस इलाके के रहने वाले हैं, वो उनका एक नाम है, वो लोगों के मसले मसाइल को हल करते हैं, वो बैठते हैं, और जैसे मुनसिफ होता है, जैसे एक हुक्मदार होता है, वो दुनिया के मसले हल करते हैं, ऐसे ही वो खूबसूरती हमारे और हमारा आना जाना दुनिया में उठना बैठना हमारा होता है, ऐसे ही होता है मेरे भाई। और मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम आम कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये सब ये जो कमाल है ये अल्लाह ताला की तरफ का कमाल है, और ये मौला का कमाल है, सब मौला का कमाल है, हम मैं कुछ भी नहीं हूँ।
2: बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं, और मैं माशाल्लाह आपके डडियाल के, मीरपुर के, आपके माशाल्लाह उधर के जितनी भी माशाल्लाह हस्तियां, जितनी भी शख्सियात हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, और बहुत ही मेहमान नवाज हैं, और माशाल्लाह इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतना प्यार देने वाले, ऐसे आपने मुझे मीठा कहा, असल में मीठे लोग वो हैं
0: माशाल्लाह। मैंने सब अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे डडियाल के हैं, पूरा पूरा पाकिस्तान पूरे इलाके से खूबसूरत लोग हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी में सब खूबसूरत है। जब वो कहते हैं ना कि वो छानी तो वही जानी, जब आप छानते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार ये जो छानी होती है ना उसको पता होता है कि मैं क्या छान रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और जब मुश्किल टाइम आता है ना आपको पता लगता है कि जैसे हमारे राय अजर सैन साहब ने एक बात की थी, कहते हैं कि यार पानी जो होता है ना, पानी साफ पानी होगा ना वो चलता रहेगा, तो जो गंदगी होगी ना, गंदा पानी होगा वो साइड पर हो जाएगा। तो ऐसा इस दुनिया में ऐसा दौर है, ये दुनिया का 2026 का दौर है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, जैसे हमारे बहुत ही प्यारी बहना है, मुझे हमेशा ही बात करती हैं, कहती हैं कि अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, बुरे भी हैं, ये नहीं कि हम सब खराब हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी बुरे में, हाँ ये है कि ओखे वक्त में आपको पता लग जाता है कि आपके सज्जन कौन है और दुश्मन कौन है।
2: सही बात है, वो क्या सियाने लोग कहते हैं कि दुनिया में रख ऐसा बंदिया बहन खिलौन, तू होवे ते हर कोई हसे, तू ना होवे ते हर
0: कोई रोवे। हाय हाय हाय हाय, देख क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
2: क्योंकि इंसान को इतना किरदार करना अच्छा करना चाहिए कि कोई बंदा जरा गिला ना करे, कोई बंदा ये ना कहे फलाना बंदा इस तरह।
0: हाँ हाँ, ऐसी दुनिया में देखो, हमने देखो कि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं छोटी बात करूंगा, मैंने यहाँ पे वालिद साहब ने और हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिली ने, हमने हमेशा ही सबके लिए वहाँ पे खड़े होते हैं, और पूरा ब्रैडफोर्ड जानता है, हमारी कम्युनिटी जानती है माशाल्लाह, आप मैं अभी फ़ोन लगाऊँ ना अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी कम्युनिटी जमा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बात नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमारा वो काम नहीं है यहाँ में किसी को हम करें, मेरे लिए सब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और जो कम्युनिटी है बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी। चलो लंबी बात हो जाएगी, आप अपना मौकफ सुनाएं, ये ना हो कि देर हो जाए।
2: मैं सबसे पहले माफ़ चाहता हूँ कि मेरा ख्याल बहुत ही लंबड़ हो गया है और बहुत तवील गुफ्तगू हो गई है, तो जिसकी मेरे ख्याल बाद में जो हस्ती आई होगी वो भी ज्यादा
0: कोई कोई वो भी मेरे अपने हैं और आप ही मेरे अपने हैं माशाल्लाह जी,
2: अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि इतने लोग आपके से प्यार करने वाले हैं, वो हर इनके हर शख्स यही चाहती है कि मेरा हिस्सा भी हो जाए, मैं भी
0: जी, जी, जी, जी, जी।
2: तो सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ जल्दी जल्दी, तो मैं एक छोटी सी पंजाबी की
0: जी जी अरशाद अरशाद अरशाद अरशाद जी जी।
2: सबसे पहले तो आमिर शहजाद भाई हैं, मोहतरम शकील साहब हैं, अहम खान साहब आए थे माशाल्लाह, बहुत सारी गुफ्तगू गए हैं, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को जिंदा और सलामत रखे,
0: आमीन।
2: और ऐसे होते हैं तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए, और चौधरी फरियाद साहब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए। महबूब लाई साहब हैं, राणा नवीर साहब हैं, वाजिद भाई हैं, जवेद मीर साहब हैं, जहांगीर साहब हैं, काशिफ भाई, कामरान भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, और हमारी आपी हैं गजाला जदीद साहब हैं, अतीका आपी हैं, अतीबा आपी हैं, और हमारी प्यारी आपी शनाज मंसूर साहब हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए। नदीम मंसूर साहब हैं, आपी नहीद हैं, और मोहतरमा मुकरमा मुअज्जमा सैम जी हैं, कंवल जी हैं, और जो हमारे भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो फैक्ट्रियों में टेक अवे में शॉप्स में काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और जो हमारी माएं हमारी बहनें हमारे बुजुर्ग इस टाइम किचन में काम कर रहे हैं, अल्लाह सभी के लिए दुआ है, दस्ते दुआ बुलंद है कि अल्लाह ताला सभी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।
0: आमीन आमीन आमीन।
2: ये छोटी सी पोस्टरी है चैंपियन भाई, मैं आप माशाल्लाह इतनी रोशन समाजों की बात करना प्यार लिखा है, जलिया इश्क कमाना औखा है, किसे नु यार बनाना
0: औखा है, आए हाय क्या कहने,
2: प्यार प्यार ते हर कोई कूके,
0: आए हाय
2: प्यार करके निभाना औखा है,
0: आए हाय हाय क्या कहने,
2: हर कोई दुखां ते हाथ लैंदा है,
0: वाह
2: किसे दा दर्द वडाना औखा है,
0: आए हाय हाय हाय हाय क्या कहने।
2: जो आपने पहले बात की थी ना कि मुश्किल में कोई बंदा फोन भी कर ले ना, तो वो भी समझ लो कि जख्मों पे मरम के
0: बराबर, हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने मेरे भाई क्या कहने,
2: हर कोई दुखां ते हाथ लैंदा है,
0: आहा
2: ओ किसे दा दर्द वडाना औखा है,
0: वाह
2: गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे,
0: हाय हाय
2: जोगी बेस वटाना औखा है,
0: वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
2: आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: कोई किसे दी गल नहीं सुनता चैंपियन भाई,
0: जी जी
2: किसे की गल नहीं सुनता, लोकां नु समझाना औखा है,
0: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने।
2: चैंपियन भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको अपनी ज़मान में रखे सर, और बहुत सी दुआएं आपको दे के जा रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि मुझे भी आप अपनी नेक दुआओं में याद रखें।
0: आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप आए और बाहर आ गए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: और यहाँ भी हमने करना टाइम जब 18 मिनट पास 10 इन यूके। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेयर यू आर, कीप इट लॉक्ड ऑन, कीप इट लॉक्ड ऑन विद परवेज खान। यहाँ पे काफ़ी कॉल्स आ चुकी हैं, काफ़ी कॉल्स होल पे हैं, और मैं मदर चैनल सबसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगे आप सब हमारा साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे और कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 FM। और हमेशा मैं बात करता हूँ कि आप सब खूबसूरत हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं, और आपसे अच्छा कोई भी नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट locked Sunrise
3: music teri ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੁਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 935 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488 935 ਦਿਸ ਅਕਟੋਬਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੀਟਸ ਭੰਗੜਾ ਇਨ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੀਟਸ ਭੰਗੜਾ 4 ਫੀਚਰਿੰਗ ਡਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜੈਨਾ ਜੀਆ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਵ ਇੰਜੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਭੰਗੜਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਐਫਰੋ ਐਂਡ R&B ਪਲੱਸ DJs ਡਾਂਸਰਸ ਐਂਡ ਢੋਲ ਪਲੇਅਰਸ ਫਰਾਈਡੇ ਦ 23rd ਆਫ ਅਕਟੋਬਰ ਫਰੋਮ 9 ਪੀ ਐਮ ਟਿਲ ਲੇਟ ਐਟ ਏਰੀਆ 50 ਸੈਕਵਿਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ 0775 3363 926 ਓਫੀ

0: Right, welcome back, listener. और यहाँ भी हमारा साथ देने चौधरी फरियाद साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: जी वालेकुम सलाम. बिस्मिल्लाह कराची.
0: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब जी को सलाम देने से हमारे रुखसार भाई और हमारे एम खान जी को सलाम देने से माशाल्लाह और बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह उनके साथ है. तो अपना जो मौकफ करें ये ना कि देर हो जाए. जी बिस्मिल्लाह करें.
1: जी वालेकुम सलाम. मेरी तरफ से उनके सलाम बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्ताना
0: जी.
1: छोटा जैब तराब के सोनो बरा बड़े अच्छे अंदाज से गाना पेश किया.
0: हाँ हाँ और आपकी फरमाइश पे गाना पेश किया उन्हें. आपकी फरमाइश पे जी जी जी
1: जी जी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी.
1: और असानी जी पूरी टीम है नशीन और मेरा सलाम और नशीन और मेरा सलाम
0: जी.
1: और पूरी महफिल की दफा फिर सलाम उदाब
0: जी.
1: चंद अशार खूबसूरत जी अली अफजावी
0: हाय हाय क्या कहने.
1: हाँ जी जी
0: जी जी बिस्मिल्लाह.
1: वो एक छोटी सी गल है आखने के सब के चेहरे में वो बात नहीं होती.
0: हाय हाय
1: सब के चेहरे में
0: वो बात नहीं होती.
1: थोड़े अंधेरे से रात
0: नहीं होती. क्या कहने क्या कहने.
1: जिंदगी में जो लोग बहुत प्यारे होते हैं अक्सर उन्हीं से मुलाकात
0: नहीं होती. क्या कहने क्या कहने.
1: जनाब बहुत अशार तुसानी महफिल नजर करता
0: जी जी.
1: लिखने के उल्फत खजान अल हुई ऐसी उल्फत खजान अल हुई ऐसी सदा वैर बहारा नाल पार रखिया जज्बा लै के संग ने बामने दा मथा नाल तपाना दे ला रखिया.
0: वाह जी वाह क्या कहने.
1: भूल गया मैं जग दे काम सारे किसी चीज दी किसी परवाह कोई ना मैं से प्यार दा रहा जुनून सारी मेरा आसा मखलूक बना रखिया.
0: वाह जी वाह क्या कहने.
1: ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਮਨ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ.
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
1: ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਤੇ ਫਖਰ ਏ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਖਦਾ ਰੱਖਿਆ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਫਿਰ ਲਿਖਣੇ ਕਿ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਏ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਰਾਹ ਬੈਠਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਖਰ ਏ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਬਹੁਤ ਖੂਬ
1: ਕਰਾਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਖੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਨੋ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੇਕਰਾਰੀਆਂ ਦਾ.
0: ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਲਬਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
0: ਵਾਹ
1: ਕਾਸਮ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਕਾਸਮ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਤੇ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਰਾਜੇ ਵੋਹਿਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ
0: ਵਾਹ
1: ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਵਿੱਚ ਗਮ ਬੀਚ ਗਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਣਾ ਰਹਿਣਾ ਮੋਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਤੈਨਾਈ ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਅੰਜਵਾ ਨੇ ਖੂਬ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣਾ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਦਾਗ ਜੁਲਾਏ ਗੁਰਬਤ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਆਸਾ ਨਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਾ ਦਿਲ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰੋਣਾ ਰਹਿਣਾ.
0: ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ.
1: ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਲਖ ਅਜਾਤੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰ ਤਲਖ ਅਜਾਤੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਜਿਸਕੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨਾ ਕਿਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ.
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਸਰਿਆ ਖੂਨ ਤੇ ਰੰਗਤ ਕੇ ਦਰਦ ਪੀਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ
0: ਵਾਹ
1: ਦੇਖਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਾ ਮੌਤ ਬਹਿਲ ਨੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ.
0: ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ.
1: ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਛੋੜਤੀ ਕਦਮ ਬਦਮਾ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋੜਤੀ ਕਦਮ ਬਦਮਾ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਸਾਂ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸਰਤ ਸਤਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਪਿਆਰ ਕਦ ਫੇਰ ਹੋ ਸੀ.
0: ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ.
1: ਬੁਝ ਸੀ ਕਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਉਡੀਕ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਜਰਨਾ ਕਦੋਂ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਸੀ ਮੁਕਸੀ ਸ਼ਾਮ ਕਦ ਗਮ ਦੀ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸੀ.
0: ਵਾਹ
1: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਸ਼ਤਾ جس دی خاطر زمانہ بنایا دشمن کردہ میرا او ذرا خیال نہیں ہے پھردہ غیران دیا باواں وچ پا باواں پھردہ غیران دیا باواں وچ پا باواں پوچھا میرا او حال حوال نہیں ہے نیت ستم کردہ ستم گار بن کے نیت ستم کردہ ستم گار بن کے او بندہ غماں دا اج پیال نہیں ہے منیا سونا ہے بہو والی عملہ
0: ہائے ہائے ہائے
1: ہائے منیا سونا ہے بہو والی عملہ پر افسوس سونا اللہ جپال نہیں ہے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ چودھری صاحب واہ مزہ آ گیا جی چاشا کی جی جی جی بہت بہت شکریہ سر تسانی بڑی مہربانی اس وقت ٹائم کڈیا فون کیتا بڑی مہربانی شعر شاعری کی بڑے خوبصورت انداز بڑا پیارا انداز بہت بہت شکریہ سر اپنا خیال رکھو دعا میں یاد رکھو
1: بہت بہت مہربانی
0: بہت بہت ساڈے کو غلطی خطائی ہوئی تو معاف کرنا ٹھیک ہے ساڈے کو غلطی خطائی ہوئی معاف کرنا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر بہت بہت کوئی غلطی نہیں بہت بہت شکریہ رب رکھا اللہ سننے والا ہے رب رکھا رب رکھا یہاں میں ہمارا ساتھ دینے محترم ہیں بھائی ہیں دوست ہیں اور بہت بہت شکریہ چودھری فریاض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور یہاں میں ہمارا ساتھ دے رہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور جتنی ان کی میں تعریف کروں کم ہے اور یہاں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ آرٹ بریک بھی آ رہی ہے اس کو ہم فارغ کریں گے آرٹ بریک کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کریں گے دوبارہ کیونکہ آپ ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آرٹ بریک کا جو ٹائم ہے وہ سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور کروں گا اور جو بھی ہے جہاں پہ آر اٹھائی ٹو ڈو ایوری تھنگ آن ٹائم کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ٹائم کے ساتھ کریں گے کیونکہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک ہوگی آرٹ بریک ہونے والی ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے اور جن بھائیوں کی کال مل گئی ہے بہت بہت شکریہ جن کی نہیں ملی ہے اور تھوڑا جا انتظار کر لیں آپ کو بھی مل جائے گی آپ نے گھبرانا نہیں ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی ہے ٹینشن پہ ہمیں 11 بجے جان ٹھیک ہے نا ٹینشن نہ لینے کی نہ دینے کی اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی رائے حضرت صاحب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور یہاں چھوٹی سی بریک کریں گے کیپ اٹ لاکڈ
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
0: رائٹ ویلکم بیک لسنر یور لسنر سنرائز ریڈیو اور یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ایوب جوان صاحب ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور
4: وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں
0: الحمد للہ آپ کی بھائیوں کی دعا ہے الحمد للہ رب العالمین آپ سنائیں آپ کی کیسی طبیعت ہے میرے بھائی کی
4: پرویز خان میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں جو ابھی شاعری کر رہے تھے نا
0: چودھری فریاض صاحب
4: ہائے ہائے وہ کہتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے وہی نہیں ملتے
0: آئے جن سے پیار ہوتا ہے وہی ویسے یہ آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک شاعر ہے کیا ہے کہ آپ ملتے ہی نہیں میرے بھائی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں
4: یہ میں کہنے والا تھا
0: آپ سے ہم بڑا ہی دل لگی ہے آپ کے ساتھ ماشاء اللہ بڑا ہی پیار کرتے ہیں بڑے
4: میں نے سوچا
0: جی
4: آج میں نے سوچا 9 بجے سے کوشش کر رہا ہوں
0: جی
4: تو آج اپنے بھائی سے ضروری بات کروں گا کچھ بھی ہو جائے
0: بھائی بہت بہت شکریہ میرے بھائی نوازش اور آپ نے جو نا دل ہمارا باغ باغ ہو گیا
4: جی تو بڑا اچھا لگ رہا آپ سے بات کر کے
0: جی جی بسم اللہ
4: تو کچھ اشعار سناؤں گا میں آپ کو
0: جی جی ارشاد ارشاد
4: تو یہ اس طرح نظم ہے
0: نظم نظم جی جی
4: میں پال دو پال کا شاعر ہوں
0: واہ کیا کہنے
4: میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے
0: واہ
4: پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جوانی
0: ہے واہ واہ واہ کیا کہنے
4: مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے
0: واہ
4: कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नज़में गा कर चले गए
0: चले गए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
4: वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का
0: किस्सा हूँ। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
4: कल तुमसे जिदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
4: पल दो पल में कुछ कहा पाया, इतना ही सौगात काफी है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
4: पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफी है।
0: इतनी इनायत काफी है, क्या कहने।
4: कल और आएंगे नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
4: हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह।
4: जीवन वो महंगी मदरिया है जो कतरा कतरा बुनती है। सागर से उभरी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा।
0: वाह क्या कहने।
4: मुट्ठी की रूह का सपना हूँ, मुट्ठी में फिर सो जाऊंगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
4: कल कोई मुझको याद करे, कोई क्यों मुझको याद करे।
0: वाह।
4: मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों अपना वक्त बर्बाद करे।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। यू जो साहब क्या कहने, बहुत खूब।
4: तो ये एक और है, ये आपके लिए है।
0: मेरे लिए माशाल्लाह, क्या कहने जी।
4: अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं।
0: मैं क्या पेश करूं,
4: कुछ समझ में नहीं आता, तुझे क्या
0: पेश करूं। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में है मेरे भाई, क्या बात है क्या बात है।
4: तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं,
0: वाह।
4: या तेरे दर्द जिदाई का गिला पेश करूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
4: मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों
0: में भी तू। वाह।
4: कौन सी चीज तुझसे जिदा पेश करूं।
0: वाह वाह वाह वाह, यू जॉन साहब वाह, क्या कहने।
4: जो तेरे दिल को लबे वो अदा मुझ में नहीं।
0: वाह।
4: क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा
0: पेश करूं। वाह वाह वाह वाह वाह।
4: तो ये तो एक और एक छोटी कोई इधर से थोड़े से लिए हैं कि उधर से लिए हैं।
0: सर जी कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छा शायरी कर रहे हैं, बड़ी कमाल की शायरी करते हैं। इसको जो ना इसको फोल्डर को इसको जो पेज को फोल्ड कर दें, बड़ी खूबसूरत शायरी की आपने, बड़ी खूबसूरत। इसको
4: थोड़ा अच्छा, मैं और मेरी तन्हाई
0: जी
4: अक्सर ये बातें करते हैं।
0: वाह।
4: तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, मगर ये हो ना सका। अब तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जस्तजू भी नहीं, गुजर रही है जिंदगी इस तरह जैसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
4: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो आपसे बात किया करे।
0: माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा ख्याल आपका, बड़ा ही अच्छा। इसने का मतलब कि आपने सुबह को नाश्ता बड़ा खूबसूरत नाश्ता किया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और बड़ी देखो इस शाम वक्त शाम के पैर में आप रोमांटिक मूड में हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई के फूल खिल रहे हैं।
4: शाम का वाकई काफी अच्छा मूड है, लेकिन मैं सच बोलूंगा आज कुछ फिल्म का आज कोई खास फिल्म नहीं थी देखने के लिए।
0: अच्छा, ओ आज बड़ी खूबसूरत है, क्या कहने कि वो चलो यहाँ पे ये ना वो एडवर्टाइजमेंट हो जाए, तो ये एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करना चाहते हैं कि ये ना मुझे फाइन हो जाए। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि आप आए, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा ही रोमांटिक अंदाज में जी।
4: सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, चौधरी फरियाद साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को
0: जी,
4: और अमर शहजाद को
0: जी,
4: और भी जितने आपके लिस्टर हैं सबको हमारी तरफ, आपकी जितनी भी फैमिली है सनराइज की
0: माशाल्लाह,
4: सबको हमारी तरफ से
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। आयु जवान साहब,
4: और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा,
0: हम आपका हम जो है ना वो कहते हैं ना वो दरवाजा खोल के रखेंगे संडे के रोज, संडे की शाम के वक्त, और आप आएंगे, और वेनेसडे के रोज आएंगे। अभी अभी आज तो संडे है, तो वेनेसडे के रोज हम आपका दरवाजा खोल के रखेंगे, आप आएंगे उसमें शेर शायरी करेंगे।
4: संडे में मसरूफ होता हूँ।
0: ना ना ना, वेंसडे की शाम, वेंसडे की शाम
4: नहीं, वेंसडे किसी और काम है। लेकिन आज देखिए मेरी फोन बता रही है कि मैंने 40 दफा आपको फोन किया।
0: 40 दफा, सिर्फ 40 दफा, ओए होए, सिर्फ 40 दफा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बे, आपने ये तो देखा ना, आपने सबको बता दिया कि मैंने वाकई मैंने 40 दफा फोन किया, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
4: और एम खान साहब आज से उनको भी
0: मेरी तरफ से, वो मेरे उस्ताद ने, आपको पता है वो मेरे उस्ताद ने,
4: हाँ नहीं मेरे भी उस्ताद हैं।
0: अच्छा हम एक हाँ। क्लास के हैं, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह शाह को खुश रखे, शादाबाद रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और ये आपके लिए। और यहाँ पे जिनका इंतज़ार था वो आ गए हैं और छा गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। हमेशा मैं बात करता हूँ मेरे प्रोग्रामों में, और दुनिया खूबसूरत है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, और हमेशा ही मैं कहता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, और दुनिया वाकई खूबसूरत है, और ये आपकी आँखों का अंदाज़ है, आपकी जो कानों के जो समाते हैं वो उनका अंदाज़ है, दुनिया वाकई खूबसूरत है, और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, एक खूबसूरती होती है, और दुनिया ऐसे ही चलती है, यही दुनिया है, वही खोल अलाइव। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे मुर्शिद है, और यहाँ भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
5: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी उम्मीद है मेरे भाई की?
5: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं कैसे?
0: अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र है। मुझे पिछले प्रोग्राम में मलाल हुआ, दुख हुआ कि मेरे भाई की लाइन नहीं मिली है, और उसमें हम रह गए हैं इतनी खूबसूरत शायरी को सुनने के, और आज जो ना वही वो शायरी सुनाए, उस दिन की भी और आज की भी सुनाएं, तो हमें अच्छा लगेगा, वो कहना कोटा पूरा हो जाएगा। और हमारे जो ना वो शाह जी प्रोग्राम सुन रहे, उन्होंने पिछले आवर में मुझे 8 बजे से फ़ोन किया था, शाह जी ने, डॉक्टर मलिक साहब ने, और वो आपने उनको आपने उन्होंने आपको सलाम पेश किया है, और बहुत अच्छा लगा जी।
5: तो शाह साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
5: सितारा साहब आए, दीका जी हैं, जी साहब हैं, सुमित्रा बहन हैं
0: जी,
5: वाजिद भाई, कितन भाई हैं, महबूब इलाही, चौधरी रुखसार साहब हैं
0: जी,
5: मुजफ्फर साहब, चौधरी फरियाद साहब हैं
0: जी,
5: डॉक्टर मलिक साहब, आदर सहल अख्तर साहब, राय अतर सैन साहब हैं, शबरीत भाई, और भी जितने सुनने वाले हैं सबको मैं तो से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
5: तो एक गजल लाया हूँ, समर गाजीपुरी ने।
0: समर जी जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह।
5: वो कहते हैं दिल के जज्बात को सीने में छुपाना मुश्किल है।
0: हाय हाय हाय, बेशक बेशक बेशक, वाह।
5: दिल के जज्बात को
0: सीने में छुपाना बहुत मुश्किल है,
5: अपना घर अपने ही हाथों से जलाना ना,
0: मुश्किल है। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने,
5: शुक्रिया,
0: वाह।
5: कैफियत दिल की तो चेहरे से यहाँ होती है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह।
5: इश्क और मुश्क को मगर
0: छुपाना बहुत मुश्किल होता है। हाय हाय, क्या कहने,
5: मुश्किलें आज भी कुछ कम नहीं इंसान के लिए।
0: हाय हाय,
5: मुश्किलें आज भी कुछ कम नहीं इंसान के लिए, आने वाला है मगर और जमाना मुश्किल है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने,
5: जिसको अल्लाह ने बख्शी है अनायत अपनी,
0: वाह,
5: जिसको अल्लाह ने
0: बख्शी है अनायत अपनी,
5: उसको दुनिया की निगाहों में गिराना मुश्किल है।
0: हाय हाय, बेशक, इसको दोबारा करें, मकरर मकरर, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
5: जिसको अल्लाह ने बख्शी है अनायत अपनी,
0: वाह,
5: उस दुनिया की निगाहों में गिराना मुश्किल है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
5: एक जा कातिल और मुनसिफ को मिलते देखा है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब,
5: को मिलते देखा है,
0: वाह,
5: अब तो इंसाफ अदालत से ले पाना मुश्किल
0: है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
5: आखिरी शेर कहते हैं
0: जी जी अर्शाद,
5: पेट की आग तो बुझ सकती है खाने से।
0: आहा,
5: पेट की आग तो बुझ सकती है खाने
0: से, वाह,
5: इश्क की आग को फिर भी बुझाना
0: ना पड़ता है। हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
5: तो एक तो खीर एजाज दीपक इनका नाम है
0: जी जी, अर्शाद अर्शाद।
5: वो कहते हैं शरीफ बादशाह हो,
0: वाह,
5: शरीफ बादशाह हो, तुम सत्य बारी हो, आया है तुमने,
0: वाह,
5: फकत राज अपना चलाया है तुमने,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
5: लुटेरों में जिनका नहीं कोई सानी,
0: हाँ,
5: उन्हें तख्त पर ला बिठाया है
0: तूने। हाय हाय हाय हाय, वाह वाह,
5: रुकावट बना जो कोई तेरे आगे,
0: हाँ,
5: उसे रास्ते से हटाया है तूने।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह,
5: सियासी तमाशे की कठपुतलियों को इशारों पे अपने नचाया है
0: तुमने। हाय हाय हाय, क्या कहने
5: गया। सियासत का हर एक मर्द मुजाहिद, सियासत का हर एक मर्द मुजाहिद, सिलाहों के पीछे बिठाया है तुमने
0: तुमने। आय हाय आय हाय, वाह वाह।
5: निगेबानी करनी थी जिस घर की तुमको, उसी घर का सब कुछ चुराया है
0: तुमने। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
5: बहारें वतन का रुख ना करेंगी अब, बहारें वतन का रुख ना करेंगी अब,
0: वाह।
5: अपना गुलिस्तान ऐसे जलाया है
0: तुमने। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
5: हुक्मरानों खुद भी बच ना पाओगे तुम, जिस मुश्किल में वतन को फंसाया
0: है तुमने। आई हाय हाय हाय, वाह क्या कहने। बहुत खूबसूरत, बहुत ही आजकल के दौरे हाजरा की है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहार आ गई और आपने महफिल लूट ली है। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई का, और आपने मुझे कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे शकील साहब ने कमाल का यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और इनको हम बड़े ही प्यार के साथ हम डॉक्टर कहते हैं। और राय अजहर हुसैन साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम एडिनबरो से, स्कॉटलैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
6: जी वालेकुम
0: अस्सलाम,
6: कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी भी मुझे वो जो पैगाम आपने मुझे दिया था, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब, और अभी भी मुझे वो याद है। और जब मैं दोस्तों के साथ गुफ्तगू करता हूँ तो आपका नाम जिक्र होता है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे ये बताया है। माशाल्लाह वो जो साफ पानी के बाद में बात हो रही थी, और जो बड़ी खूबसूरत अंदाज, बड़े प्यारे अंदाज में आपने उसको डिस्कस किया और मोटिवेशन बात आपने की है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। जब भी आप शिरकत करते हैं प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। जी
6: हाँ, नहीं मैं मेरा क्योंकि मैं खुद एक जंग से उठा हूँ।
0: जी
6: जंग मैंने लड़ी है।
0: जी
6: और उस जंग के बाद फिर मैंने जो सबक सीखा या जो कुदरत में वदियत किया या जिसको कह लें कि मुझे इल्का किया,
0: जी
6: वो सबक यही था कि जिंदगी में हार या जीत कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता।
6: जिंदगी में सिर्फ खड़े रहना ही सब कुछ होता है,
0: खड़े रहना ही सब कुछ होता
6: तो
0: है।
6: तो असल मसला जो हमारे साथ आता है वो सिर्फ ये आता है कि हम अक्सर बहुत छोटी चीजों पर अपना दिल हार जाते हैं, या अपना दिल खो बैठते हैं, या अपना हौसला हार बैठते हैं, और बड़ी बड़ी मामूली सी बातों पर।
0: जी
6: जैसे आप कभी वो एक आदमी था तो वो कहते हैं कि वो हमेशा दिला करता था कि ऐ अल्लाह मेरा तूने एक हाथ नहीं मुझे दिया, सही हाथ नहीं।
0: जी
6: दिया।
0: जी
6: तो एक दफा वो कहीं से गुजरा तो उसने देखा कि एक आदमी खुशी से नाच रहा है, उसके ना दोनों पांव थे ना दोनों
0: हाथ।
6: तो वो उसके पास जाके बैठा, उसने कहा यार तुम नाच रहे हो? उसने कहा तो नाच रहा हूँ ना भाई, मेरा सांस जो आ रहा है इससे ज्यादा
0: क्या
6: खुदा का क्या शुक्रिया अदा करूँ।
0: माशाल्लाह क्या कह रहे
6: हैं, उसने मुझे जिंदगी दी है, सांस ले रहा हूँ, तो मैं तो उसका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। तो यही लेसन है कि हाँ, मुझे अंदाजा है कि इंसान को हमेशा अपना गम बड़ा लगता
0: है। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
6: हमेशा ये शुरू से इंसान की फितरत का एक हिस्सा रहा है कि वो हमेशा ये समझता है कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, दुनिया में और बहुत कुछ लोगों ने
0: हाय हाय हाय ऐसे ही बेशक बेशक
6: मुस्कुरा के फिर भी खड़े हैं
0: मुस्कुरा के खड़े हैं। हाय हाय हाय क्या बात,
6: फिर भी मुस्कुरा के उस अपने रब का शुक्र
0: अदा करते हैं। हाय हाय हाय हाय,
6: आपने चले हमें जो नेमत दी, सांसें दी, जिंदगी दी, रिश्ते दिए, एहसास दिए, ठीक है ना, दर्द दिए,
0: वाह,
6: खुशियां दी, ये सब इम्तिजाज है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि इंसानी जिंदगी में जो टेंशन है वो इंसान की असल जिंदगी है,
0: असल जिंदगी है।
6: लोग सुकून को जिंदगी समझते हैं, सुकून दरअसल मौत का नाम
0: है। हाय हाय हाय हाय, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा,
6: पल्ले बांध ले ये बात। सुकून तो मौत का नाम है, जिंदगी टेंशन का नाम है, क्योंकि आपकी टेंशन आपको रहेगी तो आपका दिमाग काम करेगा,
0: दिमाग काम करेगा, वाह वाह वाह,
6: आपके आगा काम करेंगे। देखे ना, आपको रोटी नहीं मिली, आप उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, हाथ पांव मारेंगे, अल्टीमेटली आप वो रोटी या रिस्क तलाश कर लेंगे।
0: वाह,
6: अगर आप बैठ गए या सो गए तो वो तो आप मर गए, वो तो
0: नहीं
6: चले गए।
0: क्या बात काफी।
6: इसलिए जिंदगी में आप टेंशन खुदा से मांगे ताकि आप जिंदा रहें,
0: जिंदा रहें। वाह वाह वाह वाह,
6: टेंशन ही जिंदगी है। ये गलत अप्रोच है लोगों की कि ये सुकून मिल जाए, करार आ जाए। सुकून और करार तो मौत का नाम है,
0: मौत का नाम। हाय हाय हाय हाय हाय।
6: इसलिए आपको जब कोई ना कोई टेंशन होती है, आप उसका, आपका दिमाग काम करता है, आपके सेल काम करते हैं, आप खड़े होते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं, ठीक है ना
0: जी।
6: वो कोई का एक खातून थी, वो बूढ़ी, तो वो रोज जाके ना एक लिफाफा जाके पोस्ट ऑफिस में डालती थी, तो
0: अच्छा।
6: वो पोस्ट ऑफिस वाला हंस के कहता है कि अम्मा ये किसको चिट्ठियां रोज भेजती रहती हैं। उसने कहा बेटे चिट्ठी तो किसी को नहीं भेजती
0: जी,
6: ये रोज एक लिफाफा बहाना बनता है कि मैं घर से निकल के वॉक करती हूँ।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने,
6: चीजों को देखती हूँ, दरख्तों को देखती
0: हूँ, हाय हाय हाय,
6: सामने जो जा रहा होता है उसको हेलो हाय
0: करती हूँ,
6: किसको दुआ देती हूँ,
0: हाय हाय हाय,
6: देती हुई यहाँ डाकखाने आती हूँ, ये खाली लिफाफा इस पे डालती हूँ, फिर वापसी का सफर करती हूँ।
0: बहुत
6: तो मेरे ये जिंदगी की एक मैंने टेंशन बनाई हुई है कि मैंने ये करना है, और यही इस लिफाफे ने मुझे जिंदा रखा हुआ है कि ये मुझे रात को याद होता है कि सुबह मैंने उठ के जाना है।
0: ओए होए होए, क्या बात आपने की, क्या बात, वाह क्या कहने जी, ये मोटिवेशन बात आपने करते हैं और क्या बात है। इसीलिए हम आपको डॉक्टर कहते हैं, इसीलिए हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जो आपकी जो गुफ्तगू होती है बड़ी इल्मी और बड़ी गहरी होती है, बिलीव करें, वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी वेरी डीप, और पूरे हफ्ते के लिए एक हमारे लिए एक माशाल्लाह मौजू होता है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। क्या कहने क्या कहने,
6: नहीं मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप दोस्तों के साथ अपनी थॉट्स को शेयर करूं,
0: थॉट्स
6: और चलें, इससे कोई किसी का भला हो जाए, क्योंकि एक फलसफी ने कहा था कि मेरी एक ही आवाज से
0: जी
6: किसी का भला हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए,
0: गुनाह माफ हो गए। हाय हाय हाय,
6: होता तो यही है कि आप सदा लगाते जाएं
0: जी,
6: और उस सदा से किसी ने सुन के अपना रास्ता सीधा कर लिया तो उससे बड़ी नेकी क्या है,
0: उससे बड़ी नेकी क्या। हाय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने।
6: हम जैसे फकीरों का काम तो सदा करना है, और
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, जो मोटिवेशन बात करते हैं आप, हाय हाय हाय, कसम से क्या बात है क्या बात है, क्योंकि हम देखो कि पूरी दुनिया में इतनी जो मोटिवेशन बातें होती हैं, हम पे करते हैं उनको सुनने के लिए, तो आप माशाल्लाह देखो इतना महान है, माशाल्लाह इतने खूबसूरत इंसान है आप माशाल्लाह, और इसीलिए हम आपसे प्यार करते हैं, बड़ी अच्छी और गहरी बातों करते हैं माशाल्लाह, हमेशा इंतजार करते हैं कि आप आएंगे।
6: सुनने वालों की मोहब्बत है
0: जी,
6: माशाल्लाह जो महफिल है, जो आपने रंग सजाए हुए हैं,
0: हाय हाय हाय हाय,
6: क्या रंगों की खूबसूरती है,
0: ये रंगों की खूबसूरती है,
6: रंग में चले बीच में आके कभी कभी कोई,
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप माशाल्लाह बिजी होते हैं माशाल्लाह, और आपकी जो माशाल्लाह जो आपके दोस्त बाब हैं, अजीज हैं, माशाल्लाह आपको दावत देते हैं, मुझे पता है, मुझे खबरें, सारी खबरें हैं मुझे माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगता है, और ये क्योंकि आप खुद अच्छे हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि दुनिया खूबसूरत है, कि हर बंदा अपनी जगह पे खूबसूरत है, बिलीव करें कि आप खुद अच्छे हैं तो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि नवादिश के आप आए, और बड़ा ही अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआएं में याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत राय अज़र हुसैन साहब माशाल्लाह, और मोटिवेशन बात करते हैं, और कितनी खूबसूरत बात की है इन्होंने, और आज अभी भी मुझे याद है जो इन्होंने बात की थी वो पानी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो साफ पानी होता है वो चलता रहता है, और जो गंदा पानी होता है वो गंदगी होती है वो साइड पर हो जाती है। ये एक सोचने की बात है, बिलीव करेंगे इट्स अ वेरी बिग थॉट ऑफ द डे एज वेल, और बड़ा ही अच्छा लगा इनका और इनका मौकफ़ है मोशाई, और यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम चेक करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
7: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Right, I'm in the studio. It's 49 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भाई, और थैंक यू वंस अगेन कि यू कैप्ट मी बिजी बिजी, और आपने हमारे लिए दुआएं करनी है. और हमारे मोहतरमे भाई हैं, और उनके लिए हमारे गुरु जी हैं, गिदन भाई हैं, और हमारी पापी जन सुमित्रा जी हैं, उनके लिए खसूसी आपने दुआएं करनी है, और लखैरी करे, और उनकी फैमिली के लिए हम दुआ गो हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और से वो पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह खैरी करें, उनके वो खैरी के गए हुए हैं और खैरी से वापस आएँ और खैर खैरियत से वापस आएँ. और हमारे बहुत ही दिल अजीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान चले गए हैं, उनका भी हम वेलकम कहते हैं, जिए कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?